0: नमः। नमस्कार दोस्तों, दिव्य दर्शन का एक और बहुत ही पवित्र और बहुत ही नया एपिसोड लेकर हम हाजिर हैं। आज हमारे साथ केवीएस रमन साहब हैं। केवीएस साहब पहले भी हमारे दिव्य दर्शन में शरीक हो चुके हैं, पार्टिसिपेट कर चुके हैं। उन्होंने हमें बताया था आध्यात्म के बारे में, रिलीजन के बारे में, धर्म के बारे में। आज हम फिर रमन साहब का स्वागत करते हैं और कुछ और दिव्य दर्शन के बारे में उनसे बातचीत करेंगे। रमन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। तो हमारे सुनने वालों के समक्ष आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में?
1: नमस्कार समीर भाई साहब, मैं आपको और आपके पूरे टीम मेंबर्स को और आपका जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं उन सबको मैं तहे दिल से फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मुझे दोबारा आपने एक शिरकत करने का मौका दिया है, और सुनने वालों को मेरी ओर से प्रणाम।
0: बहुत बहुत प्रणाम है सर, बहुत साधुवाद। जाहिर सी बात है, जो प्रोग्राम पहले आपके साथ हुआ था, हमारे सुनने वालों में से बहुत सारे लोगों ने इस बारे में रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना की, गुजारिश की, डिमांड की कि हम लोग कुछ और बातचीत रमन साहब से करें, क्योंकि जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उनको आपसे बातचीत करके कुछ समझ आया होगा, कुछ रिलेट कर पाए होंगे उसी वजह से। तो चलिए रमन साहब, आज हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं सनातन धर्म की। मैं पर्सनली खुद भी सनातन धर्म को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज रहता हूं कि प्रिसाइसली एग्जैक्टली सच में ये है क्या चीज। तो रमन साहब मुझे ये बताइए, सनातन धर्म वास्तव में क्या है? क्या ये सिर्फ एक धर्म है या शायद एक जीवन शैली? मतलब क्या है धर्म, इसके बारे में हम क्या समझें?
1: वैसे तो ये इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। ये सारी चीज, जैसे पहले भी हम लोगों ने अध्यात्म के बारे में बात की और आज हम सनातन धर्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ये सब वास्ट चीजें हैं और हम लोग अपने जो सीमित एक नॉलेज के हिसाब से हम उसको एक दूसरे से बांटने की कोशिश कर रहे हैं जी। वेरी वास्ट सब्जेक्ट। सनातन धर्म को पहले समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि धर्म क्या है
0: जी।
1: जनरली सर, धर्म को हम लोग प्राय उसको हम रिलीजन के साथ जोड़ देते हैं। धर्म एक्चुअली मेरे विचार से धर्म एक गाइड है या एक मार्गदर्शक कह सकते हैं। इट्स अ गाइड। और सनातन की अगर बात करें तो सनातन का मतलब है जो शाश्वत है, जो मिटने वाली चीज नहीं है, और वो सत्य है, और क्योंकि सत्य कभी मिटता नहीं है
0: जी।
1: डीपली कहें तो धर्म का अर्थ राइटियसनेस है। इस लिहाज से हम धर्म को एक मार्ग से, सही मार्ग से जीने का एक तरीका या शैली कह सकते हैं, और इन्हीं के वजह से हम ये निश्चय रूप से कह सकते हैं कि सनातन धर्म को जीवन का एक ट्रू एटर्नल लॉ ऐसा मान सकते हैं।
0: करेक्ट।
1: और ये एक हमें एक सही दिशा देता है और सही ढंग से जीवन व्यतीत करने का एक हमको मार्ग दिखाता है।
0: ओके। सो इस चीज को समझना जाहिर से बात है रमन जी की जरूरी हो जाता है कि धर्म और धर्म क्या चीज हुई और फिर सनातन धर्म क्या चीज हुई। तो जैसा आपने बताया कि बिल्कुल सत्य है, धर्म तो राइचियसनेस हो गया और सनातन हो गया जो हमेशा से है, हमेशा रहने वाला है और जो सच है। तो जाहिर से बात है उसमें त्रुटि की या कोई डिफेक्ट की या फिर कोई गलती की गुंजाइश है ही नहीं। तो क्या ये सनातन धर्म और हिंदू धर्म ये एक ही चीज है?

0: या इनमें कुछ डिफरेंस है?
1: मेरे विचार से कि हिंदू धर्म, हिंदू सनातन धर्म नाम की कोई चीज नहीं है। धर्म धर्म जो है वो एक मनुष्य का अपना बनाया हुआ एक एक चीज है, जो अपने रोजमर्रा इसमें हम काम चलाने के लिए हम उसको धर्म, एक सही रास्ते पे चलने का एक हम अपने अपने आप से एक बनाई हुई एक चीज है। और हर आदमी अपने अपने परिस्थिति और अपने अपने बर्थ और जहां वो रहता है उसके हिसाब से और कुछ चीजें वो फॉलो करता, वो धर्म है। मगर सनातन धर्म अगर बोले तो ये मात्र एक मनुष्य के लिए नहीं है, ये सारे सजीव और निर्जीव पर भी ये लागू होता है। सनातन धर्म, सनातन धर्म जीने का एक एक ऐसा आयाम है, हमारे अस्तित्व या अस्तित्व का ही आधार है ऐसा हम मान सकते हैं। चाहे वह कीड़ा हो, चाहे वो कोई छोटा से छोटा इंसेक्ट हो, पक्षी हो, जानवर हो, पौधा पेड़ पौधे हो, ये सभी सभी अपने अस्तित्व का जो संचालन करने का जो नियम है, मूलभूत जो नियम है, उसको हम सनातन धर्म कह सकते हैं। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ सनातन
0: नहीं, बिल्कुल
1: सनातन
0: ठीक है
1: धर्म।
0: सर, परफेक्ट परफेक्ट। मतलब सीधी सी बात हमें यह समझ में आ रही कि जो एक ऐसा नियम कानून कह लीजिए, प्रोटोकॉल कह लीजिए, फॉर्मेट कह लीजिए, या एक व्यवस्था कह लीजिए, अगर बड़ी सी प्यारी सी लैंग्वेज में कहें, तो इस प्रकृति की जो व्यवस्था है, इस प्रकृति की जो व्यवस्था है वो है सनातन। ऐसा मुझे लगता है रमन सर आप कह रहे हैं, करेक्ट? ओके, अमेजिंग। फिर अगर सनातन शब्द को, जैसे एक वर्ड हुआ सनातन, उसको अगर हम थोड़ा सा और बेहतर समझने की कोशिश करें, यहां तो पहले हमने ये समझा कि सनातन एक व्यवस्था है जो पूरी प्रकृति को चलाती है या पूरी प्रकृति पर लागू है। अब हम सनातन को और समझें, इस वर्ड का, इस शब्द का मीनिंग क्या होगा?
1: सनातन धर्म एक्चुअली ये जैसे कि हम लोग सब जानते हैं एक संस्कृत शब्द है।
0: जी
1: इस शब्द के कई मायने, कई अर्थ हैं। जैसे फंडामेंटल ज्ञान, तात्विक ज्ञान, स्थायी विश्वास और एक सम्माननीय व्यवस्था, इन सबको हम सनातन के एक भिन्न भिन्न डिफरेंट डिफरेंट मतलब निकलते हैं। लेकिन जनरली सामान्यतः धर्म को हम दो प्रकार के में बांटते हैं, जो एक है सनातन धर्म, एक वर्णाश्रम धर्म।
0: जी
1: इन इन दोनों में सनातन धर्म सभी के लिए सामान्य सामान्य रूप से एक आध्यात्मिक पहचान, एक स्पिरिचुअल
0: स्पिरिचुअल।
1: पहचान देता है, ये
0: जी जी जी
1: स्पिरिचुअल पहचान देता है। वैरस एक अगर वर्णाश्रम की बात करें तो वो जीवन के परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित कर्तव्य है। सभी जीवों के का अलग अलग एक उसमें डेफिनेशन उसमें आ जाता है। मगर सनातन में जैसे मेन अगर की अगर बात करें तो सभी जीवों के साथ अगर हम प्रेम दिखाना, सेवा भाव, पियटी और अच्छे कर्मों का पालन करना, कि इन इन एक आप विस्तार रूप से अगर बोले तो इसको सनातन शब्द का ये
0: मतलब हो
1: अर्थ
0: सकता
1: अर्थ
0: है।
1: निकलता है। जी।
0: करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही बताया, और बहुत ही साधारण सा भाषा में। तो जाहिर से बात है, इस शब्द को अगर हम लोग धर्म के साथ जोड़ते हैं तो फिर ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर या व्यवस्था बन के खड़ी होती है। बहुत सुंदर। रमन जी, सनातन धर्म, अब हम लोग ने सनातन को समझा, धर्म को समझा और उनको मिलाया, अब इसमें कर्म और धर्म को, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है इस व्यवस्था में? चलिए, धर्म को तो हमने फिर भी समझा था, अभी कर्म के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए ना कि इस व्यवस्था में कर्म की क्या महत्वपूर्ण है, कर्म की क्या इंपॉर्टेंस है?
1: वैसे कर्म धर्म दोनों ही जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं सनातन धर्म में। दोनों को ही एक फंडामेंटल लॉ कहा जा सकता है जो मनुष्य के आध्यात्मिक प्रगति स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए और जीवन के परिणामों को गमन करता है। ये दोनों कर्म और धर्म, धर्म और कर्म दोनों करता है। कर्म का जो सिद्धांत है वो कर्म चाहे वो विचार से हो या शब्दों से हो या कार्य से हो वो कोई ना कोई परिणाम देता है। व्हाट एवर यू डू उसका वो एक रिएक्शन देता है या उसका एक रेसिप्रोकेशन उसका होता है कर्म का। जो भी काम करें हम, चाहे हम कभी कभी हम विचार से भी अगर कुछ करते हैं, जैसे किसी के साथ क्रोध होना भी एक किसी विचार ही एक टाइप का विचार है, दैट ऑल्सो उसका एक परिणाम यह है कि वी गेट इन टू, उसके बाद हम खुद बाद में सोचते हैं कि हमने नहीं करना चाहिए था या हमारे टेंशन बढ़ जाता है। ये सारी चीजें, हर चीज का एक, हर कर्म का एक परिणाम होता है ये। और इसीलिए सनातन धर्म में इसीलिए क्योंकि कर्म हम वी कीप ऑन डूइंग कर्म, ये अतीत और फ्यूचर को, हाँ भूत और भविष्य, इनफैक्ट ये अतीत और प्रेजेंट को का जो एक इसका जो रिजल्ट जो देता है वो हम हमें वर्तमान में इसका दिखाई देता है। वर्तमान हमारा ये निर्धारित करता है। तो व्हाट वी कॉल इन हिंदी में जैसा एक सेइंग है, जो जैसे बोएगा वो वैसे काटेगा या पाएगा। तो इसीलिए ये क्योंकि कर्म किसी न किसी एक परिणाम देता है तो हर व्यक्ति को ये हमें सिखाता है कि सनातन धर्म सिखाता है कि वी हैव टू बी नो अपने जो भी कर्म करें वो अच्छा कर्म करें, क्योंकि जो जितना अपने उस हिसाब से हमको कहने हम तो ये कहा जाता है कि भाई आपके पुनर्जन्म में ऐसा होता है ऐसा होगा, लेकिन कभी कभी आपको तुरंत भी उसका एक परिणाम आपको मिल जाता है। तो इन सबकी वजह से क्योंकि कर्म से परिणाम मिलता है तो हमारे कर्म जो है हमेशा एक अच्छा एक कर्म होना चाहिए।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल सही बात है। और जैसा आपने बहुत प्यार से बताया उसी चीज को मैं एक बार बहुत छोटे से मैं सिंपल रिपीट करना चाहता हूँ मेरे अपने फायदे के लिए कि मैं उसको याद रख सकूं, कि हम जैसे काम करते हैं तो कई बार तो उनके फल जो होते हैं वो हमें थोड़ा सा भविष्य में मिलते हैं या कई बार तो बिल्कुल वर्तमान में ही मिल जाते हैं। तो सामने के सामने है साहब, जो काटा जो आपने बोया वही काटा, तो जब ये सामने दिखता है तो उसको मानने में फिर परेशानी ही क्या, आइए ना इसको मान लेते हैं। बहुत सुंदर रमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं यहाँ पर, एक प्यारा सा भजन सुनते हैं और फिर मैं वापस आपके सामने हाजिर होता हूँ।

0: बहुत ही सुंदर। रमन जी, सनातन धर्म के में पुनर्जन्म की अवधारणा को भी कहा गया है कि मतलब हम रीबर्थ की बात करें, दोबारा जन्म लेते हैं सनातन धर्म में, तो उसको आप कैसे समझाएंगे? सनातन धर्म इस चीज को कैसे समझाता है?
1: सनातन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। सनातन धर्म या पुनर्जन्म यानी रीइंकार्नेशन या इसी विश्वास पर आधारित है अपना सनातन धर्म। और जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं, इवन भागवत गीता में कभी निकल करके आता है कि आत्मा अजर है अमर है चासी। आत्मा अजर है और अमर है, और वह केवल एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाता, तो इट इज फॉर्म बिलीफ ऑफ सनातन धर्म। से भागवत गीता के सेकंड चैप्टर के 20th श्लोक में है
0: जी।
1: ये कहा है कि न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भवित्वा न भूय है अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर।
0: सुंदर।
1: आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। इसका मैं आपको थोड़ा सा सारांश बता रहा हूं। और ना ही एक बार अस्तित्व में आने के बाद वो कभी समाप्त होती है। आत्मा जन्म रहित शाश्वत अमर और अजर है। शरीर के नष्ट होने पर भी वो नष्ट नहीं होती है। दिस इज दी कंसेप्ट और दिस इज दी बिलीफ ऑफ सनातन धर्म।
0: जी,
1: यही सनातन धर्म माना गया है कि पुनर्जन्म में उनका इसका सनातन धर्म का विश्वास है
0: जी।
1: ऐसा ही समझाया गया।
0: बहुत सुंदर, अमेजिंग। सो जाहिर सी बात है, बहुत क्लियरली हमें आज ये बहुत साधारण शब्दों में ये चीज समझ में आ रही है कि पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, उसको सनातन में कैसे समझाया गया है। बिल्कुल ठीक। तो बस एक छोटा सा भजन यहां सुने और फिर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है, वो पूछते हैं रमन जी से।

0: और अमन जी, आपने पुनर्जन्म के बारे में हमें बताया कि सनातन धर्म इसको कैसे समझाता है, अब सनातन धर्म मोक्ष के बारे में क्या कहता है, उसके पाने का रास्ता क्या बताता है, थोड़ा सा उसके ऊपर रोशनी डालिए।
1: सनातन धर्म में मोक्ष मानव जीवन का एक परम लक्ष्य है, मेन जो हमारा फाइनल अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज मोक्ष एज पर सनातन धर्म। जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म का निरंतर चक्र जो है ये हम लोग सब समझते हैं, जानते हैं, सनातन धर्म मानता है और क्योंकि हम लोग उसको फॉलो करते हैं तो हम भी इस चीज को मानते हैं कि हर प्राणी का जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म रिसाइकल होता रहता है, ये साइकिल चलता रहता है, नियंत्र ये चक्र चलता रहता है। इस दुख, इसको अगर दुख मानते हैं, इसका इफ वी कैन समझते हैं कि ये इस तरह बार बार जन्म लेना, कष्ट सहना,
0: पेनफुल होता है, फिर से मर गए, फिर
1: पेनफुल
0: पेनफुल
1: हो रहा है, तो इससे मुक्ति, इससे मुक्ति पाना ही जो है हमारा मेन लक्ष्य जो है वो सनातन धर्म में बताता है। जब व्यक्ति का आत्मा अपने वास्तविक रूप से पहचान लेती है और उसके बाद जब when it reaches the ultimate, that is what is moksha, and we all उसी के लिए हम स्ट्राइव करते हैं और कोशिश करते हैं, जैसे हम कई मार्ग भी इसके लिए चुनते हैं, जैसे भक्ति मार्ग है, नॉलेज के थ्रू होता है, कर्म के थ्रू होता है और मेडिटेशन, ये कुछ कुछ कुछ कुछ एक सनातन धर्म में बताए गए हैं, कुछ मार्ग हैं, कुछ रास्ते हैं जो इनकी को हम फॉलो करके हम फाइनली मोक्ष की ओर जाने की हम कोशिश करते हैं। दिस इज व्हाट वी कीप स्ट्राइविंग और जीवन मुक्त लिबरेट होने की कोशिश करते हैं ये सब चीजें करके, ये है इसका सम्मान।
0: जी, आपने बिल्कुल ठीक कह दिया, बहुत ही आराम से हमें तीन रास्ते तो सामने दिख ही रहे हैं, कर्म का रास्ता है, योग का रास्ता है, मेडिटेशन का रास्ता है, धर्म, तो जाहिर से बात है इनमें से किसी को भी अपनाकर हम मोक्ष की तरफ चल सकते हैं। अब वो हमारी विलक्षणता पर, हमारी शिद्दत पर, हमारी कॉन्सेंट्रेशन पर, हमारी चाहत पर निर्भर करेगा कि हम कितनी तेजी से मोक्ष की तरफ जाएं। बहुत सुंदर। अब अगर आज के समय की बात करें, देखिए सनातन तो किसी समय से था, किसी समय तक रहेगा, चलता ही जा रहा है, लेकिन अगर हम आज की बात करें जब हम और आप हैं, तो इस धर्म को, सनातन धर्म को कोई भी एक साधारण व्यक्ति कैसे समझे, और अगर उसे समझ, वैसे तो आज के प्रोग्राम में आप ही की बात सुनकर बहुत सारे लोगों को ये चीज क्लियर हो जाएगी और वो उसको अपनाना चाहे, तो क्या करें हम?
1: क्या करें, इट्स बेसिकली बहुत ही एक ट्रिकी सवाल है
0: जी।
1: क्योंकि मैं आई डोंट वांट टू साउंड नो नेगेटिव, इट्स क्वाइट, कुछ कोशिश ही करके ही इसको चेंज किया जा सकता है, अपनाया जा सकता है आज के दौर पे, ये मुझे लगता है, आई विश आई एम रॉन्ग। हम इसको सनातन धर्म को समझा अपनाया कैसे जा सकता है, इसके लिए हमें मूल ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ता है, करना पड़ेगा, जैसे उपनिषद है, रामायण है, और ऐसे चीजों का हमको अध्ययन करना पड़ेगा। लोगों के पास इसके लिए कितना टाइम है आज, और उसको अच्छी तरह समझाने वाला कौन है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन अगर मनुष्य अगर कोई चीज करने की ढाल लेता है तो वो करता है, कर देता है
0: जी।
1: सबसे बड़ी बात यह है कि हम कम से कम अपना कर्तव्य जो है रोजमर्रा जिंदगी का, जो हमारा जो कर्तव्य है, उसी को हम ईमानदारी से पालन करें, वो दैट में भी फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बीइंग सनातनी। बाकी हम लोग तो योग और मेडिटेशन तो आजकल जगह जगह सब लोग इंटरेस्टेड भी हैं और करते भी हैं, हाँ तो हो भी रहा है, इसका भी एक एक ये भी एक माध्यम है, और आत्म रियलाइजेशन इन सब चीजों से आता भी है, एक सेल्फ रियलाइजेशन इन सब चीजों से आता है, योग और मेडिटेशन के द्वारा छोटी छोटी चीजें जैसे दूसरों को हेल्प करना, अहिंसा, दया, क्षमा, ईमानदारी, दीज आर ऑल स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच कैन लीड अस टू टूवर्ड्स जो है सनातन होने के एक और हमको शायद ले जा सकता है।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है सर। बहुत ज्यादा गूढ़, जैसे आपने कहा उपनिषद ग्रंथों वगैरह का हम अध्ययन करें, पहली बात तो जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, इंटरेस्ट की बात भी हो जाती है, फिर वो बहुत गूढ़ ग्रंथ हैं, उनको समझाने वाला भी कोई उचित गुरु हो जो हमें ढंग से समझा सके, उसके बाद आज के टाइम में इंटरेस्ट भाई वक्त भी नहीं है, तब भी कई परेशानियों से जूझते हुए फ्रस्ट्रेट होकर अचानक से घूम जाएं और हमें लगे कि नहीं चलिए अब सनातन को अपनाया जाए क्योंकि शांति प्राप्त करनी है, तब ये सब चीज़ें जो बहुत सरल भाषा में आपने बताई है वो हमें अपनानी चाहिए, वही होगा। और अगला जो मेरे दिमाग में कौंद रहा था सवाल, वो ये था कि आज की जो नई जनरेशन है उसको भला कैसे सनातन धर्म से जोड़ दिया जाए, तो मुझे लगता है यही मेथड्स जो आपने बोले हैं। जी
1: यही यही है जो, क्योंकि ये कुछ कुछ चीजें जो है बहुत सरल हैं, हमें क्योंकि झूठ नहीं बोलना ये तो बचपन से सिखाया जाता है, सत्य बोलना बचपन से सिखाया जाता है, दूसरे किसी प्राणी को तंग नहीं करना ये भी सिखाया जाता है, घरों में सिखाया जाता है, स्कूलों में सिखाया जाता है, ये दीस आर ऑल स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो हम विच हैज बिकम द पार्ट ऑफ अवर लाइफ, और इनको सही मायने में उसको और अच्छी तरह प्रैक्टिस करना, उसके बारे में और जानकारी लेना और थोड़ा इसका वाइडन, इसको थोड़ा सा हरिजन को थोड़ा सा वाइडन करना, दीस आर ऑल द स्मॉल थिंग्स टुवर्ड्स स्टेप्स, स्मॉल स्टेप्स टुवर्ड्स नो इसके ओर जाने का, एक सनातन के ओर जाने का एक स्मॉल चीज है।
0: सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, मुझे इस चीज पे ध्यान आता है, कई बार बचपन से हम सुनते आए कि गायत्री मंत्र इसीलिए बनाया गया था कि साहब बहुत बड़ी बड़ी बड़े मंत्रों का उच्चारण आप ना कर सके, तो चलिए एक सिंपल सा गायत्री मंत्र पढ़ लीजिए, आपको वही लाभ मिल जाएगा जो बहुत सारे मंत्रों को पढ़ने से मिलेगा, तो उसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि साहब और कुछ नहीं सही तो गायत्री मंत्र ही पढ़ लीजिए, कहीं ना कहीं तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव तो आ ही जाएगा, पवित्र तो आप इससे भी होंगे और पवित्र आप उससे भी होंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा, तो ये छोटे छोटे मेथड्स, प्रोसीजर्स, व्यवस्थाएं अपनाने से भी हम सनातन धर्म को पा सकते हैं। जाहिर से बात है हम ये सारी बातचीत इसलिए कर रहे हैं, सनातन धर्म को पाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि हम शांत होना चाहते हैं, साफ सुथरे पवित्र और एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अपनी जिंदगी को जिएं, शांति से जिएं, अच्छी तरीके से जिएं, मतलब खुश रहें, परेशानी ना हो। अब आपने जैसे सनातन धर्म को समझा, आपने सनातन धर्म को अपनाया, उसकी जो भी आप प्रैक्टिसेस जो आपने हमें बताई वो आपने की, उससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, कुछ आपको फील हुआ कि मेरी लाइफ में ये पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, थोड़ा सा वो शेयर कीजिए ना हमारे साथ।
1: हाँ बिल्कुल, इसके हर चीज का जैसे पहले भी होता है, हर कर्म का एक रिएक्शन होता है, एक उसका एक परिणाम होता है, तो ये जैसे स्मॉल छोटी छोटी चीजें जो हम अपने डेली रूटीन में भी जो करते हैं उसको आप, जैसे मैंने पहले एक क्रोध का बताया था कि जब हम क्रोध भी करते हैं तो उसका एक कभी हमको खुद को बाद में खराब लगता है कि मैंने ऐसा ही रिएक्शन क्यों दिया, ऐसा क्यों किया ऐसा। और उसी तरह जो हम अभी अच्छी चीजें करते हैं तो उससे भी हमको सुकून मिलता है, हम कुछ नहीं छोटे से किसी रास्ते में जाते हुए किसी प्राणी को जस्ट हेल्प ही कर दिया, उसको मतलब किसी से बचा दिया, कोई बच्चे पत्थर मार रहे हैं तो ये एक दूसरे प्राणी की ओर जो हमारे एक वो दर्शाता है, एक लव दर्शाता है, और वो भी करके आते हैं तो हम बाद में लगता है कि आज हमने ये किया, तो ये सब चीजें। उसी तरह जैसे हमको शुरू से एक चीज बताया गया है, मेरी माँ कहती थी कि अगर किसी को उपकार ना करें कम से कम उसको अपकार ना, किसी को डोंट डू एनी हार्म टू एनीबॉडी, आप अगर उपकार नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपके वजह से किसी को एक हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। और हम उस ऑफिस में जब रहते थे हम कोशिश यही करते थे कि हमारी वजह से किसी का मन ना दुखे, हमारी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो, ये हम बहुत इस चीज को हम उसके ऊपर ध्यान रखते थे। ये और इससे जो है स्लोली आपका जो एक पॉजिटिव ऑरा आपके समक्ष वो रहने लगता है। और अगला भी अगर आप जैसे आप व्यवहार करते हैं वैसा ही दूसरा भी आपके साथ व्यवहार करने लगता है, उसके ऊपर भी उसका एक असर पड़ता है। ये एक दूसरे के साथ इस तरह असर पड़ता है, हमें इस ये छोटी छोटी चीजें फॉलो करने में ऐसा असर हमको हमने भी हमें भी ज्ञात हुआ और दूसरे भी इस चीज को हमारी वजह से उनके ऊपर भी इसका एक इन्फ्लुएंस हमने महसूस किया कई बार।
0: ओके ऑफ कोर्स, बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे जैसा हम महसूस करते हैं, कोशिश करते हैं, और उसके परिणाम भी हमें हाथों हाथ मिलने भी लगते हैं और बहुत सारी चीजें महसूस होती हैं। बड़ी प्यारी बात कही। तो लीजिए थोड़ा सा एक पॉज लेते हैं, एक प्यारे से भजन के लिए रुकते हैं, फिर वापस आते हैं।

0: बहुत सुंदर रमन जी, किसी व्यक्ति को सनातन धर्म को और ज्यादा गहराई में समझना हो तो कौन कौन से ग्रंथ या कौन से लिटरेचर आप सजेस्ट करोगे कि हम पढ़ें, अध्ययन करें, कुछ करें, किस तरीके की किताबें या ग्रंथ?
1: बस ग्रंथ इसमें तो जो मेन चीज आपको बताने वाली जो चीजें हैं वो है वही मूल ग्रंथ जो है, हमारे जो मूल ग्रंथ है वेद है, भागवत गीता है, उपनिषद है, इवन रामायण और महाभारत से भी हमको कई इसके और इसके बारे में हमको ज्ञात हो सकता है होता है। लेकिन कई कई किताबें ऐसे हैं जो अगर आप खोजें तो गोरखपुर की गीता प्रेस वालों का यहाँ से कई चीजों का प्रकाशित उनका है, तो वो भी जो है आजकल सर्फिंग करने में आपको, क्योंकि शुरुआत एक बेबी स्टेप से ही हमको करना पड़ता है। इमीडिएटली हम इमीडिएटली हम उपनिषद या तो हमें क्या भागवत या किसी और चीजों की कोशिश करेंगे तो हम आधे में टाइगर्स हो जाएंगे, आधे तक जाएंगे नहीं जाएंगे पता नहीं। हमें वो चीज जब चीज समझ में नहीं आएगा तो हम मन इधर उधर भटकने लगता है। तो स्मॉल छोटे पैमाने से शुरू करें, ये सब चीजें हमको सर्फिंग करने से मिल जाएगा। गीता प्लस गोरखपुर वालों के बहुत सारे वो हैं, और विवेकानंद जी का जो लेख है वो पढ़ सकते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें ही हैं, हम अदरवाइज बुक अगर बोलें तो हम मूल ग्रंथ जो है उसी से हमको गूढ़ इसका एक
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं इस बात से बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ साहब। गीता प्रेस गोरखपुर एक ऐसा उपक्रम है जो किसी जमाने से चला आ रहा है, भारत की संस्कृति को उसने अभी भी पकड़ के रखा है। मैं हिंदू धर्म या सनातन धर्म या किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, उन्होंने भारतीय संस्कृति की बात की है। अब उसमें सभी लोग आते हैं और के उसके सारे जितने पुराने गूढ़ लिटरेचर हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, उनको अभी तक उन्होंने संजाया है, संजोया है, बचाया है। मुझे इस बात की सचमुच बहुत खुशी है। मैं कई मेरे पास उनकी बहुत सारी किताबें, पुस्तकें, बुक्स मौजूद हैं, खास करके पुराण, करीब करीब सारे पुराण मेरे उन्हीं के यहाँ के प्रिंटेड मौजूद हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि आप गोरखपुर गीता प्रेस गोरखपुर का भी बहुत बड़ा सहारा ले सकते हैं सनातन धर्म को समझने के लिए। बाकी जैसा विवेकानंद जी की कहा, लेखनी की बात कही रमन साहब ने, तो वो भी है, उपनिषद वगैरह भी है, महाभारत रामायण भी बताया रमन साहब ने, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद रमन साहब। एक बहुत रिलेटिवली बहुत ज़्यादा सफाई साफ तौर पर हमें समझ में आया है कि सनातन धर्म दरअसल क्या चीज़ है, उसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, उसकी व्यवस्था क्या है, किस तरीके से वो हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है और कैसे हम उसे अपना सकते हैं। बहुत बड़ा आयाम आज खुला है हमारे सामने। जाहिर सी बात है हमें थोड़ा और सीखने की आवश्यकता तो है, फिर भी इसकी शुरुआत करने के लिए, प्रारंभ में हमारा हाथ पकड़कर चलाने के लिए रमन साहब आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। आप आए, पधारे, हमारे इस प्रोग्राम में अपनी बातें रखी, बहुत अच्छा लगा, आपका आभार है सर।
1: धन्यवाद समीर जी, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इन विषयों के बारे में कुछ आपस में बांटूं, आपस में कहूं, मुझे इस लायक समझा। मैं आपको और एस एन रेडियो के जितने भी हमारे और साथी हैं, आपके और साथी हैं, उन सब को भी मैं धन्यवाद देता हूं। और हमारे जो सुनने वाले जो हमारे जो मित्र हैं उनको भी मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरे से कोई त्रुटि हो गई हो तो हम लोग सब व्हाट्सएप में है, नंबर है, आप बेझिझक हमें बताइए कि हम हमसे त्रुटि कहाँ हुई, हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद समीर जी।

दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो, बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर।

बिना पाठ्यक्रम वाले जीवन की गणित। कभी आपने नोटिस किया है, जिंदगी हमें सब कुछ सिखाती है, बस किसी टेक्स्ट बुक के थ्रू नहीं। आज मैं आपसे एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहती हूँ। एक बच्चा मैथ्स की क्लास में टीचर से पूछता है, सर बीज गणित में बीज कहाँ होता है? टीचर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जरा हाथ खोलो। और जब बच्चा अपने लाल हाथों वाली हथेली आगे करता है तो उसे समझ आता है, बीज दिया जा चुका था, दिखता नहीं था पर था। बस वही पल जिंदगी का पहला बड़ा लेसन बन जाता है। हम सब जिंदगी में अक्सर यही गलती करते हैं। हम कहते हैं, रिजल्ट कहाँ है, ग्रोथ कहाँ है, प्रोग्रेस कहाँ है। हम ये भूल जाते हैं कि बीज हमेशा जिंदगी के नीचे होता है, वह अंधेरा होता है, इंतजार होता है और सबसे बड़ी बात सब्र होता है। ये संवाद ये कहना चाहता है कि हर चीज को ज्यादा सोचना जरूरी नहीं होता। हर बात का जवाब ढूंढने से पहले कभी कभी चिंतन छोड़ देना भी जरूरी है। जिंदगी की गणित कुछ ऐसी ही है, ये फॉर्मूला से नहीं एक्सपीरियंस से समझ आती है। सोचिए, हवा दिखती नहीं पर चलती तो हमेशा है, इज्जत दिखती नहीं पर जब चली जाए तो वो घर के रिश्ते भी हिला जाती है, विश्वास दिखता नहीं पर बिना उसके कोई रिश्ता जिंदा नहीं रहता, और भगवान वो भी नहीं दिखते पर उन पे सबसे ज्यादा भरोसा होता है। ये संवाद भी यही कहता है, जैसे एग्जाम्स में कभी कभी बिना असल समझ के लंबे आंसर्स लिखकर नंबर आ जाते हैं ना, वैसे ही जिंदगी में भी हम सिर्फ दिखावा करके आगे बढ़ सकते हैं, पर फर्क इतना सा होता है, एग्जाम के मार्क्स जिंदगी नहीं बदलते पर जिंदगी के बीज बदलते हैं। अगर बीज असली हो, मेहनत का, ईमानदारी का, पेशेंस का, तो फल भी असली होता है, चाहे थोड़ा लेट ही आए पर जब आता है तो गहरा होता है, टिकाऊ होता है। इस संवाद का सबसे खूबसूरत मैसेज यही है, जो दिखता नहीं वही सबसे ज्यादा विद्यमान होता है। अगर आज आप अपनी जिंदगी में कहीं अटके हुए महसूस कर रहे हैं, अगर लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा, तो याद रखिए, शायद आपका बीज अभी जमीन के नीचे है। जिंदगी की गणित ना रटी जा सकती है ना शॉर्टकट से सीखी जा सकती है, इसे सिर्फ जिया जा सकता है। और कभी लगे कि कुछ दिख नहीं रहा तो बस इतना याद रखिए, कुछ चीजें सिर्फ महसूस होती हैं और वही चीजें जिंदगी चलाती हैं।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: पिंटू, तेरा भाई आजकल क्या कर रहा है सिंटू?
2: सिंटू ने जवाब दिया,
1: यार एक दुकान खोली थी उसने, लेकिन अब वो जेल में है।
2: पिंटू,
1: ओ पर ऐसा क्यों हो गया?
2: सिंटू, भाई ने दुकान हथौड़े से खोली थी, उसे पुलिस ले गई और जेल में डाल दिया। What?

दोस्तों, आज जिस कहानी पर हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है अपने आप में ही एक मेटाफर। एक दरवाजे के बाद फिर दूसरा दरवाजा। ये कहानी है लेखिका अर्पणा की, जिनकी कहानियों में गहरापन है, रहस्य है और सबसे बढ़कर एक ऐसी संजीदगी है जो दिल को छू लेती है। इस कहानी का केंद्र है एक औरत, उसका घर, उसकी तन्हाई और उसका डर। कहानी की शुरुआत होती है एक आम सरकारी मकान से। आंगन में एक तुलसी का पौधा है, जो बस पौधा नहीं बल्कि यादों का प्रतीक है। नरेटर बताती है कि वो उस तुलसी की पूजा नहीं करती, पर चाय में उसका इस्तेमाल जरूर करती है। ये छोटी सी बात ही कहानी का टोन सेट कर देती है, परंपरा और व्यवहार के बीच का अंतर। उसका रिश्ता आरएस हांडे से भी तुलसी की जैसा ही है, ना पूरी तरह पवित्र ना पूरी तरह सामान्य, एक अजीब सी जटिलता। घर के सामने एक बुढ़ा रहता है, अकेला। नरेटर अक्सर उसे देखती है। एक दिन वो सोचती है, क्या मैं भी बुढ़ी होके ऐसी ही अकेली रह जाऊंगी? क्या मेरी कहानी भी इसी तरह खत्म होगी? यहाँ कहानी तन्हाई का साइकोलॉजिकल लेयर खोलती है। फिर कहानी में एक मोड़ आता है। एक शाम नरेटर को महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, एक साया, एक डर। वो दौड़ती है, साया भी दौड़ता है, उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है और अब वो पकड़ी जाती है तो पता चलता है कि वो साया असल में उसका अपना ही डर था, या शायद उसी की परछाई। ये पल सिंबॉलिक है। कहानी ये दिखाती है कि हम अक्सर अपने ही अंधेरों से भाग रहे होते हैं, अपने ही सवालों से, अपनी ही असुरक्षा से। और फिर आता है सबसे पावरफुल इमेज, दरवाजे। नरेटर एक दरवाजा खोलती है, उसके अंदर एक और दरवाजा, फिर उसके बाद एक और फिर एक और। जैसे जिंदगी में हर प्रॉब्लम के बाद एक नया चैलेंज, हर सच के बाद एक और नया सच, और हर डर के बाद एक और गहरा डर। दरवाजों की एक लंबी कतार। इस कहानी का सार ये है कि जिंदगी लीनियर नहीं होती, एक रूम नहीं, एक कॉरिडोर में नहीं होती, जहां हर दरवाजा खोलने की हिम्मत चाहिए। हर दरवाजे के बाद जो मिलता है वो हमें थोड़ा और मैच्योर कर देता है, थोड़ा और तोड़ता है, थोड़ा और बनाता है। इसमें राजनीतिक संकेत भी है, सामाजिक तंगीत भी है, और सबसे गहरा एक औरत का अस्तित्व संघर्ष है। आखिर में ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम सच में एक दरवाजे पर रुक सकते हैं, या जिंदगी का नियम ही है एक दरवाजे के बाद फिर दूसरा दरवाजा। और शायद हिम्मत का मतलब यही है, दरवाजे खोलते रहना।

0: देखेंगे
1: कैसी फिक्र
0: कैसा डर
1: दुश्मनों के
0: चिल्ले सर
1: आगे
0: बढ़
1: दुश्मनों पे
0: खून पर
1: जा पे अपनी खेलेंगे
0: हर मुश्किल को झेलेंगे
1: क्या होगा ना सोचेंगे
0: हम मंजिल पे पहुंचेंगे
1: कर फिदा
0: जान को
1: मार ले
0: जान को
1: रोक ले
0: आंधिया
1: मोड़ दे
0: तूफान को
1: हिम्मत कभी न तोड़ेंगे
0: दुश्मन को ना छोड़ेंगे
1: घुटने कभी न टेकेंगे
0: मुड़ के ना हम देखेंगे
2: चलो दोस्तों अब हो गया है हमारे हंसने का समय
3: चीनू उदास बैठा था तभी मीनू आया और पूछा क्या हुआ चीनू तू उदास क्यों बैठा है चीनू बोला क्या बताऊं यार किसी ने कहा था कि पेड़ से हमें शीतल छाया मिलती है लेकिन यहाँ पेड़ के नीचे पिछले 5 दिन से बैठा हूँ ना तो शीतल आई ना ही छाया।

शरीर पर चिन्ह भी होते हैं पहचान। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी परंपरा के बारे में जो सिर्फ शरीर पर बना हुआ डिजाइन नहीं बल्कि पहचान, आस्था और इतिहास का जीता जागता प्रमाण है। गोदना यानी ट्रेडिशनल ट्राइबल टैटूइंग। इस चर्चा में बताया गया है कि देश के कई आदिवासी समुदायों ने शरीर पर बनाए गए चिन्ह सिर्फ सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि उनके गहरे धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए होते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, गुजरात और अन्य राज्यों के गोंद, बैगा, भील, कोरकू, मुरिया, कोल जैसे कई जनजाति समुदाय में गोंदना एक प्राचीन परंपरा है। इन समुदायों के लिए गोंदना उनकी पहचान है, एक जीवन भर का साथी। कुछ जगह देवी देवताओं का चिन्ह, पेड़ पौधों के आकार, प्राणियों के प्राकृतिक सूरज चांद तारे या पवित्र निशान शरीर पर गुदवाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन चिन्हों से शक्ति मिलती है, रक्षा होती है और आत्मा को शांति मिलती है। इस आर्टिकल में एक लोक कथा का भी जिक्र है जिसमें कहा गया है कि भगवान के भोज में जब एक जनजाति के लोगों को पहचान के लिए अलग किया गया तब से गोंदना उनकी पहचान बन गया। यानी ये परंपरा केवल सौंदर्य नहीं बल्कि अस्तित्व का प्रश्न थी। आदिवासी समुदायों में लड़कियों को एक निश्चित उम्र के बाद गोंदना गुंदवाना आवश्यक माना जाता था। ये शादी, जवानी और सामाजिक स्वीकृति का जुड़ाव है। कई संस्थानों पर यह भी विश्वास किया गया कि मरने के बाद सिर्फ गोंदना ही साथ जाता है, सोना चांदी कपड़े ये सब यहीं रह जाते हैं। गोंदना करने की ये प्रक्रिया इंटरेस्टिंग है। सुइयों को बांधकर रंग भरा जाता है जो काजल, तेल या प्राकृतिक रंगों से तैयार होता है। दर्द होता है लेकिन उसे सहना परंपरा का हिस्सा है। कुछ स्थानों पर गोंदने के दौरान गीत भी गाए जाते हैं ताकि दर्द कम महसूस हो। महिलाओं के लिए गोंदना एक जीवित आभूषण जैसा माना जाता है, ऐसा गहना जो कभी नहीं उतारा जाता। आज के समय में जब मॉडर्न टैटू फैशन का हिस्सा बन चुका है, ये संवाद हमें ये याद दिलाता है कि हमारे देश में टैटू सिर्फ फैशन नहीं था, ये इतिहास, धर्म, परंपरा और पहचान का प्रतीक था। ये शरीर पर सिर्फ बना एक चिन्ह नहीं है। मैं कौन हूँ, मैं किस समुदाय से हूँ और मेरी जड़ें कहाँ हैं? आखिर में ये संवाद एक गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या हम अपनी परंपराओं को समझ पा रहे हैं या उन्हें सिर्फ फैशन तक सीमित करते हैं? क्योंकि कभी कभी पहचान कपड़ों से नहीं शरीर पर बने चिन्हों से होती है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय। पिंटू बोला, यार मैंने आज बहुत काम कर लिया। उसके दोस्त संजू ने पूछा, कैसा काम भाई? तो पिंटू बोला, वही जो स्कूल में टीचर मना करती है। संजू पूछा, मतलब? पिंटू बोला, अरे सवाल पूछना।
1: संजना,
2: आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं।
3: तेरे लबों पे इनकार है, मेरे लबों पे इकरार है। हाँ यही तो है सब निशानियां,

दोस्तों, दुनिया में गेम्स की कमी नहीं है, लेकिन कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो सुनते ही हम हैरान रह जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक अनोखे खेल की, रबर बूट थ्रोइंग। नाम सुनते ही लगता है जैसे कोई मजाक हो, लेकिन ये सच में एक सीरियस स्पोर्ट है। ये खेल फिनलैंड से शुरू हुआ 1992 में। शुरुआत में लोग इसे मजाक या मनोरंजन के रूप में खेलते थे, लेकिन धीरे धीरे ये एक ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट बन गया और आज ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी खेला जाता है। इस गेम का बेसिक आइडिया सिंपल है, रबर के बूट को जितना दूर हो सके उतना दूर फेंकना। लेकिन दूर फेंकना ही काफी नहीं है, इसमें टेक्निक, बैलेंस और पावर ये सही कॉम्बिनेशन में जरूरी है। बिल्कुल जैसे हैमर थ्रो या डिस्कस थ्रो होता है, बॉडी में कोऑर्डिनेशन का रोल होता है, वैसे ही रबर बूट थ्रोइंग में खिलाड़ी अपने शरीर को घुमाकर मोमेंटम क्रिएट करके बूट को फेंकता है। देखने में सिंपल है, लेकिन असल में काफी चैलेंजिंग है। इसमें पुरुष और महिलाएं अलग अलग कैटेगरीज में हिस्सा लेती हैं। हर पार्टिसिपेंट को निर्धारित वेट और साइज का बूट दिया जाता है। कंपटीशन में सबसे दूर फेंकने वाला खिलाड़ी जीत जाता है। इस खेल की इंटरनेशनल पहचान भी है, इंटरनेशनल बूट थ्रोइंग एसोसिएशन के थ्रू। इमेजिन, फिनलैंड के अलावा कई और देशों में भी ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज होते हैं। आज सिर्फ ये एक लोकल एक्टिविटी नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट बन चुका है। लेकिन इस आर्टिकल की सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये गेम सिर्फ एक कंपटीशन नहीं, बल्कि फिनलैंड की कल्चरल आइडेंटिटी का हिस्सा है। ये दिखाता है कि स्पोर्ट्स सिर्फ सीरियस और ट्रेडिशनल फॉर्मेट्स तक सीमित नहीं होते, कभी कभी क्रिएटिविटी और मजाक से भी एक नई परंपरा बन जाती है। सोचिए, एक सिंपल सा रबर बूट जो आमतौर पर बारिश या खेत में काम आता है, वही एक इंटरनेशनल स्पोर्ट बनकर सेंटर बन जाए। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर चीज में पोटेंशियल होता है, बस उसे देखने का नजरिया चाहिए। तो अगली बार जब आप किसी अजीब से गेम का नाम सुने, हो सकता है वो सिर्फ गेम ना हो, बल्कि किसी देश की सोच, क्रिएटिविटी और कल्चर का हिस्सा हो। क्योंकि दोस्तों, कभी कभी रबर बूट को तोड़ना भी एक गेम ही होता है।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार

मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

0: आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आपके ही अपने प्रोग्राम जिंदगी के रंग गीतों के संग में, जहां हम मिलते हैं उन खास लोगों से जिनकी जिंदगी संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरक कहानियों से भरी होती है। उनकी बातों के बीच में हम सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जो उनके जीवन की भावनाओं और अनुभवों को संगीत में ढाल देते हैं। तो चलिए आइए इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ चलिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग। और दोस्तों, आज का रंग है शब्दों की सतरंगी दुनिया का। मैं आपकी आवाज का दोस्त आलोक कुमार आपसे मुखातिब हूं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम मिलवाने जा रहे हैं आपको एक ऐसी शख्सियत से जिनकी पहचान सिर्फ एक नहीं कई आयामों में फैली हुई है। पत्रकारिता के क्षेत्र में 2 दशकों का अनुभव, दूरदर्शन राजस्थान पर 500 से अधिक कार्यक्रमों की एंकरिंग, राष्ट्रीय चैनलों पर राजनीतिक विश्लेषण और साथ ही एक संवेदनशील हिंदी कवि, ये सब एक ही नाम से जुड़ते हैं और वह नाम है श्री विवेकानंद जी शर्मा। सीकर जिले के अजीतगढ़ जैसे ग्रामीण परिवेश से निकलकर मीडिया, राजनीति और साहित्य की दुनिया में अपनी सशक्त पहचान बनाना, यह सफर अपने आप में प्रेरणादायक है। इनकी लेखनी में समाज की सच्चाई है, विश्लेषण में गहराई है और कविता में संवेदना। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं एक ऐसे शख्स से जो शब्दों से विचार भी गढ़ते हैं और कविता से दिल भी छूते हैं। स्वागत है आपका विवेकानंद जी हमारे कार्यक्रम में।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और श्रोताओं, एक खास बात और आपसे आज करना चाह रहा हूं। आज हमारे इस कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग में आप जहां एक और गीत तो हमेशा की तरह सुनेंगे ही, लेकिन बीच बीच में आप आज के हमारे मेहमान विवेकानंद जी की कविताओं का आनंद भी आप ले पाएंगे। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए और मन बना लीजिए एक अच्छे से अनुभव के लिए। तो विवेकानंद जी, सबसे पहला प्रश्न और शुरुआती प्रश्न मेरा आपसे यही है कि जहां तक मेरी जानकारी है, आपका जन्म और शिक्षा एक गांव अजीतगढ़ सीकर से शुरू होकर जयपुर तक पहुंची, इस बड़े शहर तक पहुंचती, तो उस ग्रामीण पृष्ठभूमि ने आपको व्यक्तित्व और सोच को किस तरह से गढ़ा, कुछ उसके बारे में कुछ साझा कीजिए, पुराने दिनों की याद लगाइए, पुराने दिन की यादों में गोता लगाइए, कुछ बताइए।
2: बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। वास्तव में मुझे लगता है कि जो गांव में रहने का जो समय था, और खासतौर पर बचपन की बात करें, हर किसी के जीवन में वो स्वर्णिम काल होता है जी। और मेरा भी ये सौभाग्य रहा कि मेरा बचपन गांव में बीता, गांव की गलियों में घूमते फिरते, और जैसे जैसे बड़े हुए मुझे याद आता है बचपन में स्कूल जो थी हमारी, सरकारी स्कूल में पढ़े तो घर से करीब आधा किलोमीटर दूर 400 मीटर के आसपास स्कूल होगी। आज के दौर में जब शहर में रहते हैं, हम कल्पना नहीं कर सकते उस समय चाहे सर्दी गर्मी बरसात जो भी होगी, घर में जो कोई कपड़े का थैला होता था उसके अंदर अपने कॉपी किताब रखी, उसको कंधे पर टांका और फिर दौड़ पड़ते थे स्कूल के लिए। आधे घंटे की इंटरवल होती थी, उस आधे घंटे में दौड़ के वापस घर पहुंचते थे, 3-4 मिनट 5 मिनट में घर पहुंचते थे, 10-15 मिनट में जो कुछ खाने को मिलता था, दही रोटी दूध ये कोई अचार जो भी कुछ मिल गया वो खाया फटाफट 15 मिनट में और फिर दौड़ के अपने स्कूल में पहुंच जाते थे। मुझे लगता है आज की नई पीढ़ी जो ऑटो में बैठ के वैन में बैठ के स्कूल जाती है और सुबह निकल जाते हैं 7 बजे, शाम को 4-5 बजे तक आ रहे हैं, इतना भारी बोझ वो थैला लटका के, मुझे लगता है वो समय ही बदल गया। उस समय के स्कूल, उस समय की चीजें, हर शनिवार को बाल सभा होती थी, अंताक्षरी हुआ करती थी, अलग अलग महापुरुषों की जयंतियों पर जो कार्यक्रम होते थे उनमें जाकर सामने मंच पर जाकर बोलना, आज ये सब जो चीजें हैं बहुत कम मात्रा में है और इनका भी स्वरूप बदल गया है।
1: नहीं, मजा आ गया, आपने तो मुझे भी अपना बचपन याद दिला दिया। जब घर भाग के आते थे तो पराठा खाना और इस तरह की जो बातें होती थी, हमें भी आप अपनी दुनिया में ले गए, बचपन की दुनिया में।
2: मजा आ गया, कैसे भूला जा सकता है बचपन का।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो आपने बीएससी, एलएलबी, बीजीएमसी और एमए जैसी विविध शिक्षा ली है, विज्ञान, कानून, मीडिया और साहित्य, ये सब का आपने अध्ययन किया है, और क्या ये सब मिलकर किसी तरह से आपकी पत्रकारिता और विश्लेषण को अलग से कोई दृष्टि देते हैं, कोई अलग नजरिया देते हैं, कुछ इसके बारे में बताएंगे?
2: जी बिल्कुल, आपने अच्छी बात पूछी है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ और वही कहता हूँ जो बड़ों से मैंने सुनी है, ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। आप जिस भी विधा का ज्ञान लेंगे जीवन में कहीं ना कहीं वो काम आता है। बचपन में परिवेश घर परिवार का ऐसा मिला कि बहुत से संस्कृत के श्लोक याद हुए, बहुत सी कविताएं याद हुई, बहुत सी दोहे चौपाइयां वो याद हुई, और लगभग जहां तक मुझे याद है मैं छठी सातवीं कक्षा में पढ़ता था तो मुझे ये सब दोहे चौपाई श्लोक कविताएं ये इतनी याद थी कि एक बार मैं शुरू होता तो शायद 2 घंटे लगातार बोल सकता था।
1: ओके,
2: तो ये चीज मेरे में धीरे धीरे परिवार के संस्कारों के कारण आई, लेकिन चूंकि मैं पढ़ने लिखने में भी ठीक था तो इसलिए घर वालों ने प्रारंभ में, उस समय ये स्थिति होती थी कि यदि बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो उसको साइंस दिला दो, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा।
1: सही बात, सही
2: बात। तो इस कारण मैं विज्ञान की उस दिशा में गया और मैंने बीएससी की। बीएससी के बाद चौराहे पर था क्या किया जाए, तो सारे मित्र जो है वो एलएलबी कर रहे थे तो मैं भी लॉ में पहुंच गया, और एलएलबी करते करते मुझे लगा कि यार गलत जगह फंस गए, कहां रोज सच को झूठ, झूठ को सच करने का काम करना पड़ेगा, आत्मा को मारने का काम करना पड़ेगा। वहां से फिर मैं पत्रकारिता में आ गया और पत्रकारिता में काम करते करते कवि सम्मेलनों की दुनिया में मैं आ गया। लेकिन ये सब काम करते करते विज्ञान आपको तर्क बुद्धि देता है, आपको विज्ञान जो है पढ़ने वाले विद्यार्थी एकदम से आंख बंद करके किसी चीज पर भरोसा नहीं करते। तो मुझे मेरी पत्रकारिता में, राजनीतिक विश्लेषण में इस चीज का ये लाभ मिला विज्ञान पढ़ने का। कानून की थोड़ी बहुत जानकारी हुई तो उसके कारण भी थोड़ा सा इस सारे क्षेत्र में लाभ मिलता ही है। तो मुझे लगता है कि जो आपके भीतर होता है, जो बचपन में जो साहित्य के प्रति रुचि थी, आखिर में घूम फिर के ये बीएससी, एलएलबी ये सब कर कर आगे और फिर उसी क्षेत्र में आगे जहां कहीं बचपन का आनंद था।
1: नहीं, सही बात, वो एनालिटिकल पावर तो आपको मिलती है, वो हर चीज में काम आती है, चाहे वो चुनाव का विश्लेषण आप कर रहे हैं। चलिए आगे बातचीत करते हैं। बिल्कुल। और 2005 में आपने राजस्थान पत्रिका से शुरुआत की, फिर अनेक बड़े संस्थानों में संपादकीय जिम्मेवारियां उठाई, तो पीछे मुड़कर देखें तो पत्रकारिता के इस 20 साल के सफर को आप कैसे देखते हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे हमें ब्रीफ में?
2: देखिए, जो 2005 में जब मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में आया, उस समय की स्थितियां और आज की स्थितियां बहुत अलग हैं। एक गांव से मैं आया था तो मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि मैं जयपुर में कैसे अपना एक स्थान बना सकता हूँ, कैसे यहाँ रह सकता हूँ। और उसके लिए जो मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना था कि मेहनत के अलावा कोई दूसरा आपके पास में विकल्प ही नहीं होता, जब आप पर संकट सर्वाइवल का होता है तो आप अपनी जान झोंक देते हैं। लगभग मेरे साथ भी वही स्थिति थी कि फेल होकर वापस गांव चला जाऊं, बजाय इसके कि 18 घंटे भी काम करना है तो करेंगे। तो प्रारंभ में मेहनत से कभी घबराए नहीं, जैसी चुनौतियां थी, जैसी स्थितियां थी, बाकी मेरे साथ में काम करने वाले मित्र लोग यदि 6 घंटे काम करते थे तो मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, मुझे 16 घंटे लगाने थे तो मैंने लगाए। और मुझे लगा कि वो जो शुरुआती दौर की मेहनत थी, वो जिजीविषा थी, वो जीवटता थी, वो चुनौतियों से डटकर मुकाबला करने की जो स्थिति थी, आज लोग चाहे उसको संघर्ष का नाम देते होंगे लेकिन वो सब सहजता से परिस्थितिवश हो ही जाता है।
1: नहीं, सही बात है, उस टाइम राजस्थान पत्रिका तो अपने आप में एक लीडिंग न्यूज़पेपर भी था, तो मेहनत भी बहुत करना पड़ती थी पत्रकारों को, तो मुझे याद है। तो चलिए, आपकी इस मेहनत, जीवट और जीजीविषा के नाम पर हम एक अच्छा सा गाना सुनते हैं, थोड़ी देर उस गाने का आनंद लेते हैं।

0: हाँ शर्मा जी, पुनः स्वागत है आपका। तो आज की पत्रकारिता और 2005 की पत्रकारिता में आपको अब क्या बड़ा अंतर लग रहा है? और डिजिटल के बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मोटा
1: जी
0: मोटा आप बताइए इसके बारे में।
1: देखिए, बहुत बड़ा अंतर जो मुझे लगता है 2005 में जब मैंने शुरू किया और आज जब हम बात करते हैं 2026 में, इन 20-21 वर्षों में एक बड़ा परिवर्तन ये आ गया कि उस समय सूचनाएं इस तेज गति से नहीं आती थी। उस समय यदि कोई घटना कहीं हो गई तो अखबारों में तुरंत फोन होते थे और फोन होने के बाद में तुरंत वहां पर रिपोर्टर को भेजा जाता था। आज हर हाथ में मोबाइल है, हर हाथ में इंटरनेट है, तो आप भले वहां पहुंचे नहीं पहुंचे, यदि आपका संपर्क है तो आपके पास में वहां से लाइव वीडियो आ जाते हैं, सारी चीजें आपके पास आ जाती है, फैक्ट चेक आप कर सकते हैं। उस दौर में होता ये था कि आपका रिपोर्टर जो वहां गया हुआ है वही आपको एक प्रकार से वहां की जीवंत रिपोर्ट जो है वही दे पाता था, तो उसमें समय जरूर कई बार लग जाता था, लेकिन जो बात प्रामाणिकता की है उसमें कहीं भी किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं होता था। आज कई बार ये चीजें हो जाती हैं कि कई बार हम कहें कि पत्रकारिता के क्षेत्र में भी जो काम करने वाले लोग हैं और उतनी मेहनत नहीं करना चाहते, दूसरों के भरोसे, केवल टेक्नोलॉजी के भरोसे आ जाते हैं और फैक्ट चेक नहीं करते, तो उसमें कहीं ना कहीं एक मैं ये कहूंगा कि स्तर जो है थोड़ा सा वो कम हुआ है। लेकिन दूसरी बात एक और है कि पहले जो मीडिया संस्थान ने लिख दिया, जो दिखा दिया, वो ही सत्य मान लिया जाता था, लोहे की लकीर हो गई। आज जो है, जिसे हम कहें कि नागरिक पत्रकारिता, हर एक व्यक्ति के हाथ में फोन है, हर एक व्यक्ति फैक्ट चेक कर सकता है, और यदि मीडिया संस्थान, मीडिया समूह यदि कुछ कोई बात गलत प्रचारित प्रसारित करता है तो उसको टोकने वाले लोग भी बहुत हो गए। मुझे लगता है ये एक अच्छा संकेत है।
0: नहीं, बहुत सारा स्वरूप बदल गया है बिल्कुल। तो चलिए अब थोड़ा सा बातचीत का रुख बदलते हैं और आपके काव्य क्षण, हम इसको कह रहे हैं काव्य क्षण का एक ब्रेक लेते हैं। अब
1: जी
0: इस बातचीत को थोड़ा सा काव्यमय बनाते हैं। तो कोई अपनी पहली छोटी सी कविता हमारे साथ साझा कीजिए, तो हमें थोड़ा सा अंतराल, इस काव्य अंतराल कहते हैं इसको हम, तो
1: जी
0: वो मिले
1: जी
0: तो आप सुनाइएगा।
1: आपने छोटी सी कविता की बात कही तो मैं सबसे पहले माँ शारदे की आराधना का एक मुक्तक, चार पंक्तियों का एक मुक्तक आपके समक्ष, सभी
0: स्वागत
1: श्रोताओं के
0: स्वागत
1: समक्ष निवेदित करता हूँ। कि
0: स्वागत
1: माँ की
0: स्वागत
1: हुई कृपा तो गूंगा जिह्वा अपनी खोलेगा, माँ की हुई कृपा तो गूंगा जिह्वा अपनी खोलेगा, प्रेम प्यार के मीठे मीठे बोल कभी तो बोलेगा, और जिस पर कृपा शारदे करती वो पीछे ना रह सकता, अपनी प्यारी कविताओं से वो दुनिया को तोलेगा, अपनी प्यारी कविताओं से वो दुनिया को तोलेगा।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर विवेकानंद जी, मजा आ गया, आनंद आ गया। तो अब थोड़ा सा हम मीडिया और डिजिटल युग की तरफ आते हैं, क्योंकि हमने प्रिंट मीडिया की बात कर ली। अब ये बताइए कि जैसे डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के इस दौर में पारंपरिक पत्रकारिता कितनी प्रभावित हुई है, और प्रभावित हुई है तो क्या अच्छे रूप में हुई है या थोड़े से एडवर्स रूप में हुई है, इसके बारे में क्या विचार रखते हैं?
1: देखिए, मुझे लगता है कि सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं,
0: जी
1: इस बात के भी दोनों पहलू हैं। अब हम यदि पहले नुकसान की बात करें तो आप देख सकते हैं, जैसे हम अभी पहले चर्चा कर ही रहे थे, कि सूचनाओं की भरमार है अब आपके पास में। पहले उन सूचनाओं के लिए अखबार देखा करते थे, और चूंकि मेरा अभी भी बहुत से समाचार पत्रों में, संस्थानों में बहुत सा संपर्क है, मेरे बहुत से मित्र लोग अभी भी काम करते हैं, तो मैं देखता हूं कि जो गिरावट आई है वो गिरावट ये आई है कि एक ही व्यक्ति को चार चार काम करने पड़ते हैं। पहले एक पत्रकार होता था, केवल खबर लिखने का काम होता था, पूरी
0: अच्छा
1: तन्मयता से खबर लिखता था। आज वही पत्रकार उसी संस्थान के लिए, उसका डिजिटल संस्करण होगा तो उसके लिए वीडियो भी बनाएगा, उसकी वेबसाइट होगी तो वेबसाइट के लिए भी उसी को खबर लिखनी है। अब अखबार में खबर लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, वेबसाइट का थोड़ा सा अलग हो सकता है, और उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बना रखा है तो फिर उसके लिए प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। तो एक ही व्यक्ति को जब चार काम देते हैं, तो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक दौर में जिन समाचार पत्रों को पढ़कर हम लोग भाषा सीखते थे, उन समाचार पत्रों में बहुत सारी अशुद्धियां आने लगी। जिन समाचार पत्रों को हम ये मानते थे कि ये मानक है, ये पैमाना है भाषा की शुद्धता का, वो अखबार आज आप उनमें 10-10 कमियां 10-10 गलतियां निकाल सकते हैं। तो ये जो एक तरीके से डिजिटल की दौड़ है, अंधी दौड़ है, इसका ये एक बड़ा नुकसान है। लाभ इतना है कि आपको घर बैठे, आपको ऑफिस में बैठे बैठे और दुनिया भर की जहां की जो सूचनाएं चाहिए वो आपको मिल जाती हैं। मुझे याद आता है एक दौर में जब हम समाचार पत्रों में काम करते थे, एजेंसियां जो है वो न्यूज भेजती थी और फैक्स के माध्यम से न्यूज आती थी। आप लोगों ने भी देखा होगा, कागज चलता था, रोल उसका चलता रहता था और वो खबर आती रहती थी। लेकिन आप देखिए, आप टेक्नोलॉजी का जो विकास हुआ है उसके कारण आज कोई फैक्स की आवश्यकता ही नहीं है आपको। सब कुछ आपको मेल पर मिलेगा, सब आपको अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उन पर मिल जाएगा और तुरंत हर हाथ में। जिस तरीके से मोबाइल और तेज गति का इंटरनेट आया है, इसने सूचनाएं पहुंचाने की गति भी बहुत बढ़ा दी है। और साथ ही साथ फिर से उस बात को दोहराऊंगा कि नागरिक पत्रकारिता के कारण पत्रकार भी अब जांच के दायरे में हैं कि ये जो सूचना, ये जो रिपोर्ट दे रहे हैं ये सही है या नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो नुकसान वाली बात है, अभी कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले ही आपको ध्यान होगा, बॉलीवुड के महान अभिनेता धर्मेंद्र का जो निधन हुआ, एक बहुत बड़े

0: चैनल ने निधन होने से पहले ही वो खबर चला दी उनके निधन की, है ना। ठीक इसी तरह की चीजें, बहुत सारी चीजें हमारे को जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है, चुनाव परिणाम हम देखते हैं, तो सबसे आगे मैं इस चक्कर में बहुत से चैनल जो है वो अपने मन से भी कुछ चीजें वो बढ़ा के दिखा देते हैं, तो ये कुछ अतिरेक भी होने लगा है।
1: नहीं, बहुत ही गहरी बात बताई आपने मुझे। ये बात तो बहुत ही प्रभावित की कि एक पत्रकार को वेबसाइट और डिजिटल और टीवी सबके लिए काम करना पड़ता है। ये बात तो मुझे आज पहली बार पता लगी। लेकिन ये भी बात आपने बहुत जोरदार बताई मुझे कि आजकल जो न्यूज आती है, कई बार मैं भास्कर का ऐप देखता हूं तो उसमें कई बार स्पेलिंग मिस्टेक मिल जाती है जो कि
0: नहीं,
1: पहले
0: अखबार
1: कभी
0: में
1: नहीं
0: भी
1: होता,
0: मिलती हैं बहुत सी।
1: अखबार में मिलती है।
0: हाँ, मैं नाम की बात नहीं करूंगा, और केवल एक अखबार की बात नहीं है,
1: हाँ,
0: बहुत
1: सभी
0: सारे
1: में।
0: समाचार पत्रों में ये स्थिति देखने को मिलती है कि भाषा का स्तर तो गिरा ही है। जो इस
1: गिरा
0: तरीके से प्रभावशाली और साहित्यिक भाषा होती थी वो तो अलग बात है, जो त्रुटि है भाषा की, मात्रा छोटी
1: है,
0: आएगी
1: मात्रा
0: बड़ी
1: छोड़े।
0: आएगी, हाँ, उनमें भी बहुत सारी गिरावट देखने
1: वो
0: को
1: भी
0: मिली।
1: बहुत है, और थोड़ा स्तर की बात है कि जो एक मानदंड होता था भाषा का वो नहीं रहा है। थोड़ी थोड़ी सतही भाषा, मैं कहूंगा बाजरू तो नहीं कहता, लेकिन सतही
0: हाँ,
1: भाषा आ गई है वहां।
0: जी,
1: चलिए, आप थोड़ा सा ट्रिकी सा सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे शर्मा जी। आज मीडिया की विश्वसनीयता पर भी कुछ बताइए। जैसे आज स्पीड ज्यादा है या सत्य है, तो इसके बारे में क्या क्या कहेंगे
0: नहीं
1: आप?
0: नहीं विश्वसनीयता का बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत अच्छा, बहुत प्रभावी विषय है ये, और ये मीडिया संस्थानों में काम करने वाले लोगों के लिए और इनके जो मीडिया संस्थान को चलाने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये आत्ममंथन का विषय है। जिस तरीके से पेड न्यूज की बात आजकल होने लगी है और नैरेटिव सेट करने की जो बात होने लगी है, उसमें कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में तो सब लोग हैं। और मैं अक्सर एक बात और कहता हूं कि एक दौर में पत्रकारिता मिशन हुआ करती थी, और आजकल मिशन के साथ पहले क्या जुड़ जाता है उससे भी मीडिया संस्थान अछूते नहीं है। तो मिशन और कमीशन का जो ये अंतर है, ये अपने आप में ये गहरा संकट है लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ के लिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही चिंताजनक है और बहुत ही कंसर्न का इशू है। तो क्या आपको लगता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म ने अभिव्यक्ति को लोकतांत्रिक बनाया है या भ्रम बढ़ाया है? खासतौर से चुनावों के दौरान तो ऐसा कंफ्यूजन सा हो जाता है, समझ में नहीं आता क्या सुने और क्या ना सुने।
0: देखिए, जो बात अभी हम कर रहे थे उससे जुड़ी हुई बात है ये,
1: वही
0: कि मिशन और
1: बात।
0: कमीशन वाली जो बात है, तो डिजिटल के इस दौर में निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि पहले जो निर्भरता समाचार पत्रों पे या कुछ चैनल्स पर ही थी, उसमें तो कमी आई है। पहले जो उनकी मोनोपोली होती थी, और मैं कहता हूँ कि चुनाव के, चूंकि मेरा तो राजनीतिक विश्लेषक के रूप में और सर्वे वगैरह के कारण मेरा बहुत से राजनेताओं से भी संपर्क है, तो जब चुनाव होता है उस समय असलियत सामने आती है मीडिया संस्थानों की भी, और उसी समय असलियत सामने आती है पॉलिटिकल पार्टीज की भी। और बाहर से लोग चाहे जो कुछ कहें, लेकिन भीतर का दलदल कैसा है वो यदि सामान्य व्यक्ति जानेगा तो उसका विश्वास उठ जाएगा। किस तरीके से एक-एक नेता से इन संस्थानों के प्रतिनिधि जाकर संपर्क करते हैं, उनको पैकेज देते हैं, और आपको आश्चर्य होगा आलोक जी, इस तरह के पैकेज दिए जाते हैं कि आप इतने लाख रुपए देंगे तो आपकी नेगेटिव खबर नहीं छपेगी, आप इतने लाख रुपए देंगे तो आपकी पॉजिटिव खबर छपेगी, और आप इतने लाख रुपए देंगे तो आपकी पॉजिटिव छपेगी और आपके प्रतिद्वंदी की नेगेटिव छपेगी। इस स्तर तक भी जो है मैनेज होते हैं।
1: ये मैनेजमेंट तो बड़ा वो है। चलिए, लेकिन
0: मैंने
1: आपने बहुत
0: एकदम
1: सारी,
0: अंदर का सच निकाल कर रख दिया है आपके
1: बिल्कुल
0: सामने।
1: बिल्कुल, लेकिन बहुत ही आंखें खोल देने वाला आई ओपनिंग सा है सारा। आई ओपनिंग तो क्या है, लेकिन सत्य जब बिल्कुल सामने कोई विश्वसनीय व्यक्ति बोलता है तो फिर उसमें एक वजन आ जाता है। तो चलिए, लेकिन थोड़ा सा हम इसको काव्य में बनाते हैं। मीडिया और समाज पर आधारित कोई छोटी सी कविता या व्यंग्य पंक्तियां है, जो कुछ भी आप सुनाना चाहें सुनाइए, हम थोड़ा सा रुख बदल लेते हैं।
0: जी, आपने मीडिया वाली बात कही तो मैं नाम तो नहीं लूंगा, पर एक संस्थान में जब मैं काम करता था और मेरी एक खबर वहां फ्रंट पेज की लीड खबर जाने वाली थी और रुक गई,
1: हाँ
0: तो जब वो खबर रुक गई तो मैंने पता किया, तो बाद में पता लगा कि वो खबर किसी ऐसे संस्थान से संबंधित थी जो उस समाचार पत्र के बड़े विज्ञापन दाता थे।
1: अच्छा
0: तो चूंकि मैं मिशन के लिए पत्रकारिता में आया था तो मेरे रक्त में उबाल आया, और रक्त में उबाल आया तो कलम से लगातार कुछ 16 पंक्तियां निकली। ऐसी मैं 8 पंक्तियां आपके समक्ष निवेदित करता हूँ, उसमें
1: अच्छा
0: भाव जो है वो आप समझ लेंगे एकदम कि क्या बात कहना चाहता हूँ। तो मैंने उस समय जो कुछ प्रयास किया मेरी भावनाओं को व्यक्त करने का, वो ये था कि सच्चाई का गला घोंटते गुणी जनों को देखा है, सच्चाई का गला घोंटते गुणी जनों को देखा है, धनबल के आगे तो उनको घुटने टेकते देखा है, बाहुबल के आगे उनको मिमियाते भी देखा है, और उन्हीं को राष्ट्रवाद की डिंगे हांकते देखा है। ये मन के भाव यहां से शुरू होते हैं, फिर 8 पंक्तियां और लिखते हैं, और फिर आखिर में उसका समापन मैं करता हूं, क्योंकि ये केवल एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये भी है कि समाचार पत्रों को चलाने के लिए जिस अर्थ की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है, और जो प्रबंधन के लोग हैं उनका विषय भी यदि आप देखेंगे, तो फिर आखिर की 4 पंक्तियां मैं लिखता हूं कि मैं नहीं कहता गलत राह पर तुमने चलना सीख लिया, मैं नहीं कहता गलत राह पर तुमने चलना सीख लिया, मैं नहीं कहता कठिन राह को कैसे तुमने ठीक किया, किंतु अवलोकन आत्म का भी बहुत जरूरी चाहिए, और जैसे भी हैं आप और हम दोनों को दर्पण चाहिए, जैसे भी हैं आप और हम दोनों को दर्पण चाहिए।
1: तो बहुत मतलब दर्पण चाहिए आपको, सच दिखाने के लिए दर्पण चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मजा आ गया, बिल्कुल सुंदर, बहुत सुंदर और बहुत ही सटीक।
0: ये एकदम जो प्रत्यक्ष अनुभव किया वहीं से निकले
1: बिल्कुल
0: हुए
1: बिल्कुल
0: शब्द
1: बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने बहुत ही संक्षिप्त और बहुत ही एकदम गहरे असर करने वाली कविता सुनाई हमारे को, मजा आ गया। चलिए अब थोड़ा सा आपके दूसरी विधाओं की तरफ आते हैं। दूरदर्शन राजस्थान पर 500 प्लस कार्यक्रमों की एंकरिंग, ये एक बहुत बड़ा अनुभव है। दूरदर्शन पर काम करने का अनुशासन और गरिमा कैसी होती है, कुछ इसके बारे में अनुभव आपका बताइए, हमारे साथ साझा कीजिए।
0: जी, बहुत ही अच्छा और सकारात्मक अनुभव है मेरा दूरदर्शन पे काम करने का। सकारात्मक और अच्छा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं बाकी अन्य जो निजी चैनल हैं उन पर भी मेरा आना जाना रहता है, तो एक बड़ा अंतर जो दिखता है और जो मैंने खुद ने भी महसूस किया कि जो प्राइवेट चैनल्स पर बहुत से लोग अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ बनकर जाते हैं, ऐसे बहुत से लोग दूरदर्शन पर आकर फेल होते हुए मैंने देखे हैं।
1: अच्छा, ओहो,
0: हाँ,
1: ये
0: फेल होते हुए
1: इंटरेस्टिंग
0: इसलिए देखे हैं क्योंकि प्राइवेट चैनल पर आप जाते हैं, मान लीजिए आपका 25 मिनट का शो रहता है, और उस 25 मिनट के शो में एंकर 3-4 मिनट शुरू में प्रारंभ में ले लेता है, 20 मिनट आपके पास बचते हैं, और उस 20 मिनट के लिए आपने 5 एक्सपर्ट बैठा रखे हैं, तो वो पांचों लोगों में होड़ लगी रहती है कि कैसे भी करके हम ज्यादा से ज्यादा अपनी बात रखें, तो उनको मुश्किल से 3 मिनट 3.5 मिनट मिलते हैं।
1: अच्छा
0: दूरदर्शन पर जो हम शो करते हैं उसमें यदि हमने 2 लोगों को भी एक्सपर्ट के रूप में बुलाया है, और कम से कम कार्यक्रम का समय भी हमारा आधे घंटे का है, तो उनको लगभग लगभग 12-13 12-13 मिनट कम से कम एक एक व्यक्ति को मिलते हैं। कुछ कार्यक्रम हम ऐसे भी करते हैं जो 50-55 मिनट का कार्यक्रम है और एक्सपर्ट अकेला ही है, तो ऐसे में यदि उनके पास में कंटेंट है, उनका अध्ययन है, तो वो वहां बोल पाते हैं। नहीं तो मैंने बहुत से ऐसे स्वनाम धन्य ऐसे ऐसे विशेषज्ञों को देखा है कि जो 10 मिनट 15 मिनट बाद में बगले झांकने लगते हैं। तो वहां अध्ययन करने वाला व्यक्ति, वहां उसी प्रकार का व्यक्ति चल सकता है जिसके पास कंटेंट है। ये एक बड़ा अंतर दूरदर्शन के कार्यक्रमों में और बाकी अन्य चैनल्स के कार्यक्रम में देखने को मिलता है।
1: हाँ, मतलब अगर मैं मोटे शब्द मतलब एक आम भाषा में कहूँ, दूरदर्शन में लफाजी नहीं चलती।
0: हाँ, लफाजी नहीं चलती, जबरदस्ती के आरोप प्रत्यारोप नहीं चलते, फैक्ट्स
1: हाँ
0: पर जो है बात, वो फैक्ट्स पर
1: फैक्ट्स,
0: बात होती है, और ये दूरदर्शन की पहचान पहले भी थी आज भी है।
1: हाँ बिल्कुल सही बात। एक बहुत ही गरिमा में ऐसा होता है, डिसेंट होता है सारा कुछ।
0: हाँ जी,
1: तो अगर ये जो आपका एंकरिंग का इतना लंबा और यादगार अनुभव है, इसमें से कोई ऐसा पल निकाल के लाइए, कोई यादगार पल जो आज भी आपके दिल में बसा है, कोई ऐसी याद हो, गोता लगा के हमारे को सुनाइए कोई ऐसा।
0: देखिए बहुत सारे अनुभव हैं, चूंकि सैकड़ों कार्यक्रम हो गए हैं तो बहुत सारे अनुभव हैं। एक कुछ विशेष अनुभव की बात करें तो कुछ कार्यक्रम ऐसे हुए कि जिनमें एक्सपर्ट आए और सामान्यतः हमारा जो 28 मिनट का कार्यक्रम हुआ करता है उसमें एक एक्सपर्ट आते हैं, तो हम ये कल्पना करके चलते हैं कि 7 प्रश्न हम करेंगे तो उसमें कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, जिसमें लगभग ये मान के चलते हैं कि 3 मिनट एक्सपर्ट बोलेगा, 1 मिनट एंकर बोल लेगा।
1: ठीक है।
0: 5-7 बार ऐसा हो गया कि जो एक्सपर्ट आए उनसे हमने सवाल किया और उन्होंने एक लाइन में जवाब देके और वो चुप हो गए। तो ऐसे करते करते जो 7-8 प्रश्नों के बारे में हम सोचते थे उसके बजाय हमने 15 प्रश्न कर लिए और देखा कि समय अभी भी 18 मिनट ही हुए और 18 मिनट में 15 प्रश्न हो गए। तो ऐसे में फिर बाद में उस कार्यक्रम को, चूंकि 28 मिनट चलाना था, तो बाद में मुझे खुद को ही एंकर के साथ में एक्सपर्ट की भूमिका का भी निर्वहन करना पड़ा कि हाँ ठीक है आप 2 लाइन बोल रहे हैं तो उस 2 लाइन को और विस्तार देके कैसे 10 लाइन में मुझे करना है, तो ये भी कई बार करने को मिला। एक बार और एक गजब अनुभव ऐसा हुआ कि एक कार्यक्रम मेरा चल रहा था, वो कार्यक्रम जैसे ही पूरा हुआ तो एक्सपर्ट तो स्टूडियो से बाहर चले गए और ऊपर पैनल पर जो प्रोड्यूसर बैठते हैं उन प्रोड्यूसर का, हम जो ईपी लगाते हैं, ईयर प्लग लगाते हैं, तो उनका संदेश आया कि एक्सपर्ट को बाहर जाने दीजिए, एंकर को बैठे रहना है।
1: अच्छा,
0: और फिर मैं जब बैठा रहा तो उन्होंने कहा कि आपको एक कार्यक्रम और अभी करना है, क्योंकि उस कार्यक्रम के लिए जो एंकर आने वाले थे वो किसी अच्छा। कारण से स्टूडियो नहीं पहुंच पाए, बाहर बारिश बहुत अधिक है और उनकी गाड़ी खराब हो गई और वो फंस गए हैं, तो अच्छा। इसलिए अगला कार्यक्रम भी आपको ही करना है। मुझे न गेस्ट का पता, न मुझे विषय का
1: स्क्रिप्ट,
0: पता
1: स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट नहीं होगी,
0: विषय का भी नहीं पता कि क्या टॉपिक क्या है,
1: क्या टॉपिक,
0: लेकिन उन्होंने कहा कि 3 मिनट में शुरू करेंगे, एक्सपर्ट नए आ गए। उसी समय उन्होंने बताया, माँ शारदे की कृपा से वो कार्यक्रम भी हमने उसी तरह संचालित किया कि जैसे किसी को महसूस भी नहीं हुआ।
1: मजा आ गया जी, ये तो बिल्कुल जैसे अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप बहुत छोटे छोटे जवाब देते हो, मेरे को संभालना मुश्किल हो जाएगा किस तरह से मैं आगे बढ़ूं। बिल्कुल, ये बहुत बहुत सही बात बताई आप। चलिए इसी इस दूरदर्शन की याद पे और इन सब बातों की आपकी याद पे सुन के रुक के एक गाने का आनंद ले लेते हैं हम, फिर आगे बातचीत शुरू करते हैं।

0: चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है बहेली आई, कभी तो हंसाए।
1: हाँ तो विवेकानंद जी, अब थोड़ा सा हम एकेडमिक की तरफ चलते हैं। एक अच्छे एंकर के लिए आपको क्या लगता है सबसे जरूरी गुण क्या है? आवाज, व्यक्तित्व, तैयारी?

0: भूषण है, माता का गलहार है, विश्व पटल पर भाषाओं में इसका भी सत्कार है, संस्कृत की बेटी है ये तो संस्कृति की संवाहक है, अंग्रेजी के पीछे भगते फिर क्यों बेटे नाहक हैं, इसे बढ़ाएं इसे बचाएं अपनी जिम्मेदारी है, ऐ संस्कारी दौर में इसकी अपनी पहरेदारी है, ऐ संस्कारी दौर में इसकी अपनी पहरेदारी है। तो मैं इसलिए कहता हूं कि आपको अन्य भाषाएं भले कार दे देंगी, संस्कार आपको माँ हिंदी की शरण में आने पर ही
1: बिल्कुल
0: मिलेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो बहुत ही वो है। और कई बार हमारे पब्लिक सेक्टर्स में जो हिंदी दिवस होता है उस पे यही बात चर्चा में होती है कि केवल एक हिंदी दिवस पे हम हिंदी की बातें करते हैं और बाकी पूरे साल इसको भूल जाते हैं। मेरे को याद आता है बहुत सारी ऐसी बातें
0: तो
1: हैं,
0: अपनी भाषा
1: लेकिन
0: का अभिमान होना चाहिए हमें, ये जो
1: अभिमान
0: स्वाभिमान है ये गर्व का विषय है कि हमारी भाषा ऐसी भाषा है जिसमें किसी तरह की दरिद्रता नहीं है, एक एक शब्द के लिए हमारे पास में, आप पैर की बात कीजिए कितने तरह के शब्द मिल जाएंगे, आप
1: बिल्कुल।
0: रिश्तों की बात कीजिए तो चाचा ताऊ बुआ फूफा मामा कितने शब्द मिलेंगे,
1: हाँ,
0: और
1: उनमें
0: दूसरी
1: अंकल और आंटी
0: भाषाओं
1: के
0: में
1: सिवा
0: इनके,
1: कुछ नहीं। हाँ
0: हाँ तो ये यदि आप देखेंगे तो हमें गर्व होता है कि हम
1: बिल्कुल
0: जो है एक ऐसी भाषा जो देववाणी से निकली है उसके
1: बिल्कुल।
0: अनुयायी हैं।
1: चलिए, आप थोड़ा सा आपका राजनीतिक विश्लेषण जो आप करते हैं उसके बारे में रुख कर लेते हैं। आप कई राष्ट्रीय चैनलों पर आते हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में, तो आप ये बताइए, राजनीति को अब समझना आसान हुआ है या जटिल हो गया है? क्योंकि आजकल की जो राजनीति है उसको या तो पत्रकार समझ पाते हैं या पॉलिटिकल लोग समझ पाते हैं, आम आदमी का कहीं उसमें कुछ लेना देना है, कुछ है या नहीं है?
0: देखिए वो डिपेंड करता है, वो निर्भर करता है व्यक्ति की उसमें रुचि कितनी है। मैं जब पत्रकारिता के क्षेत्र में आया तो मेरे को जिस तरीके से रिपोर्टिंग करनी होती थी, तो जब रिपोर्टिंग करनी होती थी तो उस विषय की जानकारी भी चाहिए, तो उस विषय के बारे में पढ़ना मैंने शुरू किया, और फिर जब पढ़ना शुरू किया तो फिर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के साथ में बैठना उठना शुरू किया, वहां से व्यावहारिक ज्ञान आता है लोगों के साथ बैठ के। राजनीतिक क्षेत्र में जो काम करने वाले बहुत से मेरे मित्र हैं तो उनके साथ कई कई घंटों बैठता था, और पुराने नेताओं के वो जो कहानी किस्से सुनाते थे, भैरव सिंह जी शेखावत के,
1: हाँ,
0: शीश राम ओला के, है ना,
1: मोहल्ला
0: अलग अलग जो
1: सुखाड़िया के।
0: पार्टियों के,
1: हाँ
0: हाँ, तो उनके जो वो किस्से सुनाते थे उससे पता लगता था कि माइंडसेट क्या था व्यक्ति का। फिर जैसे भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें या कांग्रेस की बात कर लें, तो ये कागजों में क्या लिखते हैं, इनकी नीतियां क्या हैं, इनकी विचारधारा क्या है, और फिर इनके जब सरकार होती है तो किस तरह के फैसले होते हैं, किस आधार पर ये सरकार चलाते हैं, उनकी योजनाओं में किस चीज की झलक मिलती है, तो ये जब आप अध्ययन करते हैं, लोगों से सुनते हैं, खुद विश्लेषण करते हैं, तो धीरे, और साथ में आम जनता से जब मिलना होता है, मेरा तो ये एक सौभाग्य रहा कि अभी जो विधानसभा चुनाव हुए थे उन विधानसभा चुनाव में मेरे को सर्वे करने का अवसर मिला, करीब करीब
1: ओके
0: अट्ठाईस
1: ओके,
0: तीस विधानसभा क्षेत्रों में मैं गया, तो
1: अच्छा।
0: लगभग राजस्थान के 1,500 से अधिक गांवों में मेरा जाना हुआ, तो वहां भी मैं सीखने का प्रयास करता हूँ। गांव में बैठा हुआ, चौपाल पर बैठा हुआ व्यक्ति वो शहर के व्यक्ति से कहीं ज्यादा राजनीति समझता है, वो चाहे उसने किताबें कम पढ़ी होंगी लेकिन जो उठापटक होती है वो उस मामले में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शहरी लोगों से बहुत आगे है।
1: बिल्कुल, बहुत बढ़िया बताया आपने, और इनफैक्ट आपने मेरे अगले सवाल का भी जवाब दे दिया। मैं चुनावी सर्वे के बारे में, मेरा सवाल था अगला वाला, कि ये जो
0: अच्छा
1: चुनावी सर्वे कंटेंट और रणनीति पर काम करने का आपका अनुभव है, तो पर्दे की पीछे की राजनीति के बारे में कुछ थोड़ा सा शॉर्ट में बता पाएंगे कैसे चलती है,
0: जी जी
1: खासतौर से
0: बिल्कुल
1: चुनावी
0: बिल्कुल,
1: समय में?
0: वैसे तो देखिए ये राज की बात है, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूं कि
1: बोल दीजिए।
0: 2010 के आसपास से भारत की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आया है। 2010 से पहले की राजनीति को देखते हैं, खुद राजनेता जो है वो, अधिकांश राजनेता पढ़ने लिखने वाले होते थे, विद्वान होते थे। मैं ऐसे बहुत से नेताओं को जानता हूं कि जो ट्रेन में सफर करते थे तो साथ में कोई ना कोई दो पुस्तकें जरूर होती थी।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: आज जो दौर है वो मैनेजमेंट का दौर है, और ये कहते हुए मुझे कोई हिचक और झिझक नहीं है कि यदि आपके पास में धन है तो उससे बुद्धि भी खरीदी जाती है। और आपके सलाहकार, आपकी मैनेजमेंट की टीम में कैसे लोग हैं।

0: आपके पास कंटेंट वाले कैसे लोग हैं, आपको जाकर बोलना है मंच पर, प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए, रॉ मटेरियल तो आपको मिल ही जाता है। और बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं कि पूरा रेडीमेड ही जो है उनको कंटेंट परोस दिया जाता है, उनको जाके केवल उसका वाचन करना होता है। तो परिवर्तन है, मैनेजमेंट का भी एक बड़ा रोल हो गया है। कंपनियां मैनेजमेंट, पीआर कंपनियां जो है, चुनाव
1: बिल्कुल
0: काम करने वाली कंपनियां इतना तक तय करती हैं कि नेताजी को किस तरह के कपड़े पहनने हैं,
1: सही
0: नेताजी को जूते और चप्पल कैसे पहनने हैं, उनको कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कितना खाना है, तमाम चीजों पर, आपकी दाढ़ी कैसी रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी, बाल कैसे रहेंगे, तमाम चीज, और चश्मा कैसा लगाओगे आप, ये इतना तक मैनेजमेंट होने लग गया है आजकल।
1: ये इमेज बिल्डिंग का जो एक्सरसाइज हो गई है, बिल्कुल सही बात
0: जी
1: बता रहे हो आप। बिल्कुल ये चश्मा गहना पहनना है और लुई वेटो के कपड़े पहनने हैं, कौन से किसके पहनने हैं, बहुत सही बात है। अभी बात हो ही रही थी ना निशिकांत दुबे के बारे में।
0: हाँ
1: बिल्कुल सही बात है। चलिए तो फिर यहाँ रुक के हम जो ये विरोधाभास है हमारे जीवन में और राजनीति पे, इस पे रुक के एक गाना सा सुन लेते हैं कोई, एक अच्छा सा, और फिर आगे चलते हैं।

0: विवेकानंद जी, अब तो थोड़ा सा आपके कविताओं की तरफ आते हैं, आपके इस जीवन की तरफ आते हैं।
1: जी
0: पत्रकार और विश्लेषक के भीतर से कवि कब और कैसे जन्मा, ये और आपकी ये जो ज्यादातर कौन से विषय हैं जिनके आसपास आपकी कविताएं घूमती हैं, इनके बारे में कुछ बताइए हमें।
1: देखिए, मैं तो वैसे अभी भी अपने आप को कोई कवि नहीं मानता। मैं पत्रकारिता का विद्यार्थी रहा, पत्रकारिता के क्षेत्र में काम किया। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में भी दो तरह के काम हैं, एक रिपोर्टिंग का काम होता है, दूसरा विचार का काम होता है। तो विचार जो है वो हम कोई लेख पढ़ते हैं, संपादकीय पढ़ते हैं, कोई व्यंग पढ़ते हैं, उससे हमारा एक माइंडसेट भी बनता है। तो मैंने पत्रकारिता के शुरुआती दौर में ही रिपोर्टिंग करने के साथ साथ कॉलम लिखना शुरू किया, और
0: अच्छा,
1: संयोगवश मेरे मन में यह था कि इस भीड़ से अलग लिखना है और भीड़ से अलग दिखना है, तो उसके लिए कुछ नया प्रयोग करना पड़ेगा। तो मैं जो कॉलम लिखता था, उस कॉलम का मैं समापन, एक तरीके से उसका जो सार है, यदि मान लीजिए मैंने 250 शब्दों का कोई व्यंग लिखा है कॉलम में,
0: अच्छा
1: तो
0: अच्छा
1: उसका सार मैं 4 पंक्तियों की कोई तुकबंदी करके किया करता था।
0: ओके ओके,
1: तो वो
0: अच्छा
1: तुकबंदी, जो 4 पंक्तियों की तुकबंदी होती थी, उसमें एक तरीके से उसका सार आ जाता था। और मेरे कुछ मित्र, कुछ मेरे इस तरीके के शुभचिंतक जो है, वो उनको नियमित पढ़ते भी थे और मेरा उत्साहवर्धन भी करते थे। संयोग से एक बार एक कोई कार्यक्रम हो रहा था जामडोली जयपुर में, और उसमें मेरे एक मित्र थे, उनके जिम्मे वो कवि सम्मेलन का कार्यक्रम आ गया। उन्होंने मेरे से कहा कि आपको भी काव्य पाठ करना है। मैंने कहा जी मैं काव्य पाठ कहाँ करूंगा, मैं तो लिखने वाला आदमी हूँ। मंचों पर काव्य पाठ, मंचों पर मैं विषय जरूर रखता था, व्याख्यान वगैरह देता था मैं, और मैंने कहा कविता सुनाना मंच पर बड़ा मुश्किल होगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपका नाम बोलूंगा वहां और 4-5 हजार लोग रहेंगे, आप नहीं आओगे तो आपकी इंसल्ट हो जाएगी, आप देख लेना। मैं बिना तैयारी के वहां पहुंच गया, और फिर वहीं मंच पर बैठे बैठे कुछ दोहे मैंने बनाए। और जब देखा कि उन दोहों को जब मैं दोहे में सुना रहा था, तो सामने जो पब्लिक थी वो जोरदार मेरा उत्साहवर्धन किया, उन्होंने खूब तालियां मिली, खूब उनकी मेरे को दाद मिली, और उस वहां से मेरा एक आत्मविश्वास बढ़ा। और मुझे लगा कि नहीं, ठीक है, अपन इस दिशा में भी थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। ज्यादातर विषय जो है तात्कालिक विषय मैं लेता था, कोई मतलब कभी मेरे को याद नहीं आता कि मैंने कागज पेन लेकर बैठा हूं कि हाँ मेरे को कविता लिखनी है। मुझे कहीं से कुछ दिखा, कोई घटना, कोई परिस्थिति, उसी में से कुछ ना कुछ पंक्तियां, चाहे दोहे के रूप में निकली हो, चाहे किसी अलग छंद के रूप में निकली हो, चाहे मुक्तक के रूप में निकली हो, तो इसी आधार पर संवेदनशीलता जो है वो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है। और विचार व्यक्त करने का आपका यदि अभ्यास रहता है, वो चाहे गद्य में हो चाहे पद्य में हो, वो यदि अभ्यास है तो फिर चीजें थोड़ी आसान होने लगती हैं।
0: बहुत सुंदर, मजा आ गया आपकी बात सुनकर। अच्छा, अब विवेकानंद जी, हम करीब करीब आखिरी पायदान पर आ गए हैं।
1: जी
0: मैं आपसे एक प्रश्न, आज के युवा पत्रकार एंकर या कवि बनना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने सब विधाओं का आपके पास अनुभव है, तो
1: जी
0: इनको आपको अगर कोई तीन में सबसे महत्वपूर्ण सलाह देनी होगी तो क्या देंगे आप?
1: देखिए, मैंने जब पढ़ाई पूरी की थी तो मेरे मन में भी कोई ये विचार नहीं था कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है। मुझे ये था कि मुझे कोई ना कोई काम, अपना काम करना है, अपने तरीके से करना है, और किसी के अधीन रहना ये कहीं ना कहीं मेरे मन को कचोटता था। तो इसलिए मैंने ये लाइन चुनी पत्रकारिता की, कवि सम्मेलनों की तरफ आया, लेखन की तरफ आया, चुनाव की रणनीति वगैरह की, ये जो लाइनें हैं। और आज मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी भी अक्सर एक बात कहते हैं कि आप नौकरी मांगने वाले मत बनिए, नौकरी देने वाले बनिए।
0: धन्यवाद।
1: तो आप चाहे कवि बनना चाहते हैं, लेखक बनना चाहते हैं, पीआर इंडस्ट्री में आप काम करना चाहते हैं, चुनावी क्षेत्र जो है उसमें आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में आना चाहते हैं, यदि कोई भी क्षेत्र जो आप सोचते हैं, सबसे पहली और पहली आवश्यकता है आपका अध्ययन। उस क्षेत्र के संदर्भ में आपको नॉलेज जो है वो जरूरी है, और नॉलेज, प्रामाणिक नॉलेज चाहिए। आजकल जो एक शब्द चलता है व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी, उससे काम नहीं चलेगा। आपको प्रामाणिक जानकारी होना वो बहुत जरूरी है। दूसरी बात, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। और तीसरी, तो पहली बात हो गई आपका ज्ञान, प्रामाणिक ज्ञान वो आएगा अध्ययन से, दूसरी बात परिश्रम, और तीसरी जो बात है वो है फिर धैर्य। ये नहीं होगा कि आज आपने पौधा लगाया और कल वो आपको फल देने लग जाए। और हमारे यहाँ तो जो गीत

0: है कि ये जो विवेकानंद जी ने बातें बताई हैं ये हमारे लिए बहुत सार्थक रहेंगी। तो विवेकानंद जी, आज की सार्थक और प्रेरणादायक बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार हमारी तरफ से।
1: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि जब आपने बीच बीच में मेरे से बहुत सारी कविताएं सुन ली हैं, तो इस
0: बिल्कुल
1: कार्यक्रम का समापन भी एक दोहे के साथ
0: बिल्कुल
1: में
0: बिल्कुल
1: हो
0: बिल्कुल
1: जाए, क्योंकि
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: किसी
0: बिल्कुल
1: बहुत बड़े कवि ने एक बात कही है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो दो पंक्तियों का एक दोहा, दुमदार दोहा, जिसमें एक तीसरी पंक्ति और आती है, तो
0: जी
1: उसमें वर्तमान परिस्थितियों पर मैंने कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए लिखा है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसके लिए मैंने लिखा कि गर्मी से जब हो रहे सबके हाल बेहाल, गर्मी

0: तन भी शीतलता पाए, नीम से रोग भगाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: चलिए, तो श्रोताओं, आपके अनुभव, आपके विचार और आपकी कविताओं ने निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं को सोचने पर मजबूर किया, विशेषकर युवाओं के लिए, जो आपका संदेश प्रेरणा का स्रोत है। श्रोताओं, अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं या अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो हमें जरूर लिखें। फिलहाल मुझे, आलोक कुमार को दीजिए अनुमति। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी एक नए व्यक्तित्व, नई प्रेरणा के साथ। नमस्कार, और सुनते रहिए जिंदगी के रंग गीतों के साथ। धन्यवाद।
2: मगर अब जो आना तो धीरे से आना।
3: और दोस्तों, इसी के साथ आज के इस खूबसूरत सफर को बस यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज की बातचीत और गीतों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको कुछ नया सोचने की प्रेरणा दी होगी। फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान, एक नई कहानी और नए गीतों के साथ, जिंदगी के रंग गीतों के संग इस प्रोग्राम में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
1: एकता और ऐश्वर्या।

0: कैसे हो बच्चों?
1: नमस्ते
0: नमस्ते नमस्ते।
2: अरे भैया
0: आज तो सब बड़े खुश नजर आ रहे हो।
2: हाँ, भैया
0: लेकिन ये क्या, ये तुम कुछ छुपा रहे हो क्या?
2: नहीं
1: कुछ नहीं छुपा रहे।
0: नहीं नहीं नहीं, देखो ये कुशागर और ये निशांत, इनके हाथ में शायद कुछ है। वाह, क्या बात है भाई, है इतने सुंदर फूल। वाह वाह वाह, कितने सुंदर फूल है। वाह, क्या खुशबू है इन फूलों की। अच्छा ये बताओ भाई, इन फूलों को तुम लेकर कहाँ से आए?
2: ये ऋचा के बाग के फूल हैं।
0: ऋचा के बाग के
3: हैं? हाँ भैया, ये मेरे बाग के फूल हैं।
0: अरे वाह, धन्यवाद धन्यवाद ऋचा, बहुत बहुत अच्छे फूल लेकर आई हो तुम, बहुत अच्छे फूल है ये। अच्छा ये बताओ कि ये फूल तुम लेकर क्यों आए हो मेरे लिए?
3: भैया हम आपको उपहार देना चाहते थे।
0: अच्छा,
3: आप हमें एक कहानी इतनी सुंदर भी तो सुनाते हो।
0: अरे वाह, क्या बात है मेरे शेर, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। वाह, क्या खुशबू है इन फूलों की। सचमुच फूल तो सभी को अच्छे लगते हैं, एकता और ऐश्वर्या को भी फूल बहुत सुंदर लगते थे।
2: ये कौन है भैया?

0: वही तो बताने वाला हूँ। हाँ तो बच्चों, मेरी कहानी का नाम है एकता और ऐश्वर्या, और आज के मेरे अक्षर हैं ए और ए। ए ए
1: ए ए
0: ए ए
1: ए ए।
0: हाँ शाबाश, ए से एकता और ए से ऐश्वर्या, एकता और ऐश्वर्या। तो एकता और ऐश्वर्या दो बहनें थीं। दोनों एक दिन एक बाग में घूमने के लिए गईं।
2: ए से एड़ी।
0: हाँ तो बच्चों, वहां पर सुंदर सुंदर फूल खिले थे, जैसे तुम लेकर आए हो मेरे लिए, है कि एकता उन्हें एक टक देखती रह गई।
2: ए से एकता एक टक।
0: शाबाश। हाँ तो बच्चों, उसने सोचा
3: माली से पूछूं कि उन्होंने इतना सुंदर हर एक गुलाब और हर फूल खिलाया कैसे।
0: हाँ तो बच्चों, फिर एकता और ऐश्वर्या माली को ढूंढने लगी। हाँ तो पता है, माली काका मिले ही नहीं।
2: क्यों?
0: बताता हूँ बच्चों। उन्होंने बहुत ढूंढा तो देखा कि माली काका बाग के कोने में एकांत में बैठे थे। एकांत यानी शांत, खाली जगह। तो ए से
1: एकांत।
0: एकांत, शाबाश, ए से एकांत।
2: एकांत।
0: तब बच्चों, ऐश्वर्या ने माली काका से पूछा,
3: माली काका आपने इतने सुंदर फूल और वो भी इतने बड़े बड़े उगाए कैसे।
0: तो माली काका एकदम गुस्सा हो गए और बोले, दूर हटो यहाँ से।
2: माली एकदम से गुस्सा क्यों हो गए?
0: अरे बताता हूँ रिचा, लेकिन पहले बताओ ए से
1: एकदम।
0: ए से
1: एकदम।
0: एकदम, शाबाश। तो गुस्से में ऐंठ गए माली काका। ए से
2: ऐठ कर।
0: हाँ शाबाश
4: भैया। ऐसे ऐसा भैया।
0: सही कहा तुमने, ऐसे ऐसा। बिल्कुल सही, शाबाश। तो बच्चों, एकता और ऐश्वर्या की बात सुनकर माली काका बोले,
5: अरे ना जाने यहाँ कैसे कैसे लोग चले आते हैं। मैं इतनी मेहनत से फूल उगाता हूँ और ये लोग एक एक फूल तोड़ कर ले जाते हैं, मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। हाँ
2: ये तो बहुत बुरी बात है भैया।
0: हाँ बहुत बुरी बात है।
4: माली काका तो दुखी होते होंगे।
0: बिल्कुल होते थे बच्चों।
2: मेहनत कर
4: ऐसा नहीं करना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
2: मैं तो कभी भी फूल नहीं तोड़ता।
0: फूल। शाबाश। तो बच्चों, तब एकता ने पता क्या किया?
2: बताता हूँ।
4: जल्दी।
0: हाँ जल्दी बताता हूँ। तब बच्चों, एकता ने एक पेड़ की डाल पर ये लिखकर टांग दिया।
2: क्या भैया?
0: यही कि यहाँ फूल तोड़ना एकदम मना है। और ऐश्वर्या ने भी बाग के बाहर ये ऐलान कर दिया।
2: भैया।
0: उसने ये ऐलान किया कि जो भी फूल तोड़ेगा उस पर जुर्माना होगा, और जिसे बाग देखने आना है उसे टिकट भी लेना होगा।
2: अरे वाह, टिकट लगा दिया।
0: हाँ टिकट लगा दिया।
2: की तो कमाई हो गई।
0: बिल्कुल कमाई हो गई, शाबाश। हाँ। तो बच्चों बताओ, ऐसे
1: ऐसे
0: ऐश्वर्या, ऐनक
4: ऐसा
0: ऐसा, और ऐसे ऐलान, ऐसे ऐलान। हाँ ऐलान कर दिया उसने। तो बच्चों, इस तरह से एकता और ऐश्वर्या ने मिलकर ये बहुत अच्छा काम किया। माली काका की मेहनत भी बेकार नहीं गई और मेहनत का इनाम भी मिला। बताओ कैसे मिला?
2: अब लोग टिकट लेने लगे।
0: बिल्कुल सही,
2: माली काका को भी कमाई हो गई।
0: बिल्कुल कमाई भी हो गई।
4: अब कोई उनका फूल नहीं तोड़ेगा।
0: अब कोई उनके फूल नहीं तोड़ेगा, शाबाश।
2: अब वो खुश रहते हैं।
0: अब वो खुश रहते हैं
4: और बहुत सारे फूल खिलेंगे।
0: बहुत सारे फूल भी खिलेंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने बच्चों। अब लोग टिकट लेकर बाग देखने आते थे, और हाँ फूल भी नहीं तोड़ते थे। इस तरह से न तो फूल टूटते थे और न ही बाग की सुंदरता कम होती थी, बल्कि बाग की सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ गई थी। और हाँ, साथ साथ मालिका का धन भी कमाने लग गए थे।
2: बहुत खुश हो गए।
4: उनके यहाँ चिड़ियाँ भी आने लग गई।
0: चिड़ियाँ आने लग गई,
4: टूरिस्ट आने लग गए।
2: और उनकी फोटो बाहर छप गई।
0: अखबार में छप गई। यानी उनका बहुत प्रचार हो गया, वो बहुत प्रसिद्ध हो गए दूर दूर तक।
6: ए ए ए

बाग का माली था बैठा। पूछा जब ऐश्वर्या ने तो माली थोड़ा सा ऐठा। माली को गुस्से में पाकर दोनों का दिल था बैठा। ए से एकांत और ऐ से ऐश्वर्या और

0: एकता और ऐश्वर्या ने पूछा,
1: काका गुस्सा क्यों ऐसे? माली बोला,
2: लोग यहाँ पर आते हैं जाने कैसे कैसे, एक एक फूल को तोड़ फेरते हैं मेरी मेहनत पर पानी जैसे।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: तूतुन की रेल छूट गई, पता नहीं कहाँ रह गए बच्चे सभी।
2: अरे लो आ गए बच्चे, आ गए। नमस्ते आओ चलो अपने
3: बच्चों, आज तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो।
4: हम पार्क में खेल रहे थे।
2: अच्छा, तो बहुत मस्ती की होगी तुमने पार्क में, है ना?
3: अच्छा ये बताओ, तुम और कहाँ कहाँ मजे करते हो?
4: झूले पर।
2: अच्छा, और
4: सहेली के घर पे, मामा जी।
3: अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और ये बताओ, नानी जी के घर कौन मजे करता है?
4: मैं गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाता हूँ।
2: अच्छा,
4: मैं भी जाता हूँ और हम नानी के घर पे खूब शैतानी करते हैं। और उधर मामा जी भी होते हैं हमारे। अच्छा। और मेरी मम्मी भी होती है।
3: अरे वाह भाई वाह। अच्छा बच्चों, पता है तुम्हारे जैसा ही एक प्यारा सा नन्ना मुन्ना नटखट सा बच्चा था, जिसका नाम था तूतुन।
2: क्या नाम था?
5: तूतुन।
3: तूतुन को भी अपनी नानी के घर जाना बहुत अच्छा लगता था, तुम्हारी तरह।
2: हाँ, और नानी के घर से वापस आने का उसका मन ही नहीं करता था।
4: मेरा भी मन नहीं करता आने का। मैं तो सर्दियों में जाता हूँ।
3: तो ठीक ऐसे ही तूतुन का मन नानी के घर बहुत लगता था, बड़े मजे आते थे उसे वहाँ। एक बार गर्मी की छुट्टियों में तूतुन नानी के घर गया, तो छुट्टियां खत्म होने पर तूतुन की मम्मी ने तूतुन से कहा,
2: अरे अरे बेटा तूतुन, कहाँ हो? चलो जल्दी से अपना सामान बांधो। हाँ भाई, रेलगाड़ी आने वाली है 5:30 बजे, छूट जाएगी, कहाँ हो तूतुन?
3: और पता है बच्चों, 5:30 बजे का मतलब क्या होता है?
2: क्या होता है? हाँ
3: सोचो सोचो। अरे मैं बताता हूँ, 5:30 यानी 5:30 क्या?
5: 5:30।
3: शाबाश,
2: बिल्कुल सही कहा। और फिर पता है क्या हुआ? जाने की बात सुनकर तूतुन बहुत उदास हो गया और सोचने लगा,
6: ओहो हम कितनी जल्दी वापस जा रहे हैं, काश हमारी रेलगाड़ी छूट जाए।
2: पर अब क्या हो सकता था, तूतुन को तो जाना था। तो तूतुन अपने मम्मी पापा के साथ 5:15 पर ही रेलवे स्टेशन पहुंच गया। तब तूतुन के पापा बोले,
7: अरे भाई तूतुन जल्दी करो। अरे 5:15 बेटा, कहीं ट्रेन छूट ना जाए।
2: और सुनो आगे सुनो, ट्रेन छूटने की बात पर तूतुन बहुत खुश हो गया और फिर पता है क्या सोचने लगा?
8: लगता है हमारी ट्रेन छूट गई। अरे मजा आ गया, हमारी ट्रेन छूट गई। अब मैं और भी देर तक नानी के घर रह सकता हूँ।
2: तो बच्चों बताओ, क्या तूतुन की ट्रेन निकल गई थी? हाँ
4: नहीं, क्योंकि ट्रेन तो 5:30 निकलनी थी ना।
9: अभी 5:15 ही तो बजे थे।
3: बिल्कुल सही तुमने बताया ईशान। अब ये बताओ, 5:30 का क्या मतलब हुआ?
5: 5:30।
3: शाबाश।
2: और 5:15 का मतलब क्या हुआ?
5: 5:15।
2: बिल्कुल
3: सही, इसी बात पर हो जाए ताली। पर बच्चों, तूतुन को ये पता ही नहीं था, वो तो खुश हो रहा था कि उसकी ट्रेन छूट गई।
2: और तब तूतुन के पापा ने तूतुन को बताया,
7: अरे बेटा अभी ट्रेन को आने में 15 बाकी हैं, ट्रेन 5:30 पर आएगी, अभी तो 5:15 ही है।
4: अब तो तूतुन दुखी हो गया होगा। उसे तो जाना होगा,
9: अब तो उसे जाना ही पड़ेगा।
3: अरे नहीं बाबा, सुनो तो सही, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ।
2: हाँ, क्योंकि ट्रेन तो आई ही नहीं। उन लोगों को बहुत देर तक वही इंतजार करना पड़ा।
9: अरे ये कैसे हुआ?
3: यही पूछने तो तूतुन के पापा स्टेशन मास्टर के पास जा पहुँचे और बोले,
7: स्टेशन मास्टर साहब, ये ट्रेन क्यों नहीं आई अभी तक? हम बहुत परेशान हैं। अब देखो हमारे टिकट पर तो 5:30 लिखा है।
4: तो स्टेशन मास्टर ने क्या कहा?
3: स्टेशन मास्टर ने कहा,
7: सर 5:30 का मतलब है 5:30। असल में आपकी गाड़ी 5:30 पर चली गई।
3: क्या?
7: सर देखिए, रेलवे में शाम के 5:30 को 17:30 कहा जाता है, यानी 17 घंटे 30 मिनट। क्या मतलब?
5: 17 घंटे 30 मिनट।
7: शाबाश।
4: 17 घंटे 30 मिनट काफी अजीब सा लग रहा है।
2: हाँ, तुम्हारी ही तरह तुतुन को भी 17 घंटे 30 मिनट सुनकर ना अजीब लग रहा था।
4: पर ऐसा क्यों कहते हैं दीदी?
2: ऐसा इसलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि रेलवे में 12 नहीं 24 घंटे की घड़ी का प्रयोग होता है।
3: हाँ, 12 घंटे की घड़ी में एक ही समय 2 बार आता है, इसलिए हमें उसके साथ सुबह, दोपहर, शाम, रात ये सब लगाना पड़ता है। जैसे सुबह के 9 बजे
2: और रात के 9 बजे,
3: सुबह के 5 बजे
2: और शाम के
5: 5 बजे।
3: शाबाश। अच्छा, सुबह के 11 बजे
5: और शाम के 11 बजे।
3: शाम के 11 बजे नहीं बेटा, रात के 11 बजे। बजाओ ताली इसी बात पर।
4: तो तुतुन की रेल छूट गई थी ना? तुतुन को तो बड़ा मजा आ गया होगा।
3: हाँ बच्चों, बहुत मजा आया था। लेकिन अब तुतुन ने 24 घंटे की घड़ी में समय देखना सीख लिया था।
2: हाँ, और पता है 24 घंटे की घड़ी में जब दोपहर के 12 बजे के बाद 1 बजता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं 13 घंटे।
3: क्या कहते हैं?
5: 13 घंटे।
3: हाँ, यानी 12 घंटे में 1 घंटा और जोड़ दिया तो हो गए कितने घंटे?
5: 13 घंटे।
3: शाबाश। अच्छा गुड़िया, तुम मेरी घड़ी देखकर बताओ कि इस वक्त कितने बजे हैं?
4: 4 बजे हैं।
3: 4 बजे हैं, बिल्कुल सही। और शाम होने को है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ?
4: शाम के 4 बजे हैं।
3: शाबाश गुड़िया, बजाओ इसी बात पर ताली।
2: हाँ, तो अब ये बताओ 24 घंटे की घड़ी के हिसाब से क्या समय हुआ?
3: बताओ बताओ।
4: 12, 13, 14, 15, 16
2: बताओ।
4: 16 बजे हैं।
3: 16 बजे हैं नहीं, 16 घंटे हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अच्छा बताओ बच्चों, 12 घंटे की घड़ी में शाम के 6 बजे हूँ तो 24 घंटे की घड़ी के हिसाब से क्या समय होगा?
5: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 घंटे।
3: शाबाश, बिल्कुल सही कहा तुमने, 18 घंटे।
2: तो अब ये बताओ शाम के 6:30 हो तो
4: 18 घंटे 30 मिनट।
3: वेरी गुड।
2: और शाम के 7 बजे? हाँ हाँ, सोचो सोचो।
4: 19 घंटे।
3: अरे वाह, शाबाश, बड़े होशियार बच्चे हैं। वैसे एक बात है, तुतुन भी तुम्हारी तरह बहुत होशियार हो गया था। तो इस तरह हुई कहानी खत्म। बजाओ ताली।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, जाबुआ की आवाज।
1: भूखा अमरूद

0: Buka amrud. एक थी ची ची चिड़िया और एक थी गुनगुन गिलहरी। दोनों सहेलियां थी। हाँ बच्चों, एक दिन चींची ने गुनगुन से कहा,
1: चलो गुनगुन अमरूद के पेड़ पर चढ़कर खेलें।
0: तो बच्चों दोनों पहुंची अमरूद के पेड़ के पास और बोली,
1: अमरूद भैया क्या हम यहाँ खेल सकती हैं?
0: अमरूद ने कहा,
2: हाँ हाँ खेल लो, लेकिन ध्यान रहे मेरी टहनियाँ ना टूटें।
0: चींची चिड़िया हैरान होकर बोली,
1: अरे अमरूद भैया तुम्हें दर्द होता है क्या?
2: और नहीं तो क्या, तुम्हें दर्द होता है ना, वैसे ही हम पेड़ों को भी दर्द होता है।
1: अच्छा अच्छा, हम नहीं तोड़ेंगे टहनियाँ।
0: ऐसा कहकर बच्चों दोनों खेलने लगी। हैं? कुछ देर के बाद उन्हें भूख लगी। गुनगुन बोली,
1: अमरूद भैया क्या हम तुम्हारे अमरूद खा लें?
0: ये सुनकर बच्चों अमरूद ने कहा,
2: मैं अभी भूखा हूँ, तुम पहले मेरे लिए भोजन लाओ, यानी मेरे आहार का इंतजाम करो।
0: हैरान होकर चींची ने पूछा,
1: अरे तुम खाना भी खाते हो?
0: तो अमरूद बोला,
2: इसमें हैरान होने की क्या बात है, खाना तो सभी को चाहिए, खाना खाकर ही तो हम बढ़ते हैं। तुम भी तो पहले छोटी नन्नी मुन्नी थी, तुम्हारी अम्मा तुम्हें दाना ला ला कर खिलाती थी, तभी तो तुम बड़ी हुई और चलने उड़ने लगी।
0: ये सुन बच्चों चींची ने कहा,
1: लेकिन तुम्हारे लिए खाना कौन लाता है?
0: गुनगुन बोली,
1: और भला तुम खाते क्या हो, हमें बताओ तो झटपट तुम्हारे लिए ले आए खाना।
0: अमरूद ने कहा, बच्चों
2: मैं तो मिट्टी से अपना आहार यानी खाना लेता हूँ, जब जमीन में पानी डाला जाता है ना, तो मेरी जड़ें उस पानी को पीती हैं, तने उस पानी को पहुंचा देते हैं पत्तियों तक, पत्तियां सूरज की रोशनी की सहायता से बनाती हैं खाना, मेरा आहार।
0: गुनगुन ने पूछा,
1: अरे भाई प्रकाश यानी रोशनी से कैसे बनता है तुम्हारा खाना?
0: अमरूद का वृक्ष बोला,
2: जैसे मुन्नी की अम्मा अंगीठी में खाना बनाती है ना, वैसे ही सूर्य का प्रकाश है हमारी अंगीठी, उसी की मदद से पत्तियां मेरा आहार बनाती है। और इसके अलावा जैसे तुम सांस लेती हो ना, मुझे भी चाहिए हवा सांस लेने के लिए।
0: तो बच्चों चींची ये सुनकर बोली,
1: लेकिन अमरूद भैया हमें तो सूर्य के प्रकाश से खाना बनाना आता ही नहीं, हम तुम्हारा आहार कैसे बनाएं?
0: गुनगुन ने पूछा,
1: और शुद्ध वायु कहाँ से लाएं?
0: ये सुनकर बच्चों पास में खड़ा दूसरा अमरूद का पेड़ गाने लगा।

0: पेड़ की ये बात सुनते ही चींची खुश होकर बोली,
1: अरे ये तो बड़ी आसान बात है, गज्जू हाथी तो हमारा दोस्त है। दोस्त अभी लेकर आते हैं उसकी सूंड में भरकर पानी।
0: तो बच्चों झट दोनों पहुंची गज्जू हाथी के पास। उनकी बात सुन गज्जू ने अपनी सूंड में ढेर सारा पानी भरा। फिर वे तीनों चल पड़े अमरूद के पेड़ की ओर। अमरूद के पेड़ की जड़ में गज्जू ने सारा पानी उंडेल दिया, ढेर सारा पानी। बस जड़ों ने पानी ऊपर खींचा, तनों ने पत्ती तक पहुंचाया। सूर्य के प्रकाश की मदद से पत्तियों ने पेड़ का आहार बनाया। अमरूद का पेड़ अब भूखा ना रहा और बोला,
2: आओ आओ तुम भी अपनी भूख मिटाओ, लो ये अमरूद खाओ खाओ।
0: चींची चिड़िया, गुनगुन गिलहरी और गज्जू हाथी ने मिलकर बच्चों खूब मीठे मीठे अमरूद खाए।

0: 허락한 절간에 걷어 웃으면 그나만 배고
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया रेडियो टंटिया भील 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
2: एक तिनका।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: अपनी जिम्मेदारी निभाना।

0: महानगर के एक बस स्टैंड पर संजय अपने पिताजी के साथ बस का इंतजार कर रहा है। संजय स्कूल के लिए बस की प्रतीक्षा में है। बस स्टैंड पर काफी भीड़ है।
1: आप किस बस में जाएंगे?
2: कौन से नंबर की बस निकली है अभी?
0: संजय पिताजी से पूछता है,
3: बाबूजी अभी तक बस नहीं आई, कहीं स्कूल को देर ना हो जाए।
4: आती ही होगी बस। अरे देखो ना, अपनी बस के इंतजार में लोग सड़क के बीचों बीच खड़े हो जाते हैं।
3: हाँ बाबूजी, ऐसे में सामने से आती बस दिखाई कैसे देगी?
4: हाँ ये तो है।
0: तभी एक युवक उन दोनों के पास आता है और कहता है,
5: आप दोनों बीच सड़क से हटकर फुटपाथ पर आ जाइए।
4: जी।
3: आप कौन हैं?
5: मेरा नाम आदित्य है। आप थोड़ा फुटपाथ पर आ जाइए।
4: जी ठीक है, आओ बेटा आओ, इधर ऊपर आ जाओ फुटपाथ पर।
5: भाई साहब अब आप भी आ जाइए फुटपाथ पे।
6: क्यों? इतने लोग खड़े हैं और तुम हमसे क्यों कह रहे हो भाई?
5: हाँ हाँ, मैं औरों से भी कह रहा हूँ, आप तो आ जाइए।
6: भैया हम यही ठीक है, आप अपना काम,
5: आप अपना काम करिए। किनारे थोड़ा किनारे आ जाइए आप। भाई साहब फुटपाथ पे आ जाइए आप। बच्चे अब भी आ जाइए फुटपाथ पे। बहन जी फुटपाथ पे आ जाइए आप।
3: बाबू जी देखिए,
5: बहन जी
3: आदित्य भैया एक एक करके सबको कितनी अच्छी बात कह रहे हैं।
4: हाँ और कुछ लोग उसकी बात मानकर फुटपाथ पर आ भी रहे हैं,
3: पर वो दो आदमी तो अभी सड़क पर ही खड़े हैं।
4: उस युवक ने उन्हें समझाया था पर वो नहीं माने तो क्या किया जा सकता है।
3: लो आदित्य भैया तो चले गए।
0: तभी एक बस इतनी तेज गति से आई कि पीछे हटने की कोशिश में बीच सड़क पर खड़े दोनों आदमी गिर पड़े और उन्हें चोट लग गई।
3: अरे ये देखो ये क्या क्या

0: सर इलेक्ट्रिसिटी तो एक घंटे बाद आएगी और
1: क्या
0: तब तक चाय का
1: तो चाय पीकर लौटने का इरादा नहीं है क्या
0: सर है तो पर
1: क्या
0: तब तक इस कंप्यूटर पर इतनी भीड़ हो जाएगी कि मेरी बारी आज आएगी ही नहीं
1: आप इसे शुक्ला जी के कंप्यूटर पर कर लीजिएगा वो खाली पड़ा रहता है
0: शुक्ला जी का कंप्यूटर तो पहले ही खराब पड़ा है
1: चलिए जाने दीजिए उषा जी आप लाइट इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर चाय या अपनी बारी किसी का इंतजार मत कीजिए आप इस पत्र को साधारण टाइपराइटर पर टाइप करके दे दीजिए क्या ये हो सकता है
0: हाँ सर ये तो हो सकता है
2: काम न करने के इतने बहाने और काम करने का कोई बहाना नहीं।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजी प्रेम कुमार सोनी और आप है मेरे साथ रेडियो टंटेवी 90.8 एफएम झावा की आवाज पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं बालिका एवं महिलाओं के सम्मान में एक विशेष कार्यक्रम, नारी सम्मान अभिमन्यु अभियान। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि विकसित व सुरक्षित समाज का निर्माण महिला एवं पुरुषों की समान सहभागिता से ही किया जा सकता है। अतः महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक है कि समाज में बालकों एवं पुरुषों को न केवल महिला संबंधी अपराधों के प्रति जागरूक किया जाए, बल्कि उन्हें संवेदनशील बनाकर पूर्वाग्रह मुक्त सकारात्मक व्यवहार विकसित किया जाए। आज बच्चों एवं महिलाओं पर घटित अपराधों को देखते हुए अपराधों की रोकथाम एवं महिला सुरक्षा को ध्यान में रखकर विशेषकर पुरुषों को जागरूक करने हेतु पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश द्वारा विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, अभिमन्यु अभियान। ये अभिमन्यु अभियान क्या है और ये क्यों चलाया जा रहा है, इस अभियान के संबंध में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे बीच हमारे आज के खास कार्यक्रम की मेहमान हैं महिला सुरक्षा शाखा की डीएसपी वर्षाजी सोलंकी। हम रेडियो टंटेवील 90.8 एफएम झावा की आवाज की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं मैडम। और जिस तरह से ये अभियान मध्य प्रदेश में चल रहा है और जिले में भी व्यापक रूप से इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, तो ये अभियान क्या है हमारे श्रोताओं को आप विशेष रूप से बताने का कष्ट करें, जानें कि किस तरह से पुरुषों को विशेष रूप से जागरूक करने का ये अभियान है, तो ये क्या है।
1: जी नमस्कार, रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। यह अभियान अभिमन्यु जो है वो पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका यह द्वितीय चरण है जो 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक चलाया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से

0: जागरूक करना है ताकि वे अभिमन्यु बनकर इस दुष्चक्र को तोड़ सकें।
1: जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छे उद्देश्य के साथ ये अभियान चल रहा है और हमें सभी को जागरूक करते हुए समाज में व्याप्त नशा, दहेज प्रथा, लिंग भेद, अशिक्षा आदि के दुष्चक्रों को तोड़ना ही होगा। साथ ही हमारा एक सवाल ये था कि पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो उस अभियान के तहत ऐसे कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनके माध्यम से सभी को जागरूक किया जा रहा है?
0: जी, इस अभियान के तहत हम मुख्य रूप से नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं जो भीली भाषा, अपने झाबुआ जिले को देखते हुए भीली भाषा में किए जा रहे हैं। प्रश्नावली पूछी जा रही है, समझाइश दी जा रही है, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, पोस्टर और बैनर के साथ में लोगों को लोकल भाषा में समझाइश दी जा रही है। साथ ही स्कूल के छात्र छात्राओं को महिला सम्मान और समानता की शिक्षा देने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे चित्रकला, प्रश्नावली, मैराथन रेस आदि भी करवाए जा रहे हैं।
1: जी, इसी अभियान के तहत विभिन्न माध्यमों से सभी को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। महिला अपराधों पर अंकुश लगाने तथा समाज में महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण निर्मित हो, इस हेतु यह महत्वपूर्ण अभियान चल रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि यह अभियान का दूसरा चरण है और इससे पूर्व इसका एक चरण पूरा हो चुका है, तो क्या लगता है अभियान के प्रथम चरण में जागरूकता का कितना व्यापक असर दिखाई दे रहा है?
0: जी, ये अभियान का दूसरा चरण है। पहला चरण हमारा 12 जून से लेकर 19 जून तक चलाया गया था, जिसमें हमने मुख्य रूप से गांव-गांव तक एवं फलियों तक जाकर जागरूकता का कार्य किया है, जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि अब हम जब दूसरे चरण में जाके लोगों से बातचीत करते हैं, उन्हें समझाते हैं, तो वो बोलते हैं कि हाँ मैडम, पहले भी पुलिस आई थी और हमें ऐसी चीजें बताई थी जिसे हमको समझ में आता है, लेकिन अब और ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। क्योंकि मानव की प्रवृत्ति होती है कि एक बार सुनने से उसे कम समझ में और कम याद रहता है, वो दूसरी बार सुनता है और देखता है तो उसे ज्यादा समझ में आता है। और ये अभियान तब तक चलाया जाएगा जब तक कि समाज में व्याप्त कुरीतियां समाज से दूर नहीं हो जाती है और नारी का सम्मान स्थापित नहीं हो जाता है।
1: जी, बहुत सुंदर बात कही आपने। यकीनन ही जब तक समाज में व्याप्त कुरीतियां दूर नहीं हो जाती, तब तक हमें लगातार इसी तरह के अभियान चलाकर सभी को जागरूक करने की आवश्यकता है। नारी का सम्मान स्थापित होना चाहिए और यही बात हमारे धर्मशास्त्रों में भी देखने को मिलती है, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तु त्राफलाः क्रियाः। अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है, सम्मान होता है, वहाँ देवता भी निवास करते हैं, और जहाँ नारियों का सम्मान नहीं होता, उन पर अत्याचार होता है, वहाँ किए गए समस्त अच्छे कार्य भी निष्फल हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। जी, तो ये कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हमारा एक सवाल यह था कि पुलिस लगातार महिला सुरक्षा के लिए कार्य कर रही है और पुलिस विभाग द्वारा इस हेतु लगातार विभिन्न प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं, तो ऐसे में आज महिलाएं एवं बालिकाएं अपनी सुरक्षा को लेकर कितनी जागरूक हैं और पुलिस से किस प्रकार सहायता प्राप्त करती हैं?
0: हमारे जिले झाबुआ में आपको ज्ञात होगा कि शिक्षा का स्तर कुछ हद तक नहीं, ये कहा जा सकता है कि बहुत हद तक कम ही है। तो जब हमें शिक्षा नहीं है तो हम अपने अधिकारों को नहीं जानते हैं, उनके बारे में हमें समझ नहीं होती है, तो उन्हें बताने के लिए हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अगम जैन सर और हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रेमलाल कुरवे जी, उनके निर्देश अनुसार मैंने कई प्रकार के महिला सुरक्षा संबंधित अभियान चलाए हैं। मुझे लगता है कि जागरूकता ही एक ऐसा माध्यम है जिससे महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने का महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकता है। और जो महिलाएं या बालिकाएं हमसे किसी न किसी रूप में किसी अभियान में जुड़ी हैं, उनमें हमने ये देखा है कि वो पुलिस की सहायता कैसे ले सकती है या अपने अधिकारों को किस हद तक प्राप्त कर सकती है, उनमें धीरे धीरे समझ आ रही है, परंतु संभावनाएं अब भी है।
1: जी, बहुत सुंदर। शिक्षा का स्तर बढ़ाने के साथ ही हमें जागरूक होना ही होगा और जागरूकता ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा महिलाओं संबंधी अपराधों में कमी आएगी और उन पर हो रहे अत्याचारों पर रोक लगेगी। पुलिस लगातार इस कार्य में लगी हुई है और झाबुआ जिले में भी पुलिस कप्तान अगमजी जैन एवं अतिरिक्त

पुलिस अधीक्षक प्रेमलाल कुर्वे जी के निर्देश अनुसार महिला सुरक्षा संबंधी अभियान सफलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजों सहित गांव-गांव और फलिए फलिए जाकर सभी को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, तो यकीनन ही यह प्रयास सफल होगा और महिला संबंधी अपराधों पर नियंत्रण होगा, इस पर अंकुश लगेगा और महिलाओं का सम्मान कायम होगा। तो कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ते हुए हम ये कहेंगे कि हमारे रेडियो टंटे भील 90.8 FM झावा की आवाज के जो श्रोता हैं, जो विशेष रूप से हमारे इस खास कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनके लिए और विशेष रूप से पुरुषों के लिए जो

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे वर्षा
2: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष।
1: लेकर हाजिर हैं आप सभी के लिए खेती किसानी से जुड़ा हुआ कार्यक्रम खेती बाड़ी।
2: और खेती बाड़ी कार्यक्रम में किसान साथियों के लिए हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत लेकर आते हैं और खास तौर पर उन छोटे छोटे सेगमेंटों पर हम बातचीत करते हैं जो हमारे झाबुआ जिले के किसान साथियों के लिए बेहद जरूरी रहती है, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि खेती बाड़ी करना कितना मुश्किल हो गया है आज के इस जमाने में, क्योंकि इसमें लागत बहुत ज्यादा लगती है और मुनाफा बहुत कम होता है। और अक्सर देखा जाता है कि पथरीली इलाका, अगर झाबुआ जिले की बात करें तो वहां पर पथरीला इलाका है और ऐसे में किसानों को खेती करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने जा रहा है।
1: बिल्कुल, तो इन्हीं सब समस्याओं के समाधान को लेकर रेडियो टांटिया भील आप सभी के लिए लेकर आया है ये खास कार्यक्रम खेती बाड़ी का।
2: और खेती बाड़ी कार्यक्रम में आज हम तीन सेगमेंटों पर बातचीत करने जा रहे हैं, क्योंकि वो सेगमेंट हमारे किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला सेगमेंट होगा कि हमारे किसान साथी मिश्रित खेती के बारे में किस तरीके से उनका रुझान है और किस तरीके से हमारे किसान साथी मिश्रित खेती कर सकते हैं, खासतौर पर पथरीले इलाकों में। अगर देखा जाए, यदि मिश्रित खेती पर हमारे किसान साथी ध्यान केंद्रित करें तो आने वाले समय में वो इससे लाभ ले सकते हैं। और दूसरा सेगमेंट होगा कि पशुपालन का हमारा सेगमेंट रहता है। पशुपालन पर भी हम खास तौर पर चर्चा करेंगे, क्योंकि राजस्थान अपने पास में लगा हुआ है, गुजरात भी पास में लगा हुआ है, तो ऐसे में हमारे किसान साथी कौन सी नस्ल की हमारे गाय भैंस पालन कर सकते हैं, खासतौर पर गायों पर विशेष तौर पर आज ध्यान केंद्रित कराएंगे। और तीसरा सेगमेंट होगा कि अब मई माह में किस तरीके से पशुपालन की देखरेख हमें किसान साथी कर सकते हैं। और चौथा, हम अपने सफल किसान की कहानी सुनाएंगे, क्योंकि हम ऐसे किसानों की कहानी लेकर आते हैं, उनसे सीखकर हमारे किसान साथी अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं, अपनी खेती बाड़ी में बदलाव कर सकते हैं।
1: बिल्कुल साथियों, तो आइए हम देर नहीं करते हैं और सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम।
2: और लेकिन इस कार्यक्रम को सुनने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं इस प्यारे से भीली गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष
1: और आपकी आरजे वर्षा के साथ में।

0: साथियों, अभी आपने सुना इस व्हील गाने को और आगे हम आपको बताना चाहते हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी। तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं पहले सेगमेंट की ओर
1: और इसमें जानते हैं कि हमारे किसान साथी किस तरीके से मिश्रित खेती को कर सकते हैं और किस तरीके से मिश्रित खेती से लाभ कमा सकते हैं। यदि हमारे किसान साथी इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे किसान साथियों की आय में जरूर वृद्धि होगी। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे झाबुआ जिले में जो KBK बना हुआ है या फिर कृषि विभाग की जो ऑफिस है वहां पर जाकर हमारे कृषि विस्तार अधिकारियों से, वैज्ञानिकों से सलाह और संपर्क कर सकते हैं। तो आइए देर करते हैं, सुनते हैं इस कार्यक्रम में मिश्रित खेती के बारे में।
2: कम जोत में भरपूर फसल लेने के लिए किसान मिश्रित खेती का सहारा लेते हैं। इस तकनीक में मुख्य फसल के साथ सहायक फसलें लगाई जाती हैं। इसमें किसान 3 से 4 फसलें तक ले सकते हैं। इस विधि की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें खेत के हर हिस्से का इस्तेमाल हो जाता है और आय की आवक बनी रहती है। साथ ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति का सही इस्तेमाल लिया जा सकता है। मई माह से खरीफ फसलों की बुआई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अच्छा मुनाफा कमाने के लिए किसान खरीफ की फसल में एक साथ 3 से 4 फसलें उगा सकते हैं, जिनकी पैदावार कम पानी में हो जाती है, जैसे तिलहन, अनाज, दलहन और एक मसाले वाली फसल लगाकर एक साथ 4 फसलें आसानी से ले सकते हैं। हालांकि मिश्रित खेती को जमीन के बड़े हिस्से में एक साथ करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बड़े हिस्से में फसलों की देखरेख थोड़ा कठिन काम होता है। इसलिए जब भी किसान मिश्रित खेती की शुरुआत करे तो जमीन के छोटे हिस्से में ही करे। इस तरह देखा जाए तो मिश्रित खेती छोटी जोत के किसानों के लिए बेहद लाभकारी है। किसान बुआई करने से पहले फसल का चयन अपने स्थान के हिसाब से करे, जैसे तिलहन में मूंगफली और तिल, दलहन में मूंग, उड़द और अरहर, ज्वार, बाजरा, सूखा सहन करने वाली धान की प्रजाति जैसे सहभागी, हल्दी व अदरक। मिश्रित खेती में बुआई करते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। किसान सीड ड्रिल विधि से तिलहन फसल में मूंगफली या तिल की बुआई करे। किसान अपनी सुविधा के हिसाब से भी फसल का चयन कर सकते हैं, जैसे मूंग और उड़द दोनों या किसी एक दलहन फसल या फिर कम पानी में होने वाली धान का भी चुनाव किया जा सकता है। सीड ड्रिल विधि से बुआई करने के भी लाभ है। इससे खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, पर्याप्त मात्रा में फसल को वातावरण से पोषक तत्व मिलते रहते हैं, खेत में बीज कम लगता है और उत्पादन ज्यादा मिलता है। सीड ड्रिल से बुआई करते समय दूसरी तरफ से लौटती सीड ड्रिल की दूरी 1.5 से 2 फीट का स्थान छोड़कर बची जगह की पहली कतार में अरहर जैसी फसलें लगाई जा सकती है, क्योंकि इस तरह की फसलें स्थान ज्यादा लेती है और लंबे समय तक खेत में बनी रहती है। दलहनी फसल से करीब 2 फीट की दूरी पर मसाले फसलें लगाई जा सकती है, जैसे हल्दी और अदरक। ये मसाला फसलें 8 से 10 माह में तैयार हो जाती है। इनकी बुआई का काम हाथ से करना उचित होता है। इसके बाद सीड ड्रिल द्वारा छोड़ी गई हर अगली कतार में ऊंचे बढ़ने वाले अनाज जैसे बाजरा और ज्वार या तिलहन फसल, सूरजमुखी फसल लगाना चाहिए। मिश्रित खेती से किसान कई गुना मुनाफे की अवधारणा को जीवंत कर सकता है। इससे किसान आर्थिक रूप से मजबूत भी हो सकेगा और खेत के हर हिस्से का समुचित उपयोग भी हो सकेगा।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें। रेडियो टांडिया भील सुनने वाले सभी साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे वर्षा
1: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष। और इस वक्त सुन रहे हैं आप झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM।
0: जी हाँ साथियों, और अभी हम सुन रहे थे मिश्रित खेती के बारे में। आगे हम आपको और भी जानकारी देने के लिए हाजिर हैं और ले चलते हैं आपको कि कैसे आप पशुपालन करके अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं।
1: तो आइए दूसरा कंपोनेंट हम सुनते हैं और इसमें जानते हैं पशुपालन किस तरीके से हम कर सकते हैं, किस तरीके से गाय का रख रखाव और साथ साथ में मई माह का कैलेंडर पर भी विशेष तौर पर चर्चा करेंगे और इसमें जानेंगे किस तरीके से हम अपने जो हमारे गाय भैंस हैं उसका मई माह में, क्योंकि बहुत ज्यादा धूप पड़ती है, किस तरीके से उनका देख रेख कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं इस चर्चा को।
2: हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी देसी गाय पालन करके पशुपालन में बेहतर मुनाफा कमाया जाता है। देसी गाय पालन में गिर गाय हर पशुपालक की पहली पसंद है। अर्धशुष्क जलवायु में कम लागत पर अधिक गिर गाय से अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। उभरा हुआ सिर, अर्धचंद्राकार सींग, लंबे घुमावदार कान, पूर्ण विकसित थन इस गाय की मुख्य विशेषता है। इसका नाम गुजरात के गिर वन से लिया गया है जो कि इसका उद्गम स्थान है। गिर गाय मुख्य रूप से लाल रंग की होती है। लाल रंग लगभग 80% में पाया जाता है। गिर गाय राजस्थान में भी काफी लोकप्रिय हो रही है। इसकी क्या वजह है, आइए जानते हैं विशेषज्ञ की नजर से। गिर गाय राजस्थान की जलवायु के लिए अनुकूलित, इसमें गाभिन होने की ज्यादा क्षमता होती है, प्रतिरोधक क्षमता बहुत बेहतर होती है। गिर गाय का दूध काफी पौष्टिक होता है। इस नस्ल में प्रजनन संबंधी समस्याएं नहीं आती। देसी गाय पालन से जहां दूध की उपलब्धता बनी रहती है, वहीं खेती के लिए जैविक खाद और जैविक कीटनाशक आसानी से बनाए जा सकते हैं, जिससे खेती में भी अच्छा लाभ लिया जा सकता है। आहार और आवास के साथ साथ पशुओं का बेहतर स्वास्थ्य इस व्यवसाय में सफलता की कुंजी है। समय समय पर पशु के स्वास्थ्य की जांच करते रहे।
0: साथियों, अभी आपने सुना इस रिपोर्ट को जिसमें हमें बताया गया कि पशुपालन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है और कैसे हम इनसे अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं। आगे आपको कार्यक्रम में हम सुनवाने वाले हैं अपने विषय विशेषज्ञ से और ज्यादा जानकारी इस विषय को लेकर, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम एक गीत के साथ मनोरंजन करते हैं।
1: बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ
0: और आपके आरजे वर्षा के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम खेती बाड़ी।

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

0: હિલ 90.8 FM આપણો રેડિયો આપણી વાતે.
1: भारत के देसी दुधारू नस्लों में गिर गाय का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है. मूलतः गिर गायें गुजरात के गिर जंगलों तथा राजकोट के जिले के आसपास में इनकी संख्या सबसे अधिक पाई जाती है और गिर गायें अपने कई गुणों के कारण बहुत ही विशेष स्थान रखती है. जैसे अधिक गर्मी सहन कर सकते हैं, दूध उत्पादन क्षमता बहुत अच्छी है तथा पहली बार जो बछड़िया ग्यावन होने की उम्र है वो भी इसमें बहुत ही सामान्य है. साथ ही जो इनके जो लक्षण हैं गिर गाय के वो किसी अन्य नस्लों से बिल्कुल अलग हैं. आप दूर से पहचान सकते हैं कि ये गिर गाय हैं या नहीं है. इस गाय की एक बड़ी विशेषता ये है कि ये गाय चरने के बाद अगर आप दिन में थोड़ी चराई करा दें तो इनकी दूध उत्पादन क्षमता में बहुत ही आप देखते हैं बहुत ही वृद्धि पाई जाती है. ऐसी इस नस्ल का जो इसके लक्षण हैं जो इसकी उत्पादन क्षमता है वो भारत की दुधारू गायों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है. साथ ही गिर गायों में जो दूध देने की क्षमता है वो देसी गायों में बहुत ही विशेष स्थान रखती है. गिर गाय के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन गायों का सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि देसी गायें हैं और भारत की जो जलवायु है खासकर राजस्थान की जलवायु है उसमें पूर्णतः ये इनके अनुकूल हैं. साथ ही ये गायें अपने उत्पादन क्षमता को जैसे गुजरात में जो उत्पादन क्षमता है वही हमारे यहाँ इसकी उत्पादन क्षमता है. साथ ही इनके जो ग्यावन होने की जो उम्र है या इनके मान लीजिए जो इनके ब्रीडिंग है वो बहुत ही लगातार है, उसमें कोई भी समस्या नहीं है और यहाँ की आब हवा और यहाँ के वातावरण के बिल्कुल अनुकूल है. राजस्थान में बहुत से किसान आज गिर गाय को रख रहे हैं जिससे इनका संरक्षण हो रहा है और साथ ही आने वाले समय में गिर गाय को और अधिक महत्व मिलेगा और अधिक बढ़ावा मिलेगा क्योंकि गिर गाय का जो दूध है वह बहुत ही स्वादिष्ट और सभी को भाने वाला है. और कैलोरी की बात करें, विटामिन की बात करें, प्रोटीन की बात करें, फैट की बात करें, इसका जो दूध है वो बहुत ही सुपाच्य तथा स्वाद वाला है. गिर गायों की आज के समय में जो किसान रख रहे हैं जिसका बड़ा कारण है कि इनमें कोई भी प्रजनन संबंधी समस्या नहीं है, बीमारी की समस्या नहीं है. साथ ही उत्पादन जो उत्पादन क्षमता है वो किसान के लिए बहुत ही उनके लिए लाभकारी है.
2: इस माह में अधिक गर्मी रहती है, साथ ही कुछ स्थानों पर आंधी तूफान के साथ वर्षा भी रहती है. पशुओं को धूप व लू से बचाने का उपाय करें. गर्मी में पशुओं को छायादार स्थान पर रखें व पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें. पशुओं में लवणों की कमी नहीं होने पाए इस हेतु लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या पानी में मिलाकर दें. पशुओं के आहार में मौसम के अनुसार आवश्यक बदलाव करें. दुग्ध उत्पादन क्षमता बनी रहे इसके लिए उसे संतुलित आहार दें. चमोकन एवं पेट की कृमि से बचाव का उचित प्रबंध करें. खरीफ में हरा चारा लेने के लिए ज्वार एवं मक्का की बुआई करें. भेड़ पालक इस माह में भेड़ की ऊन कतरने का कार्य करें.
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM. आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें.

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने पशुपालन कैलेंडर और साथ साथ में जो हमारे विषय विशेषज्ञ थे उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम अपने पशुओं की देखरेख करना चाहिए, कौन सी नस्ल हो हमारे किसान पालना चाहिए और उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए इस कार्यक्रम में आगे हम सुनते हैं सफल किसान की कहानी। लेकिन सफल किसान की कहानी से सुनने से पहले एक छोटा सा विराम लेते हैं। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया फील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बात है।
1: आधुनिकता की दौड़ में ज्यादातर किसान रासायनिक खेती से क्षणिक लाभ लेकर नुकसान का सामना कर रहे हैं। रासायनिक खेती से सेहत व पर्यावरण पर दुर्गामी नकारात्मक असर भी देखने को मिल रहे हैं। यही वजह है कि किसान एक बार फिर जैविक खेती की तरफ मुड़ रहे हैं। जैविक खेती से प्रकृति से सीधा तालमेल बैठाना आसान होता है। इससे खेती में आ रही कमियां दूर होती है और फसल में अच्छा खासा इजाफा मिलता है। सीकर के किसान बाबूलाल जैविक खेती करके अपने खेत की तकदीर बदलने में दिन रात प्रयास में जुटे हुए हैं। बाबूलाल पहले परंपरागत खेती किया करते थे, जिसमें सामान्य तरीके से खाद और उर्वरक का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन उत्पादन में मिल रही कमी उन्हें जैविक खेती की तरफ ले आई। वो बताते हैं कि पिछले 4 साल से वो जैविक खेती कर रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद और जैविक कीटनाशक मिलता रहे, इसके लिए बाबूलाल ने 4 देसी गाय भी पाल रखी है। राजस्थान जैसे गर्म प्रदेश में कैसे सफल खेती कर रहे हैं और पानी की मुश्किलों को कैसे आसान बना रहे हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं।
2: मैं किसान हूं, पारंपरिक खेती करते हैं और धीरे धीरे क्या है वो जैविक खेती के बारे में सुना है ऐसे लोगों से, कैसे करते हैं क्या करते हैं, उसके हिसाब से हम लोगों को विचार है कि अपन भी खेती करेंगे। तो मैंने ऐसे बजाज ट्रस्ट की तरफ से थोड़ा उनसे मिला, उन्होंने मेरे को ऐसा कुछ बताया कि ऐसा करो, और तो इस हिसाब से मैंने धीरे धीरे जीवामृत घन जीवामृत 10 परनियर वगैरह बनाना काम चालू किया। अभी क्या मैं 4 साल से खेती कर रहा हूँ, उन्होंने मैंने 4 साल से कुछ भी नहीं डाला, खाली जीवामृत घन जीवामृत और ये सब डाल के बना रहे हैं, बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। और उनकी तरफ से हमारे को क्या प्रोत्साहन राशि भी मिल रही है, धीरे धीरे ड्रिप इरिग्रेशन के बारे में ड्रिप लगाया तो उसमें कुछ सहयोग मिला।
3: राजस्थान में पानी की कमी है,
2: राजस्थान में ऐसे पानी की यहाँ सूखा है रहता है, तो पानी की जो क्या बूंद बूंद सिंचाई से पानी की बचत उसके हिसाब से। और फिर क्या वो बोला कि अपने देसी खेती करते हैं तो गाय चाहिए, तो हमने क्या वो गिर गाय खरीदी। अभी हमारे पास 3-4 गायें हैं, तो उनसे हम क्या देसी गाय से गोबर से गोमूत्र से उनको इकट्ठा करते हैं, उनसे जीवामृत घन जीवामृत 10 परनियारक वगैरह सब बनाते हैं और तुरंत पुरुत खाद जो अपने हुमस इसके लिए बनाते हैं, जड़ों के लिए बनाते हैं, और उससे बढ़िया रिजल्ट है। जो भी खाते हैं अपन तो अपन को भी शुद्ध मिलता है, गायों के लिए चारा शुद्ध मिलता है, तो उनसे क्या एक नई सिस्टम से अपना काम हो रहा है,
3: नई तकनीक
2: और नई पद्धति से अपना ऐसा हो रहा है और इसमें रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आ रहा है।
1: बाबूलाल मानते हैं कि जैविक खेती से हमें मिलने वाली उपज शुद्ध और सेहतमंद होती है, जिससे मिलने वाला पशु आहार भी शुद्ध होता है, जो पशुओं की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। खुले खेत में खेती के साथ साथ बाबूलाल पॉली हाउस में भी खेती कर रहे हैं, जिसमें वो टमाटर और खीरे की फसलें लेते हैं। इसके अलावा उनके खेतों में नींबू वर्गीय पौधे, गोभी वर्गीय सब्जियां, तरबूज और टमाटर जैसी फसलें लगी हुई है। जैविक तरीके से तैयार की गई फसलों का उन्हें बाजार दाम भी अच्छा मिलता है। वो कहते हैं कि उनकी उपज के लिए उन्हें ग्राहक नहीं तलाशने होते, क्योंकि उपज की गुणवत्ता ग्राहकों को खुद उनके खेत तक ले आती है।
2: सब्जी लगाने का तो ऐसे अपन बढ़िया उसके भाव में ऊंची रेट में बिक जाती है, अपना माल बिल्कुल लंबे टाइम तक 2-3 दिन तक खराब नहीं होता है, उसी हिसाब से जैविक रासायनिक वगैरह 2 दिन में सड़ जाते हैं सब्जी वगैरह, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है और अपने क्या तुरंत बिक जाते हैं, इसे माल भी गिराएगी भी अपने कहते यार आपकी चीज बहुत अच्छी है हमको आपका माल ही चाहिए, उसी हिसाब से वो भी ले देते हैं। मंडी में अपने भाव तेज रहते हैं, 1-2 रुपया सबसे अलग बिकते हैं और क्वालिटी के हिसाब से भी सब टेस्ट वगैरह भी सब अच्छे होते हैं, अपने आप बिक जाते हैं। किसानों को सलाह यही देंगे कि आगे चल के अपन को जैविक खेती की तरफ चलो सब, और वैसे ही करना है, इतनी बीमारियां वगैरह फैल रही है तो उसके हिसाब से अपन को अपने स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है, तो जैविक खेती अपनाओ और उसमें जैविक खेती से स्वास्थ्य सुधरेगा, देश सुधरेगा, अपन आगे बढ़ेंगे, सब यही होगा।
1: बाबूलाल जैसे किसान जैविक खेती को अपनाकर अपने खेत ही नहीं बल्कि लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं।

0: साथियों, अभी आपने सुना सफल किसान की कहानी को कि किस तरह से उन्होंने खेती बाड़ी से अपनी आय को दोगुना किया है। आप भी इस तरह से कर सकते हैं।
1: और साथियों, एक चीज और बता देना चाहते हैं, क्योंकि हम कार्यक्रम जो लेकर आते हैं, कार्यक्रम खेती बाड़ी के माध्यम से, हम आपको बता देना चाहते हैं कि

0: ये छोटी छोटी बातें जरूरी हैं और हमारे किसान साथियों के लिए आय को दोगुना करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं। खासतौर पर उन किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनके पास थोड़ी जमीन है और वो भी पथरीली इलाका उनके पास है और पानी रुकता नहीं है। तो सबसे पहले उनको हम बता देना चाहते हैं कि अब आने वाले बरसात के दिनों में हम किस तरीके से पानी को बचा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा झाबुआ जिले में समस्या है पानी को लेकर। तो किस तरीके से पानी को बचा सकते हैं, खेत का पानी खेत में कर सकते हैं, सरकार की स्कीम्स का, सरकार की योजना का फायदा लेकर हम अपने आय को बढ़ा सकते हैं और साथ साथ में ऐसी खेती को हम विशेष तौर पर ध्यान केंद्रित कराने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे किसान साथी ऐसी खेती करें, ऐसी जैविक पद्धति से खेती करें जिसमें कम पानी लगता हो, उत्पादन अच्छा होता है, लागत भी कम लगती है, उत्पादन अच्छा होता है। तो ऐसे किसान साथी जो हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं तो अधिक जानकारी के लिए हमारे कृषि विस्तार अधिकारी के पास जाकर संपर्क कर सकते हैं, साथ साथ में केवी है वहां पर जाकर भी संपर्क कर सकते हैं। साथियों अब हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम से जाने का। तो कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पर, नंबर है हमारा 94-25-41-36-03, इस नंबर पर कॉल करके आप हमें बता सकते हैं।
1: जी हाँ साथियों, तो आज का ये कार्यक्रम आप सभी को कैसा लगा दिए गए नंबर पर फोन करके हमें जरूर बताएं। अब इस कार्यक्रम से जाने के दीजिए हमें अनुमति, यानी कि आपकी आरजे वर्षा
0: और मनीष को दीजिए जाने की इजाजत।
1: फिर होगी आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।
0: और चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से गीत को।

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: हूँ से आरजे भावना आप पर हंगला भाइयों नु घरों घरों स्वागत करिए से आपरा झाबुआ ना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM।

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

0: आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आपके ही अपने प्रोग्राम जिंदगी के रंग गीतों के संग में, जहां हम मिलते हैं उन खास लोगों से जिनकी जिंदगी संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरक कहानियों से भरी होती है। उनकी बातों के बीच में हम सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जो उनके जीवन की भावनाओं और अनुभवों को संगीत में ढाल देते हैं। तो चलिए आइए इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ चलिए।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं जिंदगी के रंग गीतों के संग का एक और खास एपिसोड। ये वो महफिल है जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। आज के मेहमान का नाम शायद थोड़ा मुश्किल लगे लेकिन उसका मतलब बहुत खूबसूरत है। अमिया काला, अमिया यानी अमृत, एक ऐसा सफर जहां परंपरा भी है, परिवार की लेगेसी भी है और खुद की पहचान बनाने की एक खूबसूरत कोशिश भी है। हम वेलकम करते हैं अमिया काला जी का आज के हमारे जिंदगी के रंग गीतों के संग पर। अमिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के एक नए एपिसोड में। कैसा फील कर रहे हैं आप?
2: जी, आपने मुझको बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी सर।
2: वाकई में एक बहुत बड़ा बात है ये।
1: हम बहुत एक्साइटेड हैं आज आपके इंटरव्यू के लिए। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी सर आपके नाम से। जैसे मैंने आपके इंट्रोडक्शन में भी हमारे गेस्ट्स को बताया कि अमिया का मतलब ही इतना खूबसूरत है, अमिया का मतलब है अमृत। तो आपके नाम से जुड़ी अगर कोई कहानी है जो आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहेंगे तो वो क्या होगी, कैसी होगी, और आपके नाम का जो मतलब है वो आपके लिए सिर्फ एक शब्द है या सच में आप इसको एक जिम्मेदारी की तरह अपने जीवन में उतारते हैं और जिससे भी मिलते हैं उसके जीवन में अमृत घोलने की कोशिश करते हैं?
2: मैम, बच्चों का नाम ज्यादातर जब पड़ जाता है, जब उनको कुछ न बोलना आता है न कुछ आता है। मेरी मासी थी, मतलब मासी हैं, उन्होंने मेरा ये नाम रखा था कि ये बहुत खूबसूरत नाम है और थोड़ा सा डिफरेंट है। और थ्रू आउट लाइफ सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस नाम को प्रोनाउंस करने में ही लोगों को रही। ज्यादातर लोग इसको अमिया बोलते हैं जो कि जिसे कच्ची कैरी बोला जाता है, बट बेसिकली अमिया है। अगर हम लिखें तो अ म पे बड़ी की मात्रा य, जिसका मतलब अमृत होता है। और बचपन से आई हैव बीन लकी टू हैव वंडरफुल पेरेंट्स। मेरे मम्मी पापा ने जिंदगी में हमेशा यही सिखाया कि जब कोशिश हमेशा ये करो कि आप सबका अच्छा ही करो, बिहेव वेल, सबके साथ अच्छे से पेश आओ, सबके साथ अच्छा सा व्यवहार करो। कर्टसी कॉस्ट नथिंग एंड इट पेज अ लॉट। तो मैं शुरू से हर जिंदगी के हर मुकाम पे मेरी यही कोशिश रही है कि मैं सबको इज्जत दूं, सबसे प्रेम से बात करूं। और मेरे को याद नहीं कि जिंदगी में आज तक एक या दो जनों के अलावा मेरा कभी किसी से कोई कुछ मनमुटाव रहा हो या मेरा झगड़ा भी हुआ हो किसी से। एंड इसी के कारण है कि सब लोगों से हमेशा मुझको भी बहुत बेपना प्यार मोहब्बत मिली है। और अभी मेरे व्यवहार के कारण ही जयपुर में एक बहुत प्रतिष्ठित क्लब है, जय क्लब, वहाँ पे बिसाइड्स ये कि मेरे फादर वहाँ के प्रेसिडेंट रहे हुए और उनकी भी रेप्यूटेशन इतनी अच्छी थी, तो उसी के कारण, उनके नाम के कारण और मेरे व्यवहार के कारण ही इस बार मैं भी एग्जीक्यूटिव कमेटी में बहुत अच्छे नंबर ऑफ वोट से इलेक्ट हुआ।
1: जी जी, कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट सर, दैट इज अमेजिंग।
2: और
1: सच में आपकी कहानी ये बताती है कि किस तरह आपने अपने नाम को सच में जिया है, उसको जीवन में उतारा है। तो दोस्तों, हर इंसान अपनी पहचान की तलाश में कहीं ना कहीं मुसाफिर होता है। इसी एहसास के साथ हम सुनेंगे आज का हमारा पहला गीत, मुसाफिर हूँ यारो, फिल्म परिचय।

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक अमिया जी। आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ सर, इफ नॉट आप मुझे करेक्ट करें।
1: अमिया नहीं है, अमिया है।
0: अमिया
1: अमिया
0: अमिया
1: या
0: ओके अमिया जी। तो सर, जैसे अभी आपने हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में हमें बताया कि आपकी फैमिली लेगेसी इतनी स्ट्रांग है, आपके फादर, आपकी फैमिली इतनी एक जगह होल्ड करती है सोसाइटी में, और आप एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां पे मेडिकल प्रोफेशन एक बहुत स्ट्रांग लेगेसी रही है आपकी, तो पहला पार्ट ये है कि आपकी फैमिली के बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं, किस फैमिली से आप हेल करते हैं, किस तरह का आपका बचपन रहा, किस तरह के आपके एक्सपीरियंसेस रहे बड़े होने में, और कैसे आपको अपना रास्ता चुनना इतना डिफिकल्ट था, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपना खुद का रास्ता बनाया। आप जो आज कर रहे हैं, आपने जो सब किया है, वो सब आपकी खुद की इंडिपेंडेंट चॉइसेस और डिसीजन मेकिंग थी। तो कैसे रहे ये फैसले, कितने मुश्किल थे, कितने आसान थे, क्या एक्सपेक्टेशंस के बोझ थे, और आपकी ख्वाहिशें किस तरह से आपके जीवन में आपके साथ मैनिफेस्ट होती गई, ये थोड़ा सा अगर आप इस पे लाइट थ्रो करें।
1: मैम, मेरे ग्रैंडफादर वाज ऑलवेज इनटू सर्विस। मेरे जो दादाजी थे एंड वो काफी साल बाहर रहे जयपुर के, और मेरे जो नाना जी थे वो जयपुर के प्रतिष्ठित डॉक्टर्स में से एक थे। ही वॉज ऑल्सो द फिजिशियन एंड काउंसलर टू द सीएम्स एंड गवर्नर्स ऑफ राजस्थान फॉर लॉन्ग। एंड देन माय मॉम एंड मेरी मदर और मेरे फादर दोनों डॉक्टर्स थे, दोनों मेडिकल कॉलेज में थे, और बोथ got to know it, there was a love marriage, and दोनों के common interest थे। दोनों को music बहुत पसंद था, दोनों को लिखने का बहुत शौक था। और मेरे फादर की तो हमेशा से तमन्ना ये थी कि उनके दोनों बच्चे मेडिकल साइंस में आए, बिकॉज ही हैड अ वेरी लवली रेप्यूटेशन एंड अ ह्यूज क्लाइंटेल एज अ डॉक्टर। पर अनफॉर्चुनेटली आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन टू साइंस एंड आई वॉज नेवर अ वेरी गुड स्टूडेंट इन साइंस। उस जमाने में आर्ट्स का कोई वजूद ही नहीं होता था, लेट 80s में। आज की दुनिया में और उस जमाने की दुनिया में बहुत बड़ा फर्क है। आदमी या तो कॉमर्स लेता था या साइंस लेता था। आज को तो मतलब इस दृष्टि से देखा जाता था कि ये आदमी मतलब कुछ काम का नहीं है, इसलिए इसने आर्ट्स ले ली। तो मेरे फादर ने बहुत कोशिश करी मुझको समझाने की, लेकिन मैंने उनको बोला कि देखिए, मैं लूंगा तो भी मैं सक्सेस नहीं हो पाऊंगा, मेरे को बहुत मुश्किल होगी, तो प्लीज लेट मी हैव कॉमर्स। एंड देन आई टुक कॉमर्स एंड अनफॉर्चुनेटली जैसे ही मैं कॉलेज लाइफ में घुसा, माय मदर हैड अ वेरी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन एंड उसके बाद शी वॉज पैरालाइज्ड फॉर इयर्स। तो उसके बाद मेरे फादर ने मुझको बिजनेस लाइन में डलवा दिया, ज्वेलरी लाइन में। एंड उसके बाद बस धीरे धीरे आई स्टार्टेड टेकिंग ट्रेनिंग ऑफ ज्वेलरी। मैंने उसमें काम किया, मैं बॉम्बे भी गया कुछ टाइम के लिए, और फिर मैं जयपुर आके, बिकॉज माई मदर वॉज नॉट कीपिंग वेल, आई केम बैक इन जयपुर एंड सेटल हियर। और बहुत ज्वेलरी एक अच्छी इंटरेस्टिंग फील्ड है। पहले मैं स्टोन्स में था, बट मैं उसके बाद आई हैड मतलब पैशन फॉर डिजाइनिंग या डूइंग समथिंग डिफरेंट, तो मैं ज्वेलरी मैंने

देखिए किस तरह से पेन अपनी जिंदगी में हमारी शौक को कैसे शेप कर सकता है, कैसे जो चीज कहीं ना कहीं हम दबा देते हैं अपने दिल के किसी कोने में वो पेन वापस लेके

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक सर। आपका हॉस्पिटैलिटी और ह्यूमन कनेक्शन बहुत स्ट्रांग रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने जो जो प्रोफेशंस किए, चाहे वो ज्वेलरी का काम हो, चाहे वो पोएट्री, इतना सेंसिटिव पोएट्री लिखना हो, किताबें लिखना हो, ह्यूमन एहसास को समझना हो, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन कनेक्शन बहुत स्ट्रांग रहा है जो मैं समझ पा रही हूँ। आपका लोगों से डीलिंग, पब्लिक डीलिंग बहुत स्ट्रांग आई थिंक फोर्टे है। तो आपका इंटरेस्ट हमेशा लोगों से मिलने और उन्हें समझने में रहा है। और जो विनीर्स होमस्टे है, आपका जो होमस्टे है, उसके बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं, किस तरह से ये जर्नी शुरू हुई, इसका सीड डला, और किस तरह से आज आप विनीर होमस्टे को रन कर रहे हैं। आपका पर्पस क्या होता है कि मेहमान खुश रहना चाहिए, उसे सिर्फ सुख सुविधा मिलनी चाहिए, या उसे एक एहसास के साथ आपके होमस्टे से वहां जब वो स्टे करके जाए तो वो एक एहसास लेके जाए। क्या आपका विजन स्टेटमेंट है, क्या आपका मिशन स्टेटमेंट है, इसके बारे में थोड़ा बताएं हमारे श्रोताओं को।
1: मैम, विनीर एक नाम है, एक एहसास है मेरे लिए, बिकॉज विनीर इज अ मिक्सचर ऑफ माय फादर एंड मदर नेम। वी इज फॉर विजय माय फादर एंड नीर इज नीरा माय मदर।
0: ब्यूटिफुल।
1: तो इसलिए मैंने हमारे घर का नाम भी विनीर रखा है और इसका नाम भी विनीर होमस्टेज है। और काफी मेरा घर जयपुर के एक बहुत अच्छी सेंट्रली लोकेटेड कॉलोनी में है।

0: हर किसी का ख्वाब होता है कि वो वहाँ पे घर ले
1: जी।
0: पर बहुत छोटी सी सुंदर सी क्वाइट कॉलोनी है ये
1: जी।
0: एंड काफी सालों से हमारा मन था कि हम हमारा जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर कुछ करें, एंड देन फाइनली लास्ट मार्च में हमने इसमें एक पहल करी और नवंबर में जब ये बन के तैयार हुआ और लोगों ने देखा तो दे वर वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट। इट वॉज नॉट वेरी वेरी लैविश, नॉट वेरी लाउड, बट वेरी सेटल, वेरी नाइसली डन। एंड उसके बाद से बस यही था कि बिकॉज माय सिस्टर लिव्स विद मी, माय सिस्टर इज अ टीचर और मेरी वाइफ बाकी सब कामों में भी रहती है, तो सब लोगों का ये था कि सिंस आई एम गुड एट टॉकिंग विद पीपल मैं इसको रन करूं। एंड मतलब इसमें बहुत ज्यादा टाइम तो डिवोट करना नहीं होता है, तो उस दिन से किया। और मेरा लक्ष्य सिर्फ ये है कि आदमी यहां से जाए तो स्माइल लेकर के जाए विथ नो कम्प्लेन्स एट ऑल। और मैं जो भी आता है तो उनको भी ये बोलता हूँ कि सर आप आए हैं, आप अपने ही एक घर में हैं, आपको कुछ भी शिकायत हो आप मेरे को बताइए, क्योंकि उससे हमको सुधार करने को मिलेगा
1: जी।
0: और मेरा ये मानना है कि आदमी कहीं पे भी कुछ भी जाता है, आप भी आएंगे तो मेरा आपसे हमेशा ये गुजारिश रहेगी कि आपको अगर शिकायत है तो वो मुझसे करिए और तारीफ बाहर जाके करिए, बिकॉज शिकायत जो होगी वो जो वहां पे काम कर रहा है वही उसको सुधार सकता है। आप किसी थर्ड पर्सन को जाके बोलेंगे तो वो कभी उस शिकायत को सुधार नहीं सकता, रादर ही विल एड टू थिंग्स एंड ही विल टेल इट टू समवन। और आप तारीफ किसी और को करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है, मेरा ये मानना है। तो मेरा तो सिर्फ एम ये है कि मैंने ये मतलब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में मैंने सुना है कि जब तक कुछ इम्पॉसिबल हो या इलॉजिकल डिमांड नहीं हो तब तक आपको अपने किसी भी कस्टमर को ना बोलना ही नहीं चाहिए। यू शुड ट्राई योर बेस्ट टू मेक देम हैप्पी एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। एंड स्पेशली इट मीन्स अ लॉट टू मी बिकॉज माय पेरेंट्स नेम इज एडेड टू दिस, सो आई कैन नॉट लेट इट डाउन एट एनी कॉस्ट।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा नाम है विनीर होमस्टे, बहुत अच्छे थॉट्स हैं इसके बिहाइंड। और आपके हर बिजनेस में एक हार्ट फैक्टर रहा है, एक पीपल फैक्टर सेंट्रली रहा है जैसे कि मैंने कहा, तो क्या कोई फिलॉसफी है आपकी लाइफ की जो आपने बहुत अर्ली ऑन जिसको अपने जहन में उतार लिया कि मेरे लिए पीपल फैक्टर और हर चीज में एक दिल होना, हर चीज में एक एहसास होना बहुत जरूरी है। इसी तरह से आपकी पर्सनालिटी शुरुआत से थी या जीवन के एक्सपीरियंसेस ने आपको सॉफ्टन किया और आप इस तरह से हुए? क्योंकि बहुत लोग मैं देखती हूँ आसपास, लोग बिजनेस को बहुत कैलस और बहुत कैलकुलेटिव तरीके से करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो उस बिजनेस में एक दिल डालने की कोशिश करते हैं, एक एहसास डालने की कोशिश करते हैं जो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बहुत खास है। और कहीं ना कहीं मैं जानती हूँ कि हमारे श्रोता जो हमें सुन रहे हैं, हर इंसान कहीं ना कहीं वो पीपल फैक्टर, वो प्यार, वो दिल फैक्टर जब उसके साथ इंटरेक्ट करो तो वो ढूंढता है। तो आपकी ये पर्सनालिटी किस तरह से डेवलप हुई सर, इसके बारे में अगर कुछ बताना चाहें?
0: मैम इसमें भी मेरी मदर का बहुत बड़ा रोल है, मेरी मदर का भी, मेरी मेरी ननियाल साइड की फैमिली का भी। मेरा बचपना काफी मेरे ननियाल साइड में गुजरा और मेरी मदर शुरू से शी वॉज वेरी प्रैक्टिकल एंड शी वॉज वेरी डिसिप्लिन बट शी वॉज वेरी इमोशनल ऑल्सो
1: जी।
0: तो उन्होंने बचपन से ही मुझको सिखाया जो जीवन की अच्छाइयां होती है, एंड शी ऑलवेज लेड एम्फेसिस टू कैरेक्टर मोर देन मनी।
1: ब्यूटिफुल।
0: एंड बिकॉज माय फादर एंड माय मदर उन्होंने जिंदगी में यश और ख्याति इतनी अर्जित करी जितना उन्होंने शायद पैसा नहीं कमाया होगा, बट वो ही उनका एक असली कमाई है जो आज तक हम उस पे उसको कैपिटलाइज कर रहे हैं, या एक उनका वो एक पेड़ है जिसकी छाया के तले हम जी रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: और कई बार जिंदगी में उस चीज का नुकसान भी हुआ कि आप हमेशा दिल से नहीं सोच सकते, कभी कभी इमोशनल होके कुछ गलत फैसले लिए, पर यह है कि वो एक बार लेने के बाद आदमी जब ठोकर खाता है तो वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है, वो एक बहुत बड़ी सीख होती है।
1: बिल्कुल।
0: तो वही मेरे साथ भी हुआ है। मैं आज भी जो मेरे रिश्ते हैं, जो दिल के रिश्ते हैं, उनको मैं बिल्कुल मतलब बहुत गहराई से उनको मानता हूँ और उनको निभाता हूँ
1: जी।
0: तो मेरी जिंदगी में तो सबसे बड़ा चीज पहले रिलेशंस और इमोशंस हैं
1: जी।
0: हालांकि इमोशनल फूल नहीं होना चाहिए,
1: जी नहीं, बट बहुत जरूरी है ऐसे लोग सब। आज के जिस जीवन में हम जी रहे हैं उसमें अगर मैं, एटलीस्ट मैं पर्सनली बताती हूँ, इफ आई कम अक्रॉस समबडी हु रियली हैज अ हार्ट टू शेयर, तो वो मेरे लिए बहुत डिफरेंस मेकिंग होता है, बहुत एक माइलस्टोन होता है, और उस मुलाकात को मैं हमेशा याद रखती हूँ। एंड आई एम श्योर इंसान अल्टीमेटली इंसान है, और हर इंसान कहीं ना कहीं इंसानियत ढूंढ रहा है आज भी। इसीलिए हम शायद इतने अकेले हैं, क्योंकि हम ऊपर से दिखाते हैं कि हम बहुत कैलकुलेटिव और कैलस हैं और सब कुछ बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए, बट अंदर से हम सब प्यार चाहते हैं। तो आई थिंक यू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस बाय बीइंग द वे यू आर, एंड आई होप आप ऐसे ही रहें। आई एम श्योर आप बहुत सारे लोगों को अपने आसपास बहुत खुशियां बांटते होंगे, और बहुत ही खूबसूरत मुलाकात, भले ही हम मिले नहीं हैं, बट ये टेलीफोनिक जर्नी भी बहुत खूबसूरत है मेरे लिए। और इसी एहसास के साथ हम सुनेंगे हमारा अगला गीत आज का। दोस्तों, जिंदगी उन छोटे छोटे पलों से बनती है जो दिल को छू लेते हैं। सुनते हैं हमारा अगला गीत, ये तेरा घर ये मेरा घर, फिल्म साथ साथ।

0: वेलकम बैक सर।
1: जी
0: आपकी जो लाइफ की फिलॉसफी है, जो आपके जीने का फलसफा है, वो कहीं ना कहीं आपकी पेरेंटिंग से जो उन्होंने डाउनलोड किया, जिस तरह से उन्होंने आपको समझाया और आपके अंदर रीइन्फोर्स किया कि कर्टसी बहुत इम्पोर्टेंट है एंड इट रियली कॉस्ट्स नथिंग, बट बहुत कुछ आप छोड़ जाते हो, तो वो एक रूट रहा आपके जीवन का। तो आज का जो जीवन है, जो हम जी रहे हैं, फास्ट पेस्ड वर्ल्ड है, जिस तरह से अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी बात की, लोग किस तरह से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जीवन से, जीवन के तरीकों से, तो किस तरह से इस फिलॉसफी को लोग आज भी जी सकते हैं? अगर कोई लिसनर सुन रहा है, अपना एक रास्ता ढूंढ रहा है, परेशान है, कंफ्यूज्ड है इस जीवन में, तो किस तरह से वो अपने जीवन को मनोवर कर सकता है? आपके इतने सालों के एक्सपीरियंस से, आपके इतने वेरीड एक्सपीरियंसेस से, आप हर तरह के लोगों में उठे बैठे हैं, तो उससे अगर आप हमारे श्रोताओं के लिए कोई संदेश देना चाहें और एक जीवन का फलसफा छोड़ के जाना चाहें कि ये करें तो शायद हर सिचुएशन से आप एक ग्रेसफुल तरीके से बाहर निकल सकते हैं।
1: बड़ा मुश्किल सवाल पूछा है ये आपने मुझसे।
0: जी
1: देखिए, हर इंसान की जिंदगी अलग तरीके की होती है। कोई भी दो इवन एक जीवन साथी भी होते हैं तो उनकी सोचने की प्रक्रिया, उनका जीने की जिंदगी जीने का तरीका बहुत अलग होता है। कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं होते, हर जने का अलग अलग नजरिया होता है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि दिल हर इंसान में होता है, प्यार सभी को चाहिए, इज्जत सभी को चाहिए, मान सम्मान सभी को चाहिए, और कहीं ना कहीं अगर आप ये चीज किसी

0: में से मेरे ख्याल से 7 इंसान आपको याद रखेंगे और उसका आपको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा ही।
1: बिल्कुल।
0: इवन जैसे मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे एक क्लब में हूँ जिसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी में हूँ, तो वहाँ पे मुझको इवन जो ग्राउंड स्टाफ होता है वो भी इतना इज्जत देता है, क्योंकि मैंने, मेरे फादर भी उसी क्लब के प्रेसिडेंट थे, लेकिन मैंने कभी उनके साथ उस जमाने से आज तक किसी के साथ कभी कुछ न गलत किया, न बोला, न उनको कभी ऐसा किया कि उनकी आत्मसम्मान को ठेस लगी हो। मेरा मानना है छोटे से छोटा आदमी भले ही वो रिक्शा चलाता है तो भी उसका एक आत्मसम्मान होता है जिसको हमको कभी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। आज की सोसाइटी में ज्यादातर ये होता है कि आदमी सिर्फ इज्जत उसकी करता है जिसका रुतबा हो या जिसके पास बेशुमार धन दौलत हो या जिससे उसका कुछ फायदा हो।
1: बिल्कुल,
0: पर वो चीज लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है, ऐसा मेरा मानना है। आप अगर एक स्टैंडर्ड रेज करके चले और उसी तरीके से आप सबको एक साथ मान सम्मान दें या सबसे अच्छा व्यवहार रखें तो मेरे ख्याल से असली एक इंसान तो वही है।
1: बिल्कुल सर, जो परिस्थितियों के साथ बदले नहीं, इंसान को देख के इंसान से ट्रीटमेंट बदले नहीं, और एक तरह से समानता से अपने व्यवहार को सही रखे, सुंदर रखे, सरल रखे, जिस तरह से आप हैं। और बहुत ही खूबसूरत बातचीत हुई सर आपके साथ आज, बहुत खुशकिस्मत फील कर रही हूं मैं, और आई एम श्योर हमारे श्रोता आज की हमारी बातचीत से बहुत कुछ लेके जाएंगे, बहुत कुछ उन्हें समझ आएगा जीवन और जीवन जीने के बारे में। और अगर कोई एक इंसान भी बदलता है तो वो हमारी जीत है जिंदगी के रंग गीतों के संग पर। तो थैंक यू सो मच अमिया जी।
0: आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझको मौका दिया कुछ बोलने का, अपने जज्बात को आपके साथ शेयर करने का, सारे श्रोताओं के साथ शेयर करने का, और थैंक यू वेरी मच
1: जी। बहुत बहुत आभार आपका। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें एक रास्ता देती है और कभी कभी हम खुद अपना रास्ता बनाते हैं। आज की महफिल में हमारे साथ थे मिस्टर अमिया कल्ला जी, जिन्होंने हमें ये याद दिलाया कि असली पहचान वही होती है जो दिल से निकलकर जिंदगी में बस जाती है। मैं हूं आपकी आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर। फिर मिलेंगे एक नए सफर के साथ, तब तक के लिए जिंदगी को थोड़ा और महसूस करिए। नमस्कार।
2: मगर अब जो आना तो धीरे से आना।
3: और दोस्तों, इसी के साथ आज के इस खूबसूरत सफर को बस यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज की बातचीत और गीतों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको कुछ नया सोचने की प्रेरणा दी होगी। फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान, एक नई कहानी और नए गीतों के साथ जिंदगी के रंग गीतों के संग के इस प्रोग्राम में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।

0: आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आपके ही अपने प्रोग्राम जिंदगी के रंग गीतों के संग में, जहां हम मिलते हैं उन खास लोगों से जिनकी जिंदगी संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरक कहानियों से भरी होती है। उनकी बातों के बीच में हम सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जो उनके जीवन की भावनाओं और अनुभवों को संगीत में ढाल देते हैं। तो चलिए आइए इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ चलिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग। और दोस्तों, आज का रंग है शब्दों की सतरंगी दुनिया का। मैं आपकी आवाज का दोस्त आलोक कुमार आपसे मुखातिब हूं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम मिलवाने जा रहे हैं आपको एक ऐसी शख्सियत से जिनकी पहचान सिर्फ एक नहीं कई आयामों में फैली हुई है। पत्रकारिता के क्षेत्र में 2 दशकों का अनुभव, दूरदर्शन राजस्थान पर 500 से अधिक कार्यक्रमों की एंकरिंग, राष्ट्रीय चैनलों पर राजनीतिक विश्लेषण और साथ ही एक संवेदनशील हिंदी कवि, ये सब एक ही नाम से जुड़ते हैं और वह नाम है श्री विवेकानंद जी शर्मा। सीकर जिले के अजीतगढ़ जैसे ग्रामीण परिवेश से निकलकर मीडिया, राजनीति और साहित्य की दुनिया में अपनी सशक्त पहचान बनाना, यह सफर अपने आप में प्रेरणादायक है। इनकी लेखनी में समाज की सच्चाई है, विश्लेषण में गहराई है और कविता में संवेदना। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं एक ऐसे शख्स से जो शब्दों से विचार भी गढ़ते हैं और कविता से दिल भी छूते हैं। स्वागत है आपका विवेकानंद जी हमारे कार्यक्रम में।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और श्रोताओं, एक खास बात और आपसे आज करना चाह रहा हूं। आज हमारे इस कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग में आप जहां एक और गीत तो हमेशा की तरह सुनेंगे ही, लेकिन बीच बीच में आप आज के हमारे मेहमान विवेकानंद जी की कविताओं का आनंद भी आप ले पाएंगे। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए और मन बना लीजिए एक अच्छे से अनुभव के लिए। तो विवेकानंद जी, सबसे पहला प्रश्न और शुरुआती प्रश्न मेरा आपसे यही है कि जहां तक मेरी जानकारी है, आपका जन्म और शिक्षा एक गांव अजीतगढ़ सीकर से शुरू होकर जयपुर तक पहुंची, इस बड़े शहर तक पहुंचती, तो उस ग्रामीण पृष्ठभूमि ने आपको व्यक्तित्व और सोच को किस तरह से गढ़ा, कुछ उसके बारे में कुछ साझा कीजिए। पुराने दिनों की याद लगाइए, पुराने दिन की यादों में गोता लगाइए, कुछ बताइए।
2: बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। वास्तव में मुझे लगता है कि जो गांव में रहने का जो समय था, और खासतौर पर बचपन की बात करें, हर किसी के जीवन में वो स्वर्णिम काल होता है जी। और मेरा भी ये सौभाग्य रहा कि मेरा बचपन गांव में बीता, गांव की गलियों में घूमते फिरते, और जैसे जैसे बड़े हुए मुझे याद आता है बचपन में स्कूल जो थी हमारी, सरकारी स्कूल में पढ़े तो घर से करीब आधा किलोमीटर दूर 400 मीटर के आसपास स्कूल होगी। आज के दौर में जब शहर में रहते हैं, हम कल्पना नहीं कर सकते उस समय चाहे सर्दी गर्मी बरसात जो भी होगी, घर में जो कोई कपड़े का थैला होता था उसके अंदर अपने कॉपी किताब रखी, उसको कंधे पर टांका और फिर दौड़ पड़ते थे स्कूल के लिए। आधे घंटे की इंटरवल होती थी, उस आधे घंटे में दौड़ के वापस घर पहुंचते थे, 3-4 मिनट 5 मिनट में घर पहुंचते थे, 10-15 मिनट में जो कुछ खाने को मिलता था, दही रोटी दूध ये कोई अचार जो भी कुछ मिल गया वो खाया फटाफट 15 मिनट में और फिर दौड़ के अपने स्कूल में पहुंच जाते थे। मुझे लगता है आज की नई पीढ़ी जो ऑटो में बैठ के वैन में बैठ के स्कूल जाती है और सुबह निकल जाते हैं 7 बजे, शाम को 4 बजे 5 बजे तक आ रहे हैं, इतना भारी बोझ वो थैला लटका के, मुझे लगता है वो समय ही बदल गया। उस समय के स्कूल, उस समय की चीजें, हर शनिवार को बाल सभा होती थी, अंताक्षरी हुआ करती थी, अलग अलग महापुरुषों की जयंतियों पर जो कार्यक्रम होते थे उनमें जाकर सामने मंच पर जाकर बोलना, आज ये सब जो चीजें हैं बहुत कम मात्रा में है और इनका भी स्वरूप बदल गया है।
1: नहीं, मजा आ गया, आपने तो मुझे भी अपना बचपन याद दिला दिया। जब घर भाग के आते थे तो पराठा खाना और इस तरह की जो बातें होती थी, हमें भी आप अपनी दुनिया में ले गए, बचपन की दुनिया में।
2: मजा आ गया, कैसे भूला जा सकता है बचपन का।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो आपने बीएससी, एलएलबी, बीजीएमसी और एमए जैसी विविध शिक्षा ली है, विज्ञान, कानून, मीडिया और साहित्य, ये सब का आपने अध्ययन किया है, और क्या ये सब मिलकर किसी तरह से आपकी पत्रकारिता और विश्लेषण को अलग से कोई दृष्टि देते हैं, कोई अलग नजरिया देते हैं, कुछ इसके बारे में बताएंगे?
2: जी बिल्कुल, आपने अच्छी बात पूछी है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ और वही कहता हूँ जो बड़ों से मैंने सुनी है, ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। आप जिस भी विधा का ज्ञान लेंगे जीवन में कहीं ना कहीं वो काम आता है। बचपन में परिवेश, घर परिवार का ऐसा मिला कि बहुत से संस्कृत के श्लोक याद हुए, बहुत सी कविताएं याद हुई, बहुत सी दोहे चौपाइयां वो याद हुई। और लगभग जहां तक मुझे याद है, मैं छठी सातवीं कक्षा में पढ़ता था तो मुझे ये सब दोहे चौपाई श्लोक कविताएं ये इतनी याद थी कि एक बार मैं शुरू होता तो शायद 2 घंटे लगातार बोल सकता था।
1: ओके,
2: तो ये चीज मेरे में धीरे धीरे परिवार के संस्कारों के कारण आई। लेकिन चूंकि मैं पढ़ने लिखने में भी ठीक था तो इसलिए घर वालों ने प्रारंभ में, उस समय ये स्थिति होती थी कि यदि बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो उसको साइंस दिला तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा।
1: सही बात।
2: तो इस कारण मैं विज्ञान की उस दिशा में गया और मैंने बीएससी की। बीएससी के बाद चौराहे पर था क्या किया जाए, तो सारे मित्र जो है वो एलएलबी कर रहे थे तो मैं भी लॉ में पहुंच गया। और एलएलबी करते करते मुझे लगा कि यार गलत जगह फंस गए, कहां रोज सच को झूठ, झूठ को सच करने का काम करना पड़ेगा, आत्मा को मारने का काम करना पड़ेगा। वहां से फिर मैं पत्रकारिता में आ गया और पत्रकारिता में काम करते करते कवि सम्मेलनों की दुनिया में मैं आ गया। लेकिन ये सब काम करते करते विज्ञान आपको तर्क बुद्धि देता है। आपको विज्ञान जो है, पढ़ने वाले विद्यार्थी एकदम से आंख बंद करके किसी चीज पर भरोसा नहीं करते। तो मुझे मेरी पत्रकारिता में, राजनीतिक विश्लेषण में इस चीज का ये लाभ मिला, विज्ञान पढ़ने का। कानून की थोड़ी बहुत जानकारी हुई तो उसके कारण भी थोड़ा सा इस सारे क्षेत्र में लाभ मिलता ही है। तो मुझे लगता है कि जो आपके भीतर होता है, जो बचपन में जो साहित्य के प्रति रुचि थी, आखिर में घूम फिर के ये बीएससी, एलएलबी ये सब कर कर आगे और फिर उसी क्षेत्र में आगे जहां कहीं बचपन का आनंद था।
1: नहीं, सही बात, वो एनालिटिकल पावर तो आपको मिलती है, वो हर चीज में काम आती है, चाहे चुनाव का विश्लेषण आप कर रहे हैं। चलिए आगे बातचीत करते हैं। बिल्कुल। और 2005 में आपने राजस्थान पत्रिका से शुरुआत की, फिर अनेक बड़े संस्थानों में संपादकीय जिम्मेवारियां उठाई, तो पीछे मुड़कर देखें तो पत्रकारिता के इस 20 साल के सफर को आप कैसे देखते हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे हमें ब्रीफ में?
2: देखिए, जो 2005 में जब मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में आया, उस समय की स्थितियां और आज की स्थितियां बहुत अलग हैं। एक गांव से मैं आया था तो मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि मैं जयपुर में कैसे अपना एक स्थान बना सकता हूँ, कैसे यहाँ रह सकता हूँ। और उसके लिए जो मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना था कि मेहनत के अलावा कोई दूसरा आपके पास में विकल्प ही नहीं होता, जब आप पर संकट सर्वाइवल का होता है तो आप अपनी जान झोंक देते हैं। लगभग मेरे साथ भी वही स्थिति थी कि फेल होकर वापस गांव चला जाऊं, बजाय इसके कि 18 घंटे भी काम करना है तो करेंगे। तो प्रारंभ में मेहनत से कभी घबराए नहीं, जैसी चुनौतियां थी, जैसी स्थितियां थी, बाकी मेरे साथ में काम करने वाले मित्र लोग यदि 6 घंटे काम करते थे तो मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। मुझे 16 घंटे लगाने थे तो मैंने लगाए, और मुझे लगा कि वो जो शुरुआती दौर की मेहनत थी, वो जिजीविषा थी, वो जीवटता थी, वो चुनौतियों से डटकर मुकाबला करने की जो स्थिति थी, आज लोग चाहे उसको संघर्ष का नाम देते होंगे लेकिन वो सब सहजता से परिस्थितिवश हो ही जाता है।
1: नहीं, सही बात है। उस टाइम राजस्थान पत्रिका तो अपने आप में एक लीडिंग न्यूज़पेपर भी था, तो मेहनत भी बहुत करना पड़ती थी पत्रकारों को, तो मुझे याद है। तो चलिए, आपकी इस मेहनत, जीवट और जिजीविषा के नाम पर हम एक अच्छा सा गाना सुनते हैं, थोड़ी देर उस गाने का आनंद लेते हैं।

0: हाँ शर्मा जी, पुनः स्वागत है आपका। तो आज की पत्रकारिता और 2005 की पत्रकारिता में आपको अब क्या बड़ा अंतर लग रहा है? और डिजिटल के बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मोटा मोटा आप बताइए इसके बारे में।
1: देखिए, बहुत बड़ा अंतर जो मुझे लगता है 2005 में जब मैंने शुरू किया और आज जब हम बात करते हैं 2026 में, इन 20-21 वर्षों में एक बड़ा परिवर्तन ये आ गया कि उस समय सूचनाएं इस तेज गति से नहीं आती थी। उस समय यदि कोई घटना कहीं हो गई तो अखबारों में तुरंत फोन होते थे और फोन होने के बाद में तुरंत वहां पर रिपोर्टर को भेजा जाता था। आज हर हाथ में मोबाइल है, हर हाथ में इंटरनेट है, तो आप भले वहां पहुंचे नहीं पहुंचे, यदि आपका संपर्क है तो आपके पास में वहां से लाइव वीडियो आ जाते हैं, सारी चीजें आपके पास आ जाती है, फैक्ट चेक आप कर सकते हैं। उस दौर में होता ये था कि आपका रिपोर्टर जो वहां गया हुआ है वही आपको एक प्रकार से वहां की जीवंत रिपोर्ट जो है वही दे पाता था, तो उसमें समय जरूर कई बार लग जाता था, लेकिन जो बात प्रामाणिकता की है उसमें कहीं भी किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं होता था। आज कई बार ये चीजें हो जाती हैं कि कई बार हम कहें कि पत्रकारिता के क्षेत्र में भी जो काम करने वाले लोग हैं और उतनी मेहनत नहीं करना चाहते, दूसरों के भरोसे, केवल टेक्नोलॉजी के भरोसे आ जाते हैं और फैक्ट चेक नहीं करते, तो उसमें कहीं ना कहीं एक मैं ये कहूंगा कि स्तर जो है थोड़ा सा वो कम हुआ है। लेकिन दूसरी बात एक और है कि पहले जो मीडिया संस्थान ने लिख दिया, जो दिखा दिया, वो ही सत्य मान लिया जाता था, लोहे की लकीर हो गई। आज जो है, जिसे हम कहें कि नागरिक पत्रकारिता, हर एक व्यक्ति के हाथ में फोन है, हर एक व्यक्ति फैक्ट चेक कर सकता है, और यदि मीडिया संस्थान, मीडिया समूह यदि कुछ कोई बात गलत प्रचारित प्रसारित करता है तो उसको टोकने वाले लोग भी बहुत हो गए हैं। मुझे लगता है
0: बहुत
1: ये एक अच्छा संकेत है।
0: नहीं, बहुत सारा स्वरूप बदल गया है बिल्कुल। तो चलिए अब थोड़ा सा बातचीत का रुख बदलते हैं और आपके काव्य क्षण, हम इसको कह रहे हैं काव्य क्षण का एक ब्रेक लेते हैं। अब इस बातचीत को थोड़ा सा काव्यमय बनाते हैं, तो कोई अपनी पहली छोटी सी कविता हमारे साथ साझा कीजिए, तो हमें थोड़ा सा अंतराल, इस काव्य अंतराल कहते हैं इसको हम, तो
1: जी
0: वो
1: जी
0: मिले
1: जी
0: तो आप सुनाइएगा।
1: आपने छोटी सी कविता की बात कही तो मैं सबसे पहले माँ शारदे की आराधना का एक मुक्तक, चार पंक्तियों का एक मुक्तक आपके समक्ष, सभी
0: स्वागत
1: श्रोताओं के
0: स्वागत
1: समक्ष निवेदित करता हूँ। कि
0: स्वागत
1: माँ की
0: स्वागत
1: हुई कृपा तो गूंगा जिह्वा अपनी खोलेगा, माँ की हुई कृपा तो गूंगा जिह्वा अपनी खोलेगा, प्रेम प्यार के मीठे मीठे बोल कभी तो बोलेगा, और जिस पर कृपा शारदे करती वो पीछे ना रह सकता, अपनी प्यारी कविताओं से वो दुनिया को तोलेगा, अपनी प्यारी कविताओं से वो दुनिया को तोलेगा।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर विवेकानंद जी, मजा आ गया, आनंद आ गया। तो अब थोड़ा सा हम मीडिया और डिजिटल युग की तरफ आते हैं, क्योंकि हमने प्रिंट मीडिया की बात कर ली। अब ये बताइए कि जैसे डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के इस दौर में पारंपरिक पत्रकारिता कितनी प्रभावित हुई है, और प्रभावित हुई है तो क्या अच्छे रूप में हुई है या थोड़े से एडवर्स रूप में हुई है, इसके बारे में क्या विचार रखते हैं?
1: देखिए, मुझे लगता है कि सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं,
0: जी
1: इसी इस बात के भी दोनों पहलू हैं। अब हम यदि पहले नुकसान की बात करें तो आप देख सकते हैं, जैसे हम अभी पहले चर्चा कर ही रहे थे, सूचनाओं की भरमार है अब आपके पास में। पहले उन सूचनाओं के लिए अखबार देखा करते थे, और चूंकि मेरा अभी भी बहुत से समाचार पत्रों में, संस्थानों में बहुत सा संपर्क है, मेरे बहुत से मित्र लोग अभी भी काम करते हैं, तो मैं देखता हूं कि जो गिरावट आई है वो गिरावट ये आई है कि एक ही व्यक्ति को चार चार काम करने पड़ते हैं। पहले एक पत्रकार होता था, केवल खबर लिखने का काम होता था, पूरी
0: अच्छा
1: तन्मयता से खबर लिखता था। आज वही पत्रकार उसी संस्थान के लिए, उसका डिजिटल संस्करण होगा तो उसके लिए वीडियो भी बनाएगा, उसकी वेबसाइट होगी तो वेबसाइट के लिए भी उसी को खबर लिखनी है। अब अखबार में खबर लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, वेबसाइट का थोड़ा सा अलग हो सकता है, और उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बना रखा है तो फिर उसके लिए प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। तो एक ही व्यक्ति को जब चार काम देते हैं, तो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक दौर में जिन समाचार पत्रों को पढ़कर हम लोग भाषा सीखते थे, उन समाचार पत्रों में बहुत सारी अशुद्धियां आने लगी। जिन समाचार पत्रों को हम ये मानते थे कि ये मानक है, ये पैमाना है भाषा की शुद्धता का, वो अखबार आज आप उनमें 10-10 कमियां 10-10 गलतियां निकाल सकते हैं। तो ये जो एक तरीके से डिजिटल की दौड़ है, अंधी दौड़ है, इसका ये एक बड़ा नुकसान है। लाभ इतना है कि आपको घर बैठे, आपको ऑफिस में बैठे बैठे और दुनिया भर की जहां की जो सूचनाएं चाहिए वो आपको मिल जाती हैं। मुझे याद आता है एक दौर में जब हम समाचार पत्रों में काम करते थे, एजेंसियां जो है वो न्यूज भेजती थी और फैक्स के माध्यम से न्यूज आती थी। आप लोगों ने भी देखा होगा,
0: बिल्कुल
1: कागज चलता था, रोल उसका चलता रहता था और वो खबर
0: बिल्कुल
1: आती रहती थी। लेकिन अब देखिए, अब टेक्नोलॉजी का जो विकास हुआ है उसके कारण आज कोई फैक्स की आवश्यकता ही नहीं है आपको। सब कुछ आपको मेल पर मिलेगा, सब आपको अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उन पर मिल जाएगा और तुरंत हर हाथ में। जिस तरीके से मोबाइल और तेज गति का इंटरनेट आया है, इसने सूचनाएं पहुंचाने की गति भी बहुत बढ़ा दी है। और साथ ही साथ फिर से उस बात को दोहराऊंगा कि नागरिक पत्रकारिता के कारण पत्रकार भी अब जांच के दायरे में हैं कि ये जो सूचना, ये जो रिपोर्ट दे रहे हैं ये सही है या नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो नुकसान वाली बात है, अभी कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले ही आपको ध्यान होगा, बॉलीवुड के महान अभिनेता धर्मेंद्र का जो निधन हुआ, एक बहुत बड़े चैनल ने निधन होने से पहले ही वो खबर चला दी उनके निधन की, है ना। ठीक इसी तरह की चीजें, बहुत सारी चीजें हमारे को जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है, चुनाव परिणाम हम देखते हैं, तो सबसे आगे मैं इस चक्कर में बहुत से चैनल जो है वो अपने मन से भी कुछ चीजें वो बढ़ा के दिखा देते हैं, तो ये कुछ अतिरेक भी होने लगा है।
0: नहीं, बहुत ही गहरी बात बताई आपने मुझे। ये बात तो बहुत ही प्रभावित की कि एक पत्रकार को वेबसाइट और डिजिटल और टीवी सबके लिए काम करना पड़ता है। ये बात तो मुझे आज पहली बार पता लगी। लेकिन ये भी बात आपने बहुत जोरदार बताई मुझे कि आजकल जो न्यूज आती है, कई बार मैं भास्कर का ऐप देखता हूं तो उसमें कई बार स्पेलिंग मिस्टेक मिल जाती है, जो कि
1: नहीं,
0: पहले
1: अखबार
0: कभी
1: में
0: नहीं
1: भी
0: होता,
1: मिलती हैं बहुत सी।
0: अखबार में मिलती है।
1: हाँ, मैं
0: हाँ
1: नाम की बात नहीं करूंगा और केवल
0: हाँ नहीं
1: एक अखबार की
0: हाँ
1: बात नहीं है,
0: हाँ
1: बहुत
0: सभी
1: सारे
0: में
1: समाचार पत्रों में ये स्थिति देखने को मिलती है कि भाषा का स्तर तो गिरा ही है। जो इस
0: गया है।
1: तरीके से प्रभावशाली और साहित्यिक भाषा होती थी वो तो अलग बात है, जो त्रुटि है भाषा की, मात्रा छोटी आएगी
0: मात्रा
1: बड़ी
0: छोड़े,
1: आएगी, हाँ, उनमें भी बहुत सारी गिरावट देखने
0: वो
1: को
0: भी
1: मिली।
0: बहुत है। और थोड़ा स्तर की बात है कि जो एक मानदंड होता था भाषा का वो नहीं रहा है। थोड़ी थोड़ी सतही भाषा, मैं कहूंगा बाजारू तो नहीं कहता, लेकिन सतही
1: हाँ
0: भाषा आ गई है वहां।
1: जी,
0: चलिए, आप थोड़ा सा ट्रिकी सा सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे शर्मा जी। आज मीडिया की विश्वसनीयता पर भी कुछ बताइए। जैसे आज स्पीड ज्यादा है या सत्य है, तो इसके
1: नहीं
0: बारे में क्या क्या कहेंगे आप?
1: नहीं विश्वसनीयता का बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत अच्छा, बहुत प्रभावी विषय है ये। और ये मीडिया संस्थानों में काम करने वाले लोगों के लिए और इनके जो मीडिया संस्थान को चलाने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये आत्ममंथन का विषय है। जिस तरीके से पेड न्यूज की बात आजकल होने लगी है और नैरेटिव सेट करने की जो बात होने लगी है, उसमें कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में तो सब लोग हैं। और मैं अक्सर एक बात और कहता हूं कि एक दौर में पत्रकारिता मिशन हुआ करती थी और आजकल मिशन के साथ पहले क्या जुड़ जाता है उससे भी मीडिया संस्थान अछूते नहीं है। तो मिशन और कमीशन का जो ये अंतर है, ये अपने आप में ये गहरा संकट है लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ के लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही चिंताजनक है और बहुत ही कंसर्न का इशू है। तो क्या आपको लगता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म ने अभिव्यक्ति को लोकतांत्रिक बनाया है या भ्रम बढ़ाया है? खासतौर से चुनावों के दौरान तो ऐसा कंफ्यूजन सा हो जाता है, समझ में नहीं आता क्या सुने और क्या ना सुने।
1: देखिए, जो बात अभी हम कर रहे थे उससे जुड़ी हुई बात है ये
0: वही
1: कि
0: बात।
1: मिशन और कमीशन वाली जो बात है, तो डिजिटल के इस दौर में निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि पहले जो निर्भरता समाचार पत्रों पे या कुछ चैनल्स पर ही थी उसमें तो कमी आई है। पहले जो उनकी मोनोपोली होती थी, और मैं कहता हूँ कि चुनाव के, चूंकि मेरा तो राजनीतिक विश्लेषक के रूप में और सर्वे वगैरह के कारण मेरा बहुत से राजनेताओं से भी संपर्क है, तो जब चुनाव होता है उस समय असलियत सामने आती है मीडिया संस्थानों की भी और उसी समय असलियत सामने आती है पॉलिटिकल पार्टीज की भी। और बाहर से लोग चाहे जो कुछ कहें, लेकिन भीतर का दलदल कैसा है वो यदि सामान्य व्यक्ति जानेगा तो उसका विश्वास उड़ जाएगा, किस तरीके से एक एक नेता से इन संस्थानों के प्रतिनिधि जाकर संपर्क करते हैं, उनको पैकेज देते हैं। और आपको आश्चर्य होगा आलोक जी, इस तरह के पैकेज दिए जाते हैं कि आप इतने लाख रुपए देंगे तो आपकी नेगेटिव खबर नहीं छपेगी, आप इतने लाख रुपए देंगे तो आपकी पॉजिटिव खबर छपेगी, और आप इतने लाख रुपए देंगे तो आपकी पॉजिटिव छपेगी और आपके प्रतिद्वंदी की नेगेटिव छपेगी। इस स्तर तक भी जो है मैनेज होते हैं।
0: ये मैनेजमेंट तो बड़ा वो है। चलिए, लेकिन आपने
1: एकदम
0: बहुत सारी
1: अंदर का सच निकाल कर रख दिया है आपके
0: बिल्कुल
1: सामने।
0: बिल्कुल, लेकिन बहुत ही आंखें खोल देने वाला आई ओपनिंग सा है सारा। आई ओपनिंग तो क्या है, लेकिन सत्य जब बिल्कुल सामने कोई विश्वसनीय व्यक्ति बोलता है तो फिर उसमें एक वजन आ जाता है। तो चलिए, लेकिन थोड़ा सा हम इसको काव्य में बनाते हैं, मीडिया और समाज पर आधारित कोई छोटी सी कविता या व्यंग्य पंक्तियां, जो कुछ भी आप सुनाना चाहें सुनाइए, हम थोड़ा सा रुख बदल लेते हैं।
1: जी, आपने मीडिया वाली बात कही तो मैं नाम तो नहीं लूंगा, पर एक संस्थान में जब मैं काम करता था और मेरी एक खबर वहां फ्रंट पेज की लीड खबर जाने वाली थी और रुक गई, तो जब वो खबर रुक गई तो मैंने पता किया, तो बाद में पता लगा कि वो खबर किसी ऐसे संस्थान से संबंधित थी जो समाचार पत्र के बड़े विज्ञापन दाता थे। तो चूंकि मैं मिशन के लिए पत्रकारिता में आया था तो मेरे रक्त में उबाल आया, और रक्त में उबाल आया तो कलम से लगातार कुछ 16 पंक्तियां निकली। ऐसी मैं 8 पंक्तियां आपके समक्ष निवेदित करता हूँ, उसमें भाव जो है वो आप समझ लेंगे एकदम कि क्या बात कहना चाहता हूँ। तो मैंने उस समय जो कुछ प्रयास किया मेरी भावनाओं को व्यक्त करने का, वो ये था कि सच्चाई का गला घोंटते गुणी जनों को देखा है, सच्चाई का गला घोंटते गुणी जनों को देखा है, धनबल के आगे तो उनको घुटने टेकते देखा है, बाहुबल के आगे उनको मिमियाते भी देखा है, और उन्हीं को राष्ट्रवाद की डिंगे हांकते देखा है। ये मन के भाव यहां से शुरू होते हैं, फिर 8 पंक्तियां और लिखते हैं, और फिर आखिर में उसका समापन मैं करता हूं, क्योंकि ये केवल एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये भी है कि समाचार पत्रों को चलाने के लिए जिस अर्थ की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है, और जो प्रबंधन के लोग हैं उनका विषय भी यदि आप देखेंगे तो फिर आखिर की 4 पंक्तियां मैं लिखता हूं कि मैं नहीं कहता गलत राह पर तुमने चलना सीख लिया, मैं नहीं कहता गलत राह पर तुमने चलना सीख लिया, मैं नहीं कहता कठिन राह को कैसे तुमने ठीक किया, किंतु अवलोकन आत्म का भी बहुत जरूरी चाहिए, और जैसे भी हैं आप और हम दोनों को दर्पण चाहिए, जैसे भी हैं आप और हम दोनों को दर्पण चाहिए।
0: तो बहुत मतलब दर्पण चाहिए आपको, सच दिखाने के लिए दर्पण चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मजा आ गया, बिल्कुल सुंदर, बहुत सुंदर और बहुत ही सटीक।
1: ये एकदम जो प्रत्यक्ष अनुभव किया वहीं से निकले
0: बिल्कुल
1: हुए
0: बिल्कुल
1: शब्द
0: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपने बहुत ही संक्षिप्त और बहुत ही एकदम गहरे असर करने वाली कविता सुनाई हमारे को, मजा आ गया। चलिए, आप थोड़ा सा आपके दूसरी विधाओं की तरफ आते हैं। दूरदर्शन राजस्थान पर 500 प्लस कार्यक्रमों की एंकरिंग, ये एक बहुत बड़ा अनुभव है। दूरदर्शन पर काम करने का अनुशासन और गरिमा कैसी होती है, कुछ इसके बारे में अनुभव आपका बताइए, हमारे साथ साझा कीजिए।
1: जी, बहुत ही अच्छा और सकारात्मक अनुभव है मेरा दूरदर्शन पे काम करने का। सकारात्मक और अच्छा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं बाकी अन्य जो निजी चैनल हैं उन पर भी मेरा आना जाना रहता है, तो एक बड़ा अंतर जो दिखता है और जो मैंने खुद ने भी महसूस किया कि जो प्राइवेट चैनल्स पर बहुत से लोग अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ बनकर जाते हैं, ऐसे बहुत से लोग दूरदर्शन पर आकर फेल होते हुए मैंने देखे हैं।
0: अच्छा, ओहो,
1: हाँ,
0: ये
1: फेल होते हुए
0: इंटरेस्टिंग।
1: इसलिए देखे हैं क्योंकि प्राइवेट चैनल पर आप जाते हैं, मान लीजिए आपका 25 मिनट का शो रहता है, और उस 25 मिनट के शो में एंकर 3-4 मिनट शुरू में प्रारंभ में ले लेता है, 20 मिनट आपके पास बचते हैं, और उस 20 मिनट के लिए आपने 5 एक्सपर्ट बैठा रखे हैं, तो वो पांचों लोगों में होड़ लगी रहती है कि कैसे भी करके हम ज्यादा से ज्यादा अपनी बात रखें, तो उनको मुश्किल से 3 मिनट 3.5 मिनट मिलते हैं। दूरदर्शन पर जो हम शो करते हैं उसमें यदि हमने 2 लोगों को भी एक्सपर्ट के रूप में बुलाया है और कम से कम कार्यक्रम का समय भी हमारा आधे घंटे का है, तो उनको लगभग लगभग 12-13 मिनट कम से कम एक एक व्यक्ति को मिलते हैं। कुछ कार्यक्रम हम ऐसे भी करते हैं जो 50-55 मिनट का कार्यक्रम है और एक्सपर्ट अकेला ही है, तो ऐसे में यदि उनके पास में कंटेंट है, उनका अध्ययन है, तो वो वहां बोल पाते हैं। नहीं तो मैंने बहुत से ऐसे स्वनाम धन्य ऐसे ऐसे विशेषज्ञों को देखा है कि जो 10 मिनट 15 मिनट बाद में बगले झांकने लगते हैं। तो वहां
0: ओके
1: अध्ययन करने वाला व्यक्ति, वहां उसी प्रकार का व्यक्ति चल सकता है जिसके पास कंटेंट है। ये एक बड़ा अंतर दूरदर्शन के कार्यक्रमों में और बाकी अन्य चैनल्स के कार्यक्रम में देखने को मिलता है।
0: हाँ, मतलब अगर मैं मोटे शब्द मतलब एक आम भाषा में कहूँ, दूरदर्शन में लफाजी नहीं चलती।
1: हाँ, लफाजी नहीं चलती, जबरदस्ती के आरोप प्रत्यारोप नहीं चलते, फैक्ट्स
0: हाँ,
1: पर जो है बात, वो फैक्ट्स पर
0: फैक्ट्स।
1: बात
0: हाँ
1: होती है। और ये दूरदर्शन की पहचान पहले भी थी, आज भी है।
0: बिल्कुल सही बात। एक बहुत ही गरिमामय ऐसा होता है, डिसेंट होता है सारा कुछ।
1: हाँ जी जी
0: तो अगर ये जो आपका एंकरिंग का इतना लंबा और यादगार अनुभव है, इसमें से कोई ऐसा पल निकाल के लाइए, कोई यादगार पल जो आज भी आपके दिल में बसा है, कोई ऐसी याद हो, गोता लगा के हमारे को सुनाइए कोई ऐसा
1: देखिए,
0: किसी
1: बहुत
0: ने।
1: सारे अनुभव हैं, क्योंकि सैकड़ों कार्यक्रम हो गए हैं तो बहुत सारे अनुभव हैं। एक कुछ विशेष अनुभव की बात करें तो कुछ कार्यक्रम ऐसे हुए कि जिनमें एक्सपर्ट आए, और सामान्यतया हमारा जो 28 मिनट का कार्यक्रम हुआ करता है उसमें एक एक्सपर्ट आते हैं, तो हम ये कल्पना करके चलते हैं कि 7 प्रश्न हम करेंगे तो उसमें कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, जिसमें लगभग ये मान के चलते हैं कि 3 मिनट एक्सपर्ट बोलेगा, 1 मिनट एंकर बोल लेगा।
0: ठीक है।
1: 5-7 बार ऐसा हो गया कि जो एक्सपर्ट आए उनसे हमने सवाल किया और उन्होंने एक लाइन में जवाब देके और वो चुप हो गए। तो ऐसे करते
0: ओके
1: करते जो 7-8 प्रश्नों के बारे में हम सोचते थे, उसके बजाय हमने 15 प्रश्न कर लिए और देखा कि समय अभी भी 18 मिनट ही हुए, और 18 मिनट में 15 प्रश्न हो गए। तो ऐसे में फिर बाद में उस कार्यक्रम को, चूंकि 28 मिनट चलाना था, तो बाद में मुझे खुद को ही एंकर के साथ में एक्सपर्ट की भूमिका का भी निर्वहन करना पड़ा कि
0: हाँ
1: हाँ ठीक है, आप 2 लाइन बोल रहे हैं तो उस 2 लाइन को और विस्तार देके कैसे 10 लाइन में मुझे करना है, तो ये भी कई बार करने को मिला। एक
0: नहीं,
1: बार और एक गजब अनुभव ऐसा हुआ कि एक कार्यक्रम
0: जी
1: मेरा चल रहा था, वो कार्यक्रम जैसे ही पूरा हुआ तो एक्सपर्ट तो स्टूडियो से बाहर चले गए, और ऊपर पैनल पर जो प्रोड्यूसर बैठते हैं, उन प्रोड्यूसर का हम जो ईपी लगाते हैं, ईयरप्लग लगाते हैं, तो
0: हाँ
1: उनका संदेश आया कि एक्सपर्ट को बाहर जाने दीजिए, एंकर को बैठे रहना है।
0: अच्छा।
1: और फिर मैं जब बैठा रहा तो उन्होंने कहा कि आपको एक कार्यक्रम और अभी करना है, क्योंकि उस कार्यक्रम के लिए जो एंकर आने वाले थे वो किसी कारण से स्टूडियो नहीं पहुंच पाए, बाहर बारिश बहुत अधिक है और उनकी गाड़ी खराब हो गई और वो फंस गए हैं, तो
0: अच्छा।
1: इसलिए अगला कार्यक्रम भी आपको ही करना है। मुझे न गेस्ट का पता, न मुझे विषय का पता।
0: स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट ही नहीं होगी,
1: हाँ
0: कुछ
1: हाँ
0: भी होगा।
1: विषय विषय का भी नहीं पता कि क्या टॉपिक क्या
0: क्या
1: है,
0: क्या टॉपिक क्या।
1: लेकिन
0: ओके
1: उन्होंने कहा कि 3 मिनट में शुरू

0: करेंगे, एक्सपर्ट नए आ गए, उसी समय उन्होंने बताया माँ शारदे की कृपा से। वो कार्यक्रम भी हमने उसी तरह संचालित किया कि जैसे किसी को महसूस भी नहीं हुआ।
1: मजा आ गया जी। ये तो बिल्कुल जैसे अब मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप बहुत छोटे छोटे जवाब देते हो, मेरे को संभालना मुश्किल हो जाएगा किस तरह से मैं आगे बढ़ूं। बिल्कुल,
0: हाँ
1: ये बहुत बहुत सही बात बताई आप। चलिए, इसी इस दूरदर्शन की याद पे और इन सब बातों की आपकी याद पे सुन के रुक के एक गाने का आनंद ले लेते हैं हम, फिर आगे
0: जी
1: बातचीत शुरू करते हैं।

0: कभी तो हंसाए।
1: हाँ तो विवेकानंद जी, अब थोड़ा सा हम एकेडमिक की तरफ चलते हैं। एक अच्छे एंकर के लिए आपको क्या लगता है सबसे जरूरी गुण क्या है? आवाज, व्यक्तित्व, तैयारी या संवेदनशीलता, कुछ इसके बारे में बताइए। और आजकल तो थोड़ा ह्यूमर सा भी आ गया है।
2: हाँ ये भी आता है जी, बिल्कुल। मुझे लगता है सबसे पहली, सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यदि आप इस लाइन में हैं और काम कर रहे हैं, तो आपका नित्य प्रति का अध्ययन, वो बहुत आवश्यक है। आपका अध्ययन होगा और फिर जो आपने पढ़ा है, उस पढ़े हुए को आप यदि समय समय पर रिपीट करते जाते हैं, तो मुझे ध्यान आता है दूरदर्शन पर भी जब कई ऐसे विशेषज्ञ भी आते थे कि जो बहुत विद्वान, बहुत पढ़े लिखे, अधिकार पूर्वक अपने विषय पर बोलने वाले, तो उस दौर में जब मेरे को पता लगता था कि ये विषय है और ये एक्सपर्ट है, मुझे नहीं पता एक्सपर्ट कितनी तैयारी करके आते थे, लेकिन मुझे 3 घंटे 4 घंटे उस विषय पर पूरी तैयारी करनी होती थी कि कहीं ये नहीं हो जाए कि सामने वाला ये कह दे कि तुम सवाल तो कर रहे हो पर क्या तुम्हें इसके बारे में पता भी है। यदि ये स्थिति हो जाती है, आजकल देखते हैं बहुत सारे कार्यक्रमों में एक्सपर्ट जो है वो एंकर को ये कह देते हैं कि आपका होमवर्क ठीक नहीं है, होमवर्क पूरा करके आइए। मैं इस बात से सदैव जो है वो सचेत रहता था कि अपनी ऐसी स्थिति कभी नहीं होनी चाहिए। जिस विषय पर हम सवाल कर रहे हैं उसकी जानकारी, तो वो जो तैयारी वाली बात है वो तैयारी निश्चित रूप से आपको करनी ही पड़ेगी। संवेदनशीलता की जो बात है, यदि आप किसी टीवी कार्यक्रम की बात करते हैं तो अलग है, यदि आप लाइव किसी कार्यक्रम में हैं, किसी मंचीय कार्यक्रम में हैं आप, तो वहां आपको ऑडियंस को देखना पड़ता है कि सामने पब्लिक कैसी है, जनता कैसी है, और उसके अनुरूप फिर उस कार्यक्रम को ढालना है। उस कार्यक्रम में रोचकता वाली जो बात करते हैं आप, ह्यूमर वाली जो बात कह रहे हैं, तो उस ह्यूमर के भी बहुत सारे तरीके, बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। उसमें सकारात्मक चीजें भी हो सकती हैं। आप बीच बीच में, जैसे मेरा एक ये आनंद का विषय रहता है कि मैं यदि एंकरिंग करता हूँ, बाहर सामाजिक कार्यक्रमों में करता हूँ, तो मैं बीच बीच में कुछ संस्कृत के श्लोक, कोई कविता की पंक्तियां, कोई दोहे, कोई चौपाई, इस तरह की चीजें, जिससे कोई ना कोई सार्थक संदेश मिलता हो, इस तरह की प्रस्तुति देने का मेरा प्रयास रहता है। तो मुझे लगता है कि संवेदनशीलता और उस समय जो माहौल है, जो कुछ बोला जा रहा है, उस पर आपको तुरंत कोई ऐसी बात ध्यान में आती है कि वो पब्लिक को बांध के रखती है। तो ईश्वर की कृपा से ये जो चीजें हैं, इस पर आपका अभ्यास और माँ शारदे की कृपा, ये दोनों मिलती हैं, तो मुझे लगता है कि एक एंकर का स्तर फिर ठीक हो पाता है।
1: चलिए, ये बहुत ही अच्छी बात बता दी है आपने, और ये तो सीखने वाली बात है, और तैयारी तो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात,
2: बिल्कुल।
1: तो अब इसी पे, चूंकि आपने ये बात हुई, एंकर की भी बात हो गई, कवि की भी बात हो गई, और आपने बताया कि कविता से भी थोड़ा सा लोग जुड़ जाते हैं अगर ऑडियंस सामने लाइव बैठी हो, तो एंकर और कवि दोनों रूपों को अगर जोड़ती हुई कोई चरणता हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहें तो वो स्वागत है आपका। कुछ सुनाइए इसके बारे में।
2: मैं अभी आप कह रहे हैं तो एक कविता की कुछ पंक्तियां हिंदी भाषा पर जो है मैं आपके समक्ष और श्रोताओं के समक्ष निवेदित करना चाहता हूं। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा है वो हमारी मातृभाषा में होनी चाहिए, और भाषाओं का ज्ञान जो है वो जरूरी है। आप दुनिया भर की भाषाएं पढ़िए, उनका ज्ञान लीजिए, लेकिन आपको जिस भाषा में सपने आते हैं, उस भाषा में यदि आप प्रारंभिक शिक्षा लेंगे तो फिर जीवन बहुत आनंदित होता है। और भाषाओं में कई बार जो है वो हम लोग देखते हैं, नई जो पीढ़ी है वो अपनी हिंदी भाषा को लेके और थोड़ा सा हेय दृष्टि वो रखती है, तो इसलिए मैंने एक ये कविता लिखने का प्रयत्न किया। निवेदित करता हूँ कि हिंदी तो बिंदी है जी हाँ भारत माँ के भाल की, हिंदी तो बिंदी है जी हाँ भारत माँ के भाल की, और लाली माँ लगती है ये रूप राशि के गाल की, ये भारत का आभूषण है, माता का गलहार है, विश्व पटल पर भाषाओं में इसका भी सत्कार है, संस्कृत की बेटी है ये तो संस्कृति की संवाहक है, अंग्रेजी के पीछे भगते फिर क्यों बेटे नाहक है, इसे बढ़ाएं इसे बचाएं अपनी जिम्मेदारी है, ऐ संस्कारी दौर में इसकी अपनी पहरेदारी है, ऐ संस्कारी दौर में इसकी अपनी पहरेदारी है। तो मैं इसलिए कहता हूं कि आपको अन्य भाषाएं भले कार दे देंगी, संस्कार आपको माँ हिंदी की शरण में आने पर ही मिलेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो बहुत ही वो है, और कई बार हमारे पब्लिक सेक्टर्स में जो हिंदी दिवस होता है उस पर यही बात चर्चा में होती है कि केवल एक हिंदी दिवस पे हम हिंदी की बातें करते हैं और बाकी पूरे साल इसको भूल जाते हैं। मेरे को याद आता है बहुत सारी ऐसी बातें हैं।
2: तो अपनी भाषा का अभिमान होना चाहिए हमें, ये जो स्वाभिमान है ये गर्व का विषय है कि हमारी भाषा ऐसी भाषा है जिसमें किसी तरह की दरिद्रता नहीं है। एक एक शब्द के लिए हमारे पास में, आप पैर की बात कीजिए कितने तरह के शब्द मिल जाएंगे, आप रिश्तों की बात कीजिए तो चाचा ताऊ बुआ फूफा मामा कितने शब्द मिलेंगे। तो ये यदि आप देखेंगे तो हमें गर्व होता है कि हम जो है एक ऐसी भाषा जो देववाणी से निकली है उसके अनुयायी हैं।
1: चलिए अब थोड़ा सा आपका राजनीतिक विश्लेषण जो आप करते हैं उसके बारे में रुख कर लेते हैं। आप कई राष्ट्रीय चैनलों पर आते हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में, तो आप ये बताइए राजनीति को अब समझना आसान हुआ है या जटिल हो गया है? क्योंकि आजकल की जो राजनीति है उसको या तो पत्रकार समझ पाते हैं या पॉलिटिकल लोग समझ पाते हैं, आम आदमी का कहीं उसमें कुछ लेना देना है कुछ है या नहीं है?
2: देखिए वो डिपेंड करता है, वो निर्भर करता है व्यक्ति की उसमें रुचि कितनी है। मैं जब पत्रकारिता के क्षेत्र में आया तो मेरे को जिस तरीके से रिपोर्टिंग करनी होती थी, तो जब रिपोर्टिंग करनी होती थी तो उस विषय की जानकारी भी चाहिए, तो उस विषय के बारे में पढ़ना मैंने शुरू किया। और फिर जब पढ़ना शुरू किया तो फिर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के साथ में बैठना उठना शुरू किया, वहां से व्यावहारिक ज्ञान आता है लोगों के साथ बैठ के। राजनीतिक क्षेत्र में जो काम करने वाले बहुत से मेरे मित्र हैं तो उनके साथ कई कई घंटों बैठता था, और पुराने नेताओं के वो जो कहानी किस्से सुनाते थे भैरव सिंह जी शेखावत के, शीश राम ओला के, है ना, अलग अलग जो पार्टियों के, हाँ, तो उनके जो वो किस्से

0: विवेकानंद जी, अब तो थोड़ा सा आपके कविताओं की तरफ आते हैं, आपके इस जीवन की तरफ आते हैं।
1: जी
0: पत्रकार और विश्लेषक के भीतर से कवि कब और कैसे जन्मा, ये और आपकी ये जो ज्यादातर कौन से विषय हैं जिनके आसपास आपकी कविताएं घूमती हैं, इनके बारे में कुछ बताइए हमें।
1: देखिए, मैं तो वैसे अभी भी अपने आप को कोई कवि नहीं मानता। मैं पत्रकारिता का विद्यार्थी रहा, पत्रकारिता के क्षेत्र में काम किया। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में भी दो तरह के काम हैं, एक रिपोर्टिंग का काम होता है, दूसरा विचार का काम होता है। तो
0: जी
1: विचार जो है वो हम कोई लेख पढ़ते हैं, संपादकीय पढ़ते हैं, कोई व्यंग पढ़ते हैं, उससे हमारा एक माइंडसेट भी बनता है। तो मैंने पत्रकारिता के शुरुआती दौर में ही रिपोर्टिंग करने के साथ साथ कॉलम लिखना शुरू किया,
0: अच्छा,
1: और संयोगवश मेरे मन में यह था कि इस भीड़ से अलग लिखना है और भीड़ से अलग दिखना है, तो उसके लिए कुछ नया प्रयोग करना पड़ेगा। तो मैं जो कॉलम लिखता था, उस कॉलम का मैं समापन

0: गया और फिर
1: ओके
0: वही मंच पर बैठे बैठे कुछ दोहे मैंने बनाए। और जब देखा कि उन दोहों को जब मैं दोहे में सुना रहा था तो सामने जो पब्लिक थी वो जोरदार मेरा उत्साहवर्धन किया, उन्होंने खूब तालियां मिली, खूब उनकी मेरे को दाद मिली और उस वहां से मेरा एक आत्मविश्वास बढ़ा और मुझे लगा कि नहीं ठीक है, अपन इस दिशा में भी थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। ज्यादातर विषय जो है तात्कालिक विषय मैं लेता था, कोई मतलब कभी मेरे को याद नहीं आता कि मैंने कागज पेन लेकर बैठा हूं कि हाँ मेरे को कविता लिखनी है। मुझे कहीं से कुछ दिखा, कोई घटना, कोई परिस्थिति, उसी में से कुछ ना कुछ पंक्तियां चाहे दोहे के रूप में निकली हो, चाहे किसी अलग छंद के रूप में निकली हो, चाहे मुक्तक के रूप में निकली हो, तो इसी आधार पर संवेदनशीलता जो है वो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है। और विचार व्यक्त करने का आपका यदि अभ्यास रहता है, वो चाहे गद्य में हो चाहे पद्य में हो, वो यदि अभ्यास है तो फिर चीजें थोड़ी आसान होने लगती हैं।
1: बहुत सुंदर, मजा आ गया आपकी बात सुनकर। अच्छा, अब विवेकानंद जी, हम करीब करीब आखिरी पायदान पर आ गए हैं।
0: जी
1: मैं आपसे एक प्रश्न, आज के युवा पत्रकार, एंकर या कवि बनना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने सब विधाओं का आपके पास अनुभव है, तो इनको, आपको अगर कोई तीन में सबसे महत्वपूर्ण सलाह देनी होगी तो क्या देंगे आप?
0: देखिए, मैंने जब पढ़ाई पूरी की थी तो मेरे मन में भी कोई ये विचार नहीं था कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है। मुझे ये था कि मुझे कोई ना कोई काम, अपना काम करना है, अपने तरीके से करना है और किसी के अधीन रहना ये कहीं ना कहीं मेरे मन को कचोटता था। तो इसलिए मैंने ये लाइन चुनी पत्रकारिता की। कवि सम्मेलनों की तरफ आया, लेखन की तरफ आया, चुनाव की रणनीति वगैरह की ये जो लाइनें हैं। और आज मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी भी अक्सर ही एक बात कहते हैं कि आप नौकरी मांगने वाले मत बनिए, नौकरी देने वाले बनिए।
1: धन्यवाद।
0: तो आप चाहे कवि बनना चाहते हैं, लेखक बनना चाहते हैं, पीआर इंडस्ट्री में आप काम करना चाहते हैं, चुनावी क्षेत्र जो है उसमें आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में आना चाहते हैं, यदि कोई भी क्षेत्र जो आप सोचते हैं, सबसे पहली और पहली आवश्यकता है आपका अध्ययन। उस क्षेत्र के संदर्भ में आपको नॉलेज जो है वो जरूरी है और नॉलेज, प्रामाणिक नॉलेज चाहिए। आजकल जो एक शब्द चलता है व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी, उससे काम नहीं चलेगा। आपको प्रामाणिक जानकारी होना वो बहुत जरूरी है। दूसरी बात, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। और तीसरी, तो पहली बात हो गई आपका ज्ञान, प्रामाणिक ज्ञान वो आएगा अध्ययन से, दूसरी बात परिश्रम, और तीसरी जो बात है वो है फिर धैर्य। ये नहीं होगा कि आज आपने पौधा लगाया और कल वो आपको फल देने लग जाए। और हमारे यहाँ तो जो गीता में कहा जाता है कि कर्म करो, फल की इच्छा फल की जो है बात वो ईश्वर पर छोड़ दो, फल की इच्छा मत करो। तो अपने आप देर सवेर परिणाम आता है, सुखद आता है, और किसी बार किसी क्षेत्र में आप काम करते हुए असफल भी हो जाते हैं तो फिर ये सोचकर आगे बढ़िए कि ईश्वर ने कहीं इससे बड़ी भूमिका के लिए आपका चयन किया है। निराश और हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, परिश्रम करते जाइए, जीवन अपने आप आनंदित होगा। क्योंकि वो कहते हैं ना कि पसीना जो होता है, परिश्रम का पसीना, उसकी महक ही कुछ अलग होती है।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने इतनी तीन बातें इतनी बढ़िया बताई हैं। आशा है श्रोताओं, मुझे आशा है कि ये जो विवेकानंद जी ने बातें बताई हैं, ये हमारे लिए बहुत सार्थक रहेंगी। तो विवेकानंद जी, आज की सार्थक और प्रेरणादायक बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार हमारी तरफ से।
0: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि जब आपने बीच बीच में मेरे से बहुत सारी कविताएं सुन ली हैं तो इस
1: बिल्कुल
0: कार्यक्रम का समापन भी एक दोहे के साथ में
1: बिल्कुल
0: हो
1: बिल्कुल
0: जाए।
1: बिल्कुल
0: क्योंकि
1: बिल्कुल
0: किसी
1: बिल्कुल
0: बहुत बड़े कवि ने एक बात कही है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो दो पंक्तियों का एक दोहा, दुमदार दोहा, जिसमें एक तीसरी पंक्ति और आती है, तो उसमें वर्तमान परिस्थितियों पर मैंने कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए लिखा है। जैसे
1: जी
0: ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसके लिए मैंने लिखा कि गर्म

0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: चलिए, तो श्रोताओं, आपके अनुभव, आपके विचार और आपकी कविताओं ने निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं को सोचने पर मजबूर किया, विशेषकर युवाओं के लिए जो आपका संदेश प्रेरणा का स्रोत है। श्रोताओं, अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं या अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो हमें जरूर लिखें। फिलहाल मुझे, आलोक कुमार को दीजिए अनुमति। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी एक नए व्यक्तित्व, नई प्रेरणा के साथ। नमस्कार और सुनते रहिए जिंदगी के रंग गीतों के साथ। धन्यवाद।
2: मगर अब जो आना तो धीरे से आना।
3: और दोस्तों, इसी के साथ आज के इस खूबसूरत सफर को बस यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज की बातचीत और गीतों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको कुछ नया सोचने की प्रेरणा दी होगी। फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान, एक नई कहानी और नए गीतों के साथ जिंदगी के रंग गीतों के संग इस प्रोग्राम में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

आज के कलाकार प्रोग्राम में दोस्तों, आज की गायिका है अलका याग्निक। जी हाँ, अलका याग्निक का जन्म 20 मार्च 1966 को कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुआ था। उनकी माता का नाम शोभा याग्निक था। अलका ने अपनी पढ़ाई मॉडर्न हाई स्कूल फॉर गर्ल्स कोलकाता से की। घर में संगीत का माहौल था तो बस अलका की रुचि भी संगीत की ओर हो चली। चलिए सुनते हैं उनका गाया हुआ ये गीत।

अलका ने अपने करियर की शुरुआत 6 साल की उम्र में ही शुरू कर दी थी, जब उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के लिए एक भजन गाया। उसके बाद 10 साल की उम्र में वो अपनी माँ के साथ बॉम्बे आई। बॉम्बे में निर्माता निर्देशक राज कपूर से उनकी मुलाकात हुई, जिन्होंने उनकी आवाज से प्रभावित होकर उन्हें संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से मिलने की सलाह दी। तो हो जाए उनकी आवाज का ये प्यारा सा गीत।

1980 में अलका ने अपना पहला गाना गाया पायल की झनकार। बतौर सिंगर अलका याग्निक के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि जब उन्होंने गायन को अपना करियर चुना तो उनके सामने भारत के सुर कोकिला लता मंगेशकर और आशा भोसले थीं। लेकिन अलका ने भी इन सब के बीच अपने आप को प्रसिद्ध करने की ठान ली। तो हो जाए इनकी आवाज का एक और नगमा।

अलका ने अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म लावारिस में मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है गाया, जो बहुत जबरदस्त हिट हुआ। लगभग 8 साल तक मुंबई में संघर्ष करने के बाद 1988 में फिल्म तेजाब में अपने गीत 1, 2, 3 की सफलता के बाद वो पार्श्व गायिका के रूप में सफल हो गई। तो आइए दोस्तों, हो जाए यही गीत।

0: किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
1: कैसे?

सन 1989 में अलका ने फिल्म कयामत से कयामत तक में उदित नारायण के साथ ऐ मेरे हमसफर, अकेले हैं तो क्या गम है, गजब का है ये दिन, सोचो जरा जैसे सुपर हिट युगल गाने गाए। इन फिल्मों की सफलता के बाद तो अलका को कई अच्छी फिल्मों के ऑफर्स मिले। सन 1994 में फिल्म हमेरा ही प्यार के सॉन्ग्स के लिए उन्हें पहली बार सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो पेशे खिदमत है दोस्तों उन्हीं की प्यारी सी आवाज में ये प्यारा सा गीत।

1999 में प्रदर्शित फिल्म कुछ कुछ होता है के लिए भी उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने कई भाषाओं की 700 से ज्यादा फिल्मों में करीब 20,000 गाने गाए। तो लीजिए उन्हीं की आवाज का ये गाना।

2012 में हिंदी सिनेमा के 100 सालों के दौरान फिल्म ताल के गीत ताल से ताल मिला को देसी मार्टिनी, हिंदुस्तान टाइम्स, फीवर 104 के द्वारा किए गए एक पोल में उनको सबसे ज्यादा वोट्स मिले। तो ये लीजिए, पेशे खिदमत है उनकी आवाज में एक और गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

हिंदी के अलावा उन्होंने मराठी, बंगाली, भोजपुरी, नेपाली, कन्नड़ और असमिया में भी कई गाने गाए। लता मंगेशकर जी ने उषा जी को प्रोत्साहित किया और धीरे धीरे उन्होंने सिंगिंग की दुनिया में कदम रखा। लीजिए, पेश खिदमत है उषा जी का एक और गीत।

फिर फिल्म जय संतोषी माँ ने उनकी किस्मत पलट दी। 1975 में आई फिल्म जय संतोषी माँ के मैं तो आरती गाने ने उषा मंगेशकर जी को घर घर में पहचान दिला दी। इस फिल्म के गानों के लिए उषा मंगेशकर जी को फिल्म फेयर बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग फीमेल का नॉमिनेशन भी मिला। पेशे खिदमत है उनकी आवाज का एक और नगमा।

उषा मंगेशकर जी ने 60 साल की उम्र तक सिंगिंग की। उन्होंने 1992 में दूरदर्शन के लिए म्यूजिकल ड्रामा फूलवती को भी प्रोड्यूस किया, जिसकी कहानी बाबा साहेब पुरंदरे पर आधारित थी। हम लाए हैं उन्हीं की आवाज का एक और गीत।

क्या दोस्तों आपको मालूम है उषा मंगेशकर जी को सिंगिंग नहीं पेंटिंग पसंद थी। वो एक चित्रकार बनना चाहती थी लेकिन लता मंगेशकर जी के प्रोत्साहन से वो सिंगिंग में आ गई। लीजिए उन्हीं की आवाज का एक सुरीला नगमा।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।

बज़्मे ख्याल में तेरे हुस्न की शम्मा जल गई, दर्द का चांद बुझ गया, हिजर की रात ढल गई। जब तुझे याद कर लिया सुबह महक महक उठी, जब तेरा गम जगा लिया रात मचल मचल गई। दिल से तो हर मामला करके चले थे साफ हम, उनके सामने कैसे बात बदल बदल गई। आखिरी शब के हम सफर फैज़ न जाने क्या हुए, आखिरी शब के हम सफर फैज़ न जाने क्या हुए। रह गई किस जगह सबा, सुबह किधर निकल गई। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की शाम फैज़ अहमद फैज़ के नाम, और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त आरती।

रेडियो SN और रेडियो तांतिया भील 90.8 FM पर हमारे प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक में। और आज के हमारे खुसूसी शायर हैं फैज अहमद फैज। दोस्तों, फैज साहब का जन्म 13 फरवरी 1911 सियालकोट पाकिस्तान में हुआ था। अपने ज़माने के उर्दू और पंजाबी अदब के मशहूर शायर थे। उनके कलाम का दबदबा पाकिस्तान हिंदुस्तान से भी बाहर था। जहाँ तक उनकी तालीम का ताल्लुक है तो उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में MA किया था। पेशे से पोइट थे, जर्नलिस्ट थे, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में मिलिट्री ऑफिसर भी रहे, ब्रॉडकास्टर भी थे और ट्रेड यूनियनिस्ट भी थे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उन्हें निगार अवार्ड से नवाजा 1953 में, और फिर 1990 में उन्हें निशाने इम्तियाज से नवाजा गया। इसके अलावा वो पहले ऐसे एशियन शायर थे जिन्हें लेनिन पीस प्राइज दिया गया 1962 में। तो आज हम उनकी कुछ चुनिंदा शायरी, गज़लों और नज़मों का लुत्फ उठाएंगे। सो आइए दोस्तों, सुनते हैं ये बहुत ही खूबसूरत गज़ल जो कि अपनी पुरसुकून आवाज़ में गाई है गुलाम अली साहब ने। शौक फरमाए शामे फिराक अब ना पूछ, आई और आके टल गई, दिल तो था कि संभल गया, जा थी कि फिर मचल गई। शौक फरमाए।

शेर अर्ज है, सांस थी जब तलक मैं तन्हा था, सांस थी जब तलक मैं तन्हा था, गांधा

दोस्तों, मखदूम उर्दू के मशहूर शायर थे। हम बात फैज़ अहमद फैज़ की कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मखदूम साहब से भी ताल्लुक है उसका। तो मखदूम साहब की गज़ल से मुतासिर होकर ही फैज़ साहब ने ये गज़ल लिखी। ये गज़ल भी उन्होंने अपने मास्को दौरे के दौरान लिखी। मखदूम साहब की वफ़ात के दौरान उनको खराज अकीदत के तौर पर उन्होंने ये गज़ल लिखी। उन्हीं के मीटर पर, उन्हीं के जैसी। गज़ल के बोल ऐसे थे जो फैज़ साहब ने लिखे। कोई खुशबू बदलती रही पैरहन, कोई खुशबू बदलती रही पैरहन, कोई तस्वीर गाती रही रात भर, फिर सबा साए शाखे गुल तले, फिर सबा यानी बहार, साए शाखे गुल तले, गुलाब की टहनी की छाया तले, कोई किस्सा सुनाती रही रात भर, जो ना आया उसे कोई जंजीर दर, जो ना आया उसे कोई जंजीर दर, हर सदा पर बुलाती रही रात भर। जंजीर दर दरवाजे की सांकल को बोलते हैं दोस्तों। जो ना आया उसे कोई जंजीर दर, हर सदा पर बुलाती रही रात भर, एक उम्मीद से दिल बहलता रहा, एक तमन्ना सताती रही रात भर, आपकी याद आती रही रात भर, चांदनी दिल दुखाती रही रात भर। दोस्तों, सुनिए ये ठहरी हुई छांव सी एक पुकार, छाया गांगुली की आवाज़ में। जयदेव साहब ने ये गमन पिक्चर के लिए कंपोज की और उन्हें इसके लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। और छाया गांगुली को भी नेशनल अवार्ड फॉर फीमेल प्लेबैक सिंगर से नवाजा गया। दोस्तों, इस गज़ल को गाने के लिए जयदेव जी ने छाया गांगुली को बाकायदा ट्रेन किया और नतीजा हम सबके सामने है। फिल्म में गाया गया कलाम मखदूम साहब का, आपकी याद आती रही रात भर, चश्मे नम गुनगुनाती रही रात भर। मुलाहिज़ा फरमाएं छाया गांगुली की आवाज़ में।

0: दिल में अब यूं तेरे भूले हुए गम आते हैं, दिल में अब यूं तेरे भूले हुए गम आते हैं, जैसे बिछड़े हुए काबे में सनम आते हैं। दोस्तों, ये गज़ल, ये खसूसी सी नज़्म खुद फैज़ साहब की आवाज़ में सुनिए। ये किस खलिश ने फिर इस दिल में आशियाना किया,
1: ये किस खलिश ने फिर इस दिल में आशियाना किया, फिर आज किसने सुखन हमसे गायबाना किया। गमे जहां हो रुख यार हो कि दस्ते अदू, सुलूक जिससे किया हमने आशिकाना किया। थे खाके राह भी हम लोग कहरे तूफान भी, सहा तो क्या ना सहा और किया तो क्या ना किया। खुशा की आज हर एक मुद्दई के लब पर है वो राज जिसने हमें रांदाए जमाना किया। वो हीलागर जो वफा जू भी है जफा खू भी, किया भी फैज तो किस बुत से दोस्ताना किया। ये किस खलिश ने फिर इस दिल में आशियाना किया, फिर आज किसने सुखन हमसे गायबाना किया।
0: दोस्तों, फैज़ साहब की पहचान एक इन्फ्लुएंशियल लेफ्ट विंग उर्दू और पंजाबी के शायर के तौर पर रही है। रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी के केस के तहत उनको 1951 से 1955 तक 4 साल तक के लिए जेल में रहना पड़ा। बकौल फैज़, बड़ा है दर्द का रिश्ता ये दिल गरीब सही, तुम्हारे नाम पे आएंगे गम गुसार चले। या फिर, जो हम पे गुजरी सो गुजरी, मगर शबे हिजरा हमारे अश्क तेरी आकबत सवार चले। ये मिसरा उनकी मशहूर गजल गुलों में रंग भरे से लिया गया है। दोस्तों, लीजिए, आप भी सुनिए और लुत्फ उठाइए जनाब मेहदी हसन साहब की पुरसोज आवाज का। कफस उदास है यारो, सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्रे यार चले। गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले, चले भी आओगे गुलशन का कारोबार चले।

कि नूरजहां मैडम ने बिना हाथ में डायरी पकड़े, कोई पुर्जा पकड़े, बिना कोई लिरिक्स देखे, मुंह जबानी कैसे लफ्ज दर लफ्ज गा दिया। हम लोग आजकल बिना लिरिक्स देखे एक गाना भी याद नहीं कर पाते और गा पाते ढंग से, और उसका पूरा क्रेडिट जाता है आज के कैरोके सिस्टम को। हालांकि पुराने गाने हमें आज भी मुंह जबानी याद हैं उनके नुएंसेस के साथ, लेकिन मॉडर्न टेक्निक का कुछ फायदा है तो ये कुछ नुकसान भी हुआ है कि लिरिक्स भूलते जा रहे हैं हम। बहरहाल सुनिए ये मशहूर नज्म मैडम नूरजहां की पुरकशिश आवाज में, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा।

तो दोस्तों, आज की इस खूबसूरत शाम को यादगार बनाने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी की महक और मोहब्बत से ये बज़्म यादगार बन गई। अब रुख्सत का वक्त आ गया, कल आपसे फिर मुलाकात होगी अपने इसी प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक में। मैं आपकी दोस्त आरती अब आपसे विदा लेती हूँ। गुनगुनाते रहिए और अल्फाज और एहसासों के साथ कुछ नए एहसास और कुछ नए अल्फाज जरूर कुछ ना कुछ जुड़ता ही रहता है। तब तक खुश रहें, आबाद रहें। शब खैर, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे।

दोस्तों, आपके मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ।

जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। कृषि विज्ञान केंद्र अलीराजपुर, अलीराजपुर। मारा सभी किसान भाइयों का जय, राम राम। मार सब किसान भाइयों शामिल। अपनी जी प्राकृतिक खेती छे, इनी खेती मा फसल उगाड़ी बनाने वाते जो अपनो साधन काम मा लेते जो घर ही उपयोग कर मंडी या बाजार से ढूंढी ले।

पैसा गाँव में न शहर को पैसा गाँव में। किसान भाइयों आपनो काजे प्राकृतिक तरीका से खेती करनो होई थी, बाहर से बहुत दवाई लाने जरूरत नहीं पड़े। जैसे जंगल में फल वाला झाड़ का बिना खत ने दवाई से मोटा हो जाए ने काय सारा फल लगा दे तो से आप भी खेती करनो।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: रेडियो टांडिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का, सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। और हमारे किसान साथी कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, क्योंकि हम और आप देख रहे हैं गर्मी इतनी ज्यादा भीषण पड़ रही है। ऐसे में हमारे किसान साथी क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे किसान साथी जिनका मन नहीं मानता है और वो सोचते हैं कि हम तो खेती में ही हमें पूरा समय व्यतीत करना है, और चाहे वो गर्मी का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, या फिर बरसात का मौसम हो, खेती बाड़ी में लगे रहते हैं, सोचते रहते हैं कुछ नयापन करने के लिए। और बहुत सारे किसान साथी ऐसा करते भी हैं और कर भी रहे हैं। तो ऐसे में किसान साथी थोड़ा अपना भी ख्याल अवश्य रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने से हमारे किसान साथी यदि बीमार पड़ जाएंगे तो आगामी फसल कैसे करेंगे। हाँ, हमें आशा है कि किसान साथी हमारी बात को समझ रहे होंगे। और किसान साथी, इस बार चूंकि आपके जिले झाबुआ में पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन खुल गया है, तो नई नई जानकारी तो आप सुन ही रहे होंगे, और आशा करते हैं कि हमारे किसान साथियों की ये जो जानकारी है वो बहुत पसंद आ रही होगी। हम कोशिश करेंगे कि वो छोटी से छोटी जानकारी हमारे किसान साथियों तक पहुंचाई जाए, जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो। अब हमारे किसान साथी चूंकि पथरीला इलाका है झाबुआ जिले का, और हमारे किसान साथी कम सीमित उनके पास खेती भी है, और जिनके पास ज्यादा खेती है वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन जिनके पास कम खेती है वो क्या करते हैं कि खेती बस दो सीजन की खेती लेते हैं, ये बरसात के बाद जो खरीफ वाली है या रबी वाली फसल, दोनों फसलें लेते हैं। लेकिन अब समय बदल रहा है, ऐसे में किसान साथी संबंधित कृषि विस्तार अधिकारी से परामर्श लेकर

हम वैज्ञानिक खेती करना स्टार्ट करेंगे, नई नई पद्धति, नई नई वैरायटी के बीज और स्प्रिंकलर से खेती करना या फिर ड्रिप एरिगेशन से खेती करना, तो विभिन्न प्रकार की संभावनाएं खेती में, और इसमें लागत भी कम आती है और मुनाफा अधिक होता है। तो हमारे किसान साथी समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हाँ, हमें आशा है कि समझ गए होंगे। तो विशेष तौर पर ध्यान रखें, और अभी से चूंकि बरसात का मौसम जैसे ही आएगा तो हमारे किसान साथी क्या करेंगे, अभी से तैयारी करें, क्योंकि मनरेगा में बहुत सारा पैसा रहता है, मेड़ बंधान कर सकते हैं हमारे किसान साथी, जो ढालू उबड़ खाबड़ जमीन है उसको एक समतलीकरण उसका कर सकते हैं, जो हमारे किसान साथियों के लिए समतली जमीन है उन पर वो बागवानी लगा सकते हैं, सब्जियां लगा सकते हैं, तमाम प्रकार की संभावनाएं खेती में करें। तो किसान साथी करने के लिए यदि तत्पर हैं तो हमारे कृषि विस्तार अधिकारी भी तत्पर हैं और हमारे वैज्ञानिक भी तत्पर रहते हैं आपके सहयोग करने के लिए। आपको बस उनके पास जाना है, समझना है, सोचना है और हमें वैज्ञानिक पद्धति से खेती करना है। आज के इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम में आज हम एक नई पद्धति की खेती के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, वो है कि किस तरीके से जो हमारे किसान साथियों के पास छोटी छोटी जमीनें हैं वहां पर पॉली हाउस, चूंकि पॉली हाउस सरकार द्वारा अनुदान भी इसमें दिया जाता है, पॉली हाउस में टमाटर की खेती किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि टमाटर की खेती यानी टमाटर सीजनेबल होता है और आपको पता है कि अहम खेती में से एक मानी जाती है टमाटर की खेती। तो ऐसे में किसान साथी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, कैसे संभालें, तो पॉली हाउस में किस तरीके से खेती कर सकते हैं टमाटर की, उस पर हम आज एक नजर डालेंगे। साथ साथ में एक सफल किसान की कहानी भी हम सुनाएंगे, साथ साथ में आधुनिक जमाने में हम किसान साथियों को किस तरीके से खेती कर सकते हैं, कौन सी योजना का लाभ लेकर हमारे किसान साथी खेती कर सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो तीन चार सेगमेंट होंगे आज हम, साथ साथ में मौसम आधारित जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। लेकिन साथियों, जानकारी उपलब्ध कराने से पहले हम सुनते हैं इस प्यारे से वीली गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आप लो रेडियो अपनी बातें।

0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम।
1: आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
0: रेडियो टांटिया बिल 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। और अभी आपने इस प्यारे से भीली गीत को सुना, आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अब जानते हैं मौसम क्या कहता है, क्योंकि जब तक हम मौसम आधारित खेती नहीं करेंगे तब तक हमें पता ही नहीं लगेगा क्या कहता है मौसम। तो आने वाले 5 दिनों के दौरान तेज हवा, आंधी, तूफान चलने की संभावना देखते हुए हमारे किसान साथी, जिन किसान साथियों के पास कच्चे छत वाले पशुशालाओं हैं तो उनका गिरने का डर बना रहता है, इसलिए कच्चे पशुशालाओं की मरम्मत का कार्य अति शीघ्र शुरू कर दे। साथ साथ में कच्चे छत वाले पशुशालाओं के पशु सुरक्षित रहें। आने वाले 5 दिनों के दौरान मौसम आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना बताई जा रही है। आसमान में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना भी बताई जा रही है। अधिकतम तापमान 45 से 40 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना बताई जा रही है। रात का न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना बताई जा रही है। हवा की औसत गति 11 से 28 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना बताई जा रही है। ऐसे में हमारे किसान साथी क्या करें? आने वाले 5 दिनों के दौरान मौसम आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना बताई जा रही है। साथ साथ में गर्म लू चलने की संभावना को ध्यान में रखते हुए किसान भाई जिन्होंने सब्जी बोई है, उड़द मूंग भी की फसल उन्होंने बोई है, फलों के बगीचे उन्होंने लगाए हैं, तो हल्की हल्की सिंचाई नियमित अंतराल पर करते रहें। साथ साथ में मूंग में सफेद मक्खी का प्रकोप देखा जा रहा है, अतः किसान भाई फसल का निरीक्षण करें। नियंत्रण हेतु मिथाइल डेमोटोन और डाई मैथो एट दवा 2.0 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आसमान जब साफ रहे तब उसका छिड़काव अवश्य कर दें। जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो वे हरी घास हेतु मक्का या ढेंचा की बोनी कर सकते हैं। आने वाले 5 दिनों के दौरान तेज हवा चलने की संभावना को ध्यान में रखते हुए किसान भाई पान की यदि खेती करते हैं तो पान की बेलों को डंडी या बांस से ऊपर बांधकर चढ़ाने का कार्य शुरू कर दें। साथ साथ में टमाटर जिन किसान साथियों ने लगाई है, मिर्च बैगन की नर्सरी लगाई है, तो उनको दोपहर के समय छाया का उचित प्रबंधन अवश्य करें जिससे गर्म हवाओं से बचा जा सके। कद्दू वर्गीय जिन किसान साथियों ने सब्जियां लगाई हैं, लाल कीड़ा सफेद मक्खी का प्रकोप देखा जा रहा है, इसके लिए हमारे किसान भाई ट्राइजोफास 40 ईसी दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव अवश्य कर दें तथा दवा छिड़काव के 7 दिन बाद तक सब्जियों को ना तोड़ें। वर्तमान मौसम में बैगन और टमाटर में फल तथा तना छेदक कीट का प्रकोप देखा जा रहा है, इसके बचाव के हेतु क्वानाल फास 25 सीसी दवा 2.0 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव अवश्य कर दें। और हमारे जिन किसान साथी नए बाग बगीचे फलबाग लगाने के लिए सोच रहे हैं तो वो गड्ढों की खुदाई अवश्य कर दें, उचित दूरी पर गड्ढे खोदें। साथ साथ में खुदी हुई जो मिट्टी रहती है उसको धूप से तपने दें जिससे जो कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाए। मानसून पूर्व पशुओं को गलघोंटू और जहरी बुखार के टीके अवश्य लगवा लें। आपके नजदीकी जो पशु चिकित्सा होगा तो वहां पर जाकर संपर्क कर ले। साथ साथ में बारिश के मौसम के आने तक इनके अंदर रोग रोधक क्षमता का विकास हो सके। मुर्गी पालक हमारे किसान साथी जो पाले हुए हैं उनको मुर्गियों को गर्मी से बचाव हेतु मुर्गी खाने में चारों ओर जालियां में टाट फट्टी जो रहती है, बोरे जो रहते हैं उसको लगा देवे। साथ साथ में दिन का समय 2 से 3 बार पानी का छिड़काव अवश्य कर देवे। तो ये थी जानकारी मौसम आधारित जो आपको सुनाई जा रही थी। इसी के साथ हमारा वक्त हो चुका है हमारे कार्यक्रम को सुनने का। हमारे किसान साथी दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि गीत संगीत भी होगा और आपको जानकारी भी हम मुहैया कराएंगे। तो आइए इसी बीच सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बने रहिए आपके अर्जे मनीष के साथ, सुनते रहिए झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया फील 90.8 एफएम। आपड़ा रेडियो आपड़ी बात है।

0: और झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: रेडियो टांडिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अभी आपने इस प्यारे से गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं पॉली हाउस में हमारे किसान साथी किस तरीके से टमाटर की खेती कर सकते हैं। आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट को। बने रहिए आपके आरजे मरीज के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो अपनी बात है।
2: टमाटर की फसल बहुत ही नाजुक होती है, मौसम की मार इस पर बहुत ज्यादा पड़ती है, प्रभावित हो जाती है इसकी उपज। ऐसे में जरूरी है कि हम कोई विकल्प ढूंढें। विकल्प है पॉली हाउस। जी हाँ, टमाटर की खेती हम पॉली हाउस में कर सकते हैं, बेहतर उत्पादन हासिल कर सकते हैं, लेकिन कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। किस तरह से ये संभव हो सकता है, आइए जानते हैं हमारे इस सेगमेंट के जरिए।
3: हमारे देश में टमाटर की मांग साल भर बनी रहती है। प्रधानमंत्री से टॉप फसलों में शुमार कर चुके हैं और ये केंद्र सरकार की ओर से चलाए जाने वाले ऑपरेशन ग्रीन्स का भी हिस्सा है। ज्यादा मांग की वजह से ही इसकी खेती आर्थिक रूप से काफी सुरक्षित मानी जाती है, यानी टमाटर कमाई वाली फसल है। लेकिन ज्यादा धूप, तेज हवा, अत्यधिक बारिश, ओले या मौसम दूसरे हमले इस फसल को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा टमाटर में कीटों और बीमारियों का भी खतरा बना रहता है। इसकी वजह से किसानों को फसल में कीटनाशकों और दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। इससे न सिर्फ लागत बढ़ जाती है बल्कि गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है। पॉली हाउस लोहे और पॉलीथिन से बना छाया घर है, जो महंगी फसलों के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हैं और उन्हें मौसम की मार से बचाता है। इन घरों में जलवायु को नियंत्रित करके बेमौसमी फसलें भी उगाई जा सकती हैं। बेमौसम फसलें हमेशा से ही ज्यादा मुनाफा देती है। पॉली हाउस में बोने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने कई किस्में तैयार की हैं। पूसा रक्षित, पूसा टमाटर, संरक्षित ए, चेरी टमाटर, हिम शिखर, नवीन, हिम सोना, अभिलाष, शहनशाह, अर्का रक्षक और अर्का सम्राट। ये ऐसी किस्में हैं जो उन्नत भी है और लंबे समय तक फल देती है। टमाटर की खेती के लिए हल्की बलोई या बलोई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। मिट्टी पोषक तत्वों और कार्बनिक पदार्थों से भरपूर होनी चाहिए और पीएच मान 6 से 7। पॉली हाउस के अंदर खेत तैयार करने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। मिनी रोटावेटर या कल्टीवेटर से 2-3 जुताई काफी है। पहली जुताई के समय गोबर की खाद जरूर डाल दें। टमाटर उथली जड़ वाली फसल है और फल आने के बाद

0: असेंबली हाउस में टपक सिंचाई का इंतजाम करें। इससे न सिर्फ पानी की बचत होगी बल्कि लागत भी कम आएगी। पॉली हाउस चूंकि बंद संरचना है इसलिए बारिश होने पर जल भराव की समस्या नहीं आती। टमाटर में रुपाई के पहले 4 हफ्तों के दौरान निराई गुड़ाई की जरूरत होती है। फसल में तापमान और नमी बनाए रखने के लिए फोगर सिंचाई भी कर सकते हैं। पॉली हाउस में चूंकि वातावरण नियंत्रित होता है इसलिए पैदावार भी खुले खेत के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है। इसके अलावा आप साल भर टमाटर की फसल ले सकते हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि पॉली हाउस सामान्य खेती के मुकाबले 4 गुना ज्यादा मुनाफा दिला सकता है।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भी 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें। रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी। और अभी आपने सुना पॉली हाउस में किस तरीके से टमाटर की खेती कर सकते हैं। अगला सेगमेंट है कि बागवानी में किस तरीके से हमारे किसान साथी आगे बढ़ सकते हैं। और साथ में सुनेंगे सफल कहानी हमारे एक किसान की। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बात है। इसी बीच कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं इस प्यारे से वीर गीत को।

0: देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
1: खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा।
0: इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती है। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।
2: किसान भाइयों बहनों, खेती किसानी में कई ऐसी मिसालें हैं जो अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर उभरी हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। आज एक ऐसे ही किसान अमरनाथ से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं, जानते हैं कैसे उन्होंने कामयाबी का ये सफर तय किया है।
3: अमरनाथ का जन्म गांव खेड़ा, जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ था। इन्होंने खेतीहर परिवार में जन्म लिया था, इसलिए जैसे जैसे वे बड़े हो रहे थे उनकी रुचि खेती से जुड़ती जा रही थी। उनके पिता ने उनका दाखिला स्कूल में कराया तो था, लेकिन पेड़ों की छांव में पढ़ते समय भी अमरनाथ के दिमाग में खेती ही गूंजती रहती थी। पुराने दिन की वे यादें आज भी वे भूले नहीं है। अमरनाथ बचपन से ही अपने पिता के साथ खेतों पर जाते थे। उन्होंने देखा कि किसान किस तरह खेतों में दिन रात मेहनत करता है, लेकिन जितनी मेहनत वो करता है उसके मुकाबले किसानों को मजदूरी तक नसीब नहीं होती है। इसी कारण अमरनाथ ने कई जगह नौकरी भी की, लेकिन वहाँ भी उन्हें कुछ खास तरक्की नहीं मिली। आखिरकार अमरनाथ ने खेती को चुना और इसमें लगातार मेहनत करने लगे। वो दिन रात खेतों पर काम करते, बुआई बिजाई से लेकर कटाई तक सारे काम वे खुद ही करते हैं। काम करने की लगन और हमेशा कुछ नया करने की जिद ने अमरनाथ के लिए नए रास्ते बनाने शुरू कर दिए। उन्हें कहीं से पता चला कि सरकार किसानों के लिए अनेक सुविधाएं और ऋण मुहैया कराती है, तो बस फिर क्या था, अमरनाथ ने सरकार से खेती करने के लिए ऋण लेकर अपने काम को आगे बढ़ाया। उन पैसों से ट्रैक्टर खरीदा, धान काटने की मशीन खरीदी। सरकार की तरफ से मिली इन सुविधाओं से खेती से काफी मदद मिली। इन सभी मिली सुविधाओं से अमरनाथ की समझ भी बढ़ी। उन्हें ये समझ आने लगा कि परंपरागत खेती को छोड़ नई तकनीकों को अपनाकर ही किसान खेती में सफलता हासिल कर सकता है। लिहाजा वे नई तकनीकों के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहने लगे। अमरनाथ ने अनेक राज्यों के सेमिनारों में शिरकत की और वहां अपने फसलों का प्रदर्शन किया और उसके लिए अमरनाथ को इनाम भी मिला। अमरनाथ खेती से जुड़ी बारीकियों और नई तकनीकों को जानने के लिए शहरों के चक्कर भी लगाते थे। इसी बीच उनका नासिक जाना हुआ था। वहां जाकर उन्होंने उन्नत किस्म के प्याज की उपज के विषय में विस्तार से जानकारी इकट्ठी की। उन्होंने प्याज की खेती करनी शुरू कर दी और उसमें उन्हें अपार सफलता भी मिली। सेमिनारों में उनके प्याज को खूब सराहा गया और उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। अमरनाथ ने फसल चक्र को अपनाया। उन्होंने एक साथ कई फसलें लेनी शुरू की। प्याज के साथ गन्ना और चना भी लगाया, जिससे उनकी आय में भारी इजाफा हुआ और प्रगति के नए रास्ते भी खुलते गए। गरीबी के साए में पले बढ़े अमरनाथ आज अपनी कड़ी मेहनत और लगन के बलबूते आज सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं और अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं।
0: ये पूरा प्राकृतिक है। अधिक जानकारी के लिए
2: बता दें आपको कि हमारी जो सरकार है वो आपकी उन्नति के लिए प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, कई अहम कदम भी उठाए जा रहे हैं और उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण कदम है कृषि अवसंरचना कोष। इस कोष का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है, हमारे किसानों को यानी कि आप लोगों को इससे किस तरह का लाभ मिल सकता है, जानने के लिए आइए नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट पर।
4: लेकिन साथियों, उनकी बातचीत को सुनने से पहले सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM। आपला रेडियो आपली।

0: कृषि अवसंरचना कोष केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए बनाई गई एक योजना है। इस योजना के तहत किसानों को फसल कटाई के बाद कृषि अवसंरचना प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों से संबंधित परियोजनाओं में निवेश के लिए माध्यम और दीर्घकालिक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के माध्यम से किसान फसल की कटाई के बाद उसकी सही कीमत मिलने तक उसे सुरक्षित रख सकेंगे। इस योजना के माध्यम से किसानों को आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी लक्ष्य रखा गया है। इस योजना की विशेषताओं की बात करें तो फसलों की कटाई के बाद अनाज के प्रबंधन हेतु अवसंरचना का विकास करना, उपज बढ़ाने के लिए सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए धन उपलब्ध करना, लिए गए ऋण पर सब्सिडी और बैंक गारंटी के माध्यम से किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्यमों को निवेश बढ़ाने और आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना प्रमुख है। इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में आधारित तंत्र को मजबूत करना है, जिससे देश के बड़े बाजारों तक किसानों की पहुँच सुनिश्चित की जा सके और साथ ही नवीन तकनीकों के माध्यम से फाइटोसैनिटिक मानदंडों को पूरा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भारतीय किसानों की पहुंच बढ़ाई जा सके। कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की वित्त पोषण की सुविधा दी गई है। इस योजना के तहत ऋण पर ब्याज में 3% की छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही ऋण जारी करने वाली संस्था को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर बैंक गारंटी सरकार द्वारा दी गई है। इस योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2020 से 2029 यानी 10 वर्ष तक निर्धारित की गई है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्राथमिक कृषि साख समितियां, विपणन सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप, एग्रीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स पात्र हैं। ये ऋण 4 वर्षों में वितरित करने का लक्ष्य है। कृषि अवसंरचना कोष का प्रबंधन और निगरानी ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जा रही है। ये प्लेटफॉर्म सभी योग्य संस्थाओं को ऋण के लिए आवेदन करने में सुविधा प्रदान कर रहा है। इच्छुक व्यक्ति या संस्थान पोर्टल के माध्यम से ऋण के लिए आवेदन से पहले अलग अलग बैंकों द्वारा प्रस्तावित ऋण दरों के बीच तुलना करके बेहतर निर्णय ले सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म कई बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों में पारदर्शिता, ब्याज अनुदान और क्रेडिट गारंटी सहित योजना विवरण, न्यूनतम दस्तावेज, अनुमोदन की प्रक्रिया के साथ साथ अन्य योजना लाभों के साथ एकीकरण जैसे लाभ भी प्रदान किए जा रहे हैं।
1: किसान भाइयों बहनों, अथर्ववेद में लिखा है कि ये धरती हमारी माँ है और हम सभी इसके पुत्र हैं। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे का लालन पालन करती है, वैसे ही ये धरती भी हम इंसानों का पेट भरती है अपने उपज से। लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा उपज मिले, इसके लिए हमने क्या किया? रासायनों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया, जिससे हमारे देश की मिट्टी बीमार हो गई। अब हमारा दायित्व है कि हम इसे स्वस्थ बनाएं। कैसे? प्राकृतिक खेती को अपनाकर। आइए इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं।
2: रसायनों की वजह से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है सो अलग। कृषि रसायनों के लिए दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है और उपाय तलाशे जा रहे हैं। जैविक खेती इसी तलाश का नतीजा है, लेकिन समस्या ये है कि जैविक खेती भी पूरी तरह रसायन मुक्त नहीं है। अगर आपको एकदम शुद्ध फसलें उगानी है तो प्राकृतिक खेती अपनानी होगी। प्राकृतिक खेती देसी गाय पर आधारित कृषि पद्धति है, जो मुख्य रूप से मिट्टी के स्वास्थ्य पर जोर देती है। मिट्टी जितनी स्वस्थ होगी, फसल भी उतनी ही बेहतर होगी। दरअसल मिट्टी में पौधों के विकास के लिए 16 तरह के पोषक तत्व होते हैं। देसी गाय के गोबर में सभी तत्व मौजूद हैं और कमाल की बात ये है कि अकेली गाय 30 एकड़ जमीन पर खेती के लिए काफी है। देसी गाय के गोबर और मूत्र की गंध केचुओं की संख्या बढ़ाने में भी मददगार है। हम सभी जानते हैं कि केचुए किसानों के मित्र माने जाते हैं। आपको बता दें कि प्राकृतिक खेती के लिए गहरी जुताई की जरूरत नहीं होती। इसमें सिंचाई पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है, जिससे तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई में भी इजाफा होता है। प्राकृतिक खेती में पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण होती है। ऐसा करने से पौधों को सूरज की ऊर्जा और रोशनी ज्यादा समय तक मिल जाती है। इससे पौधे अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं, जिससे न सिर्फ कीट लगने की आशंका कम हो जाती है, बल्कि पौधों में पोषक तत्व भी संतुलित मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। प्राकृतिक खेती में मुख्य फसल के साथ सहयोगी फसलों को भी उगा सकते हैं। इसी तरह की खेती में देसी बीजों की काफी अहम भूमिका होती है। देसी बीज पोषक तत्व कम लेते हैं और पैदावार ज्यादा देते हैं। दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन का असर खेती पर भी पड़ रहा है। प्राकृतिक खेती से उपजी फसलें मौसम की विषमताओं को काफी हद तक सहन कर लेती हैं, जिससे किसान आर्थिक नुकसान से बच रहे हैं। खेती के लिए खाद और कीटनाशक की जरूरत होती है। प्राकृतिक खेती में ये दोनों चीजें प्राकृतिक तरीके से ही बनाई जाती हैं, वो भी घर पर मौजूद सामग्री से। इसमें दो तरह की खाद होती है, जीवामृत और घन जीवामृत। खाद दो तरह से बन सकती है, मिट्टी की भौतिक दशा को सुधार देगा। इस तरह कीटनाशक भी गोबर, गौमूत्र, पौधों के पत्ते, तंबाकू, लहसुन और लाल मिर्च से बनाए जाते हैं। प्राकृतिक खेती में पोषण और कीट नियंत्रण के लिए बाजार से कुछ भी अतिरिक्त सामान नहीं खरीदना होता, इसलिए इसे जीरो बजट फार्मिंग यानी शून्य बजट खेती भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में ये खेती लोकप्रिय हो रही है और खासतौर से कर्नाटक में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनकी सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना में ही भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के नाम से एक उप योजना तैयार की है। इसके अंतर्गत किसान को 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 12,200 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। पद्मश्री सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के जनक हैं। वैसे बिना रसायनों वाली खेती भारत के लिए कोई नया विचार नहीं है। हमारे किसान हजारों साल से इसी तरह की खेती करते आ रहे हैं। वेदों और उपनिषदों में भी इस संबंध में श्लोक मिल जाते हैं। रसायनों का उपयोग हरित क्रांति के दौरान शुरू हुआ। अब चूंकि पूरी दुनिया इनके दुष्परिणामों को जान चुकी है, ऐसे में भारत प्राकृतिक खेती के रूप में दुनिया को नई राह दिखा रहा है।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
4: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और महत्वपूर्ण योजनाएं साथ साथ में हमारे सफल किसान की कहानी और साथ साथ में पॉली हाउस में किस तरीके से हमारे किसान साथी खेती कर सकते हैं उसके बारे में हमने जाना, समझा और सोचा। साथियों, हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अब समझ गए होंगे कि आपके लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशन कितना महत्वपूर्ण काम कर रहा है और साथ साथ में योजना पर भी काम कर रहे हैं। और साथियों, यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए हो तो केवीके अपना झाबुआ में बना हुआ है, वहां पर संबंधित जो वैज्ञानिक रहते हैं उनसे परामर्श ले सकते हैं, क्योंकि पॉली हाउस की योजना में भी अनुदान दिया जाता है, तो किस तरीके से लाभ लेना है उससे संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ में नई पद्धति से नए बीजों का चयन और किस तरीके से जैविक पद्धति से हम खेती करना चाहते हैं, किस तरीके से बागवानी लगाना चाहते हैं, तो आप संबंधित कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। कि हमें आशा है कि हमारे किसान साथी इन बातों को विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे और हम कोशिश करते रहेंगे कि किसान साथियों को वो सारी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएं जो हमारे किसान साथियों के लिए बेहद जरूरी है। एक बार फिर से आपको हम बता देना चाहते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है, अपना ख्याल रखें, पशुओं का भी विशेष तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि गर्मी ज्यादा पड़ रही है, ऐसे में पशुओं को बार बार पानी पिलाएं, साथ में उनको शरीर पर ठंडक बनाए रखें, नहलाएं उनको, नदी यदि आसपास है तो वहां पर नदी में भी नहला सकते हैं, साथ साथ में मेड़ बंधान पर विशेष तौर पर ध्यान दे सकते हैं हमारे किसान साथी। और साथ साथ में एक हम उम्मीद करेंगे कि इन कार्यक्रमों को सुनकर हम हमारे किसान साथी अपने जीवन में, अपनी खेती में जरूर बदलाव करेंगे। और साथ साथ में एक बातचीत और फिर से दोहराना चाहते हैं कि जिन किसान साथी जो खेत पर काम कर रहे हैं वो विशेष तौर पर अपना जरूर ख्याल रखें, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, बार बार पानी पीते रहें, साथ साथ में तौलिया या गमछा अपने सर पर डाल के रखें जिससे आपको धूप ना लगे, और ज्यादा मेहनत ना करें, समय समय पर रेस्ट लेते रहें और अपना काम करते रहें। तो ये जानकारी जो आपको उपलब्ध कराई जा रही है वो आपको बता देना चाहते हैं, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको दी जा रही है। साथियों, हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम से जाने का। तो कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। फोन नंबर है हमारा 94 25
5: 41 36 03 यानी 9425413603 इस नंबर पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ही हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपके हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
3: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM।
6: आप रेडियो आपड़ी बातें।
7: આપણ હંગલા ભાઈઓ અને બહેનો નું નમસ્કાર, હું છે આરજે ભાવના અને તમુ હમલતા રેજો ઝાબુઆ નો પહેલો સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ 90.8 FM ઝાબુઆ ની આવાજ। સાથીઓ આવો હમલ્યો યો ભીલી લોકગીત, ગાયક કલાકાર માલહીંગ કટારા ની આવાજ માં, આરજે ભાવનાની હાથે।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे वर्षा
2: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष,
1: लेकर हाजिर हैं आप सभी के लिए खेती किसानी से जुड़ा हुआ कार्यक्रम खेती बाड़ी।
2: और खेती बाड़ी कार्यक्रम में किसान साथियों के लिए हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत लेकर आते हैं और खास तौर पर उन छोटे छोटे सेगमेंटों पर हम बातचीत करते हैं जो हमारे झाबुआ जिले के किसान साथियों के लिए बेहद जरूरी रहती है, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि खेती बाड़ी करना कितना मुश्किल हो गया है आज के इस जमाने में, क्योंकि इसमें लागत बहुत ज्यादा लगती है और मुनाफा बहुत कम होता है। और अक्सर देखा जाता है कि पथरीली इलाका, अगर झाबुआ जिले की बात करें तो वहां पर पथरीला इलाका है और ऐसे में किसानों को खेती करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने जा रहा है।
1: बिल्कुल, तो इन्हीं सब समस्याओं के समाधान को लेकर रेडियो टांटिया भील आप सभी के लिए लेकर आया है ये खास कार्यक्रम खेती बाड़ी का।
2: और खेती बाड़ी कार्यक्रम में आज हम तीन सेगमेंटों पर बातचीत करने जा रहे हैं, क्योंकि वो सेगमेंट हमारे किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला सेगमेंट होगा कि हमारे किसान साथी मिश्रित खेती के बारे में किस तरीके से उनका रुझान है और किस तरीके से हमारे किसान साथी मिश्रित खेती कर सकते हैं, खासतौर पर पथरीले इलाकों में। अगर देखा जाए, यदि मिश्रित खेती पर हमारे किसान साथी ध्यान केंद्रित करें तो आने वाले समय में वो इससे लाभ ले सकते हैं। और दूसरा सेगमेंट होगा कि पशुपालन का हमारा सेगमेंट रहता है। पशुपालन पर भी हम खास तौर पर चर्चा करेंगे, क्योंकि राजस्थान अपने पास में लगा हुआ है, गुजरात भी पास में लगा हुआ है, तो ऐसे में हमारे किसान साथी कौन सी नस्ल की हमारे गाय भैंस पालन कर सकते हैं, खासतौर पर गायों पर विशेष तौर पर आज ध्यान केंद्रित कराएंगे। और तीसरा सेगमेंट होगा कि अब मई माह में किस तरीके से पशु

0: पालन की देखरेख हमें किसान साथी कर सकते हैं। और चौथा, हम अपने सफल किसान की कहानी सुनाएंगे, क्योंकि हम ऐसे किसानों की कहानी लेकर आते हैं, उनसे सीखकर हमारे किसान साथी अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं, अपनी खेती बाड़ी में बदलाव कर सकते हैं।
1: बिल्कुल साथियों, तो आइए हम देर नहीं करते हैं और सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम।
0: और लेकिन इस कार्यक्रम को सुनने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं इस प्यारे से भीली गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष
1: और आपकी आरजे वर्षा के साथ में।

0: साथियों, अभी आपने सुना इस व्हील गाने को और आगे हम आपको बताना चाहते हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी। तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं पहले सेगमेंट की ओर
1: और इसमें जानते हैं कि हमारे किसान साथी किस तरीके से मिश्रित खेती को कर सकते हैं और किस तरीके से मिश्रित खेती से लाभ कमा सकते हैं। यदि हमारे किसान साथी इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे किसान साथियों की आय में जरूर वृद्धि होगी। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे झाबुआ जिले में जो KBK बना हुआ है या फिर कृषि विभाग की जो ऑफिस है वहां पर जाकर हमारे कृषि विस्तार अधिकारियों से, वैज्ञानिकों से सलाह और संपर्क कर सकते हैं। तो आइए देर नहीं करते हैं, सुनते हैं इस कार्यक्रम में मिश्रित खेती के बारे में।
2: कम जोत में भरपूर फसल लेने के लिए किसान मिश्रित खेती का सहारा लेते हैं। इस तकनीक में मुख्य फसल के साथ सहायक फसलें लगाई जाती हैं। इसमें किसान 3 से 4 फसलें तक ले सकते हैं। इस विधि की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें खेत के हर हिस्से का इस्तेमाल हो जाता है और आय की आवक बनी रहती है। साथ ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति का सही इस्तेमाल लिया जा सकता है। मई माह से खरीफ फसलों की बुआई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अच्छा मुनाफा कमाने के लिए किसान खरीफ की फसल में एक साथ 3 से 4 फसलें उगा सकते हैं, जिनकी पैदावार कम पानी में हो जाती है, जैसे तिलहन, अनाज, दलहन और एक मसाले वाली फसल लगाकर एक साथ 4 फसलें आसानी से ले सकते हैं। हालांकि मिश्रित खेती को जमीन के बड़े हिस्से में एक साथ करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बड़े हिस्से में फसलों की देखरेख थोड़ा कठिन काम होता है। इसलिए जब भी किसान मिश्रित खेती की शुरुआत करे तो जमीन के छोटे हिस्से में ही करे। इस तरह देखा जाए तो मिश्रित खेती छोटी जोत के किसानों के लिए बेहद लाभकारी है। किसान बुआई करने से पहले फसल का चयन अपने स्थान के हिसाब से करे, जैसे तिलहन में मूंगफली और तिल, दलहन में मूंग, उड़द और अरहर, ज्वार, बाजरा, सूखा सहन करने वाली धान की प्रजाति जैसे सहभागी, हल्दी व अदरक। मिश्रित खेती में बुआई करते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। किसान सीड ड्रिल विधि से तिलहन फसल में मूंगफली या तिल की बुआई करे। किसान अपनी सुविधा के हिसाब से भी फसल का चयन कर सकते हैं, जैसे मूंग और उड़द दोनों या किसी एक दलहन फसल या फिर कम पानी में होने वाली धान का भी चुनाव किया जा सकता है। सीड ड्रिल विधि से बुआई करने के भी लाभ है। इससे खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, पर्याप्त मात्रा में फसल को वातावरण से पोषक तत्व मिलते रहते हैं, खेत में बीज कम लगता है और उत्पादन ज्यादा मिलता है। सीड ड्रिल से बुआई करते समय दूसरी तरफ से लौटती सीड ड्रिल की दूरी 1.5 से 2 फीट का स्थान छोड़कर बची जगह की पहली कतार में अरहर जैसी फसलें लगाई जा सकती है, क्योंकि इस तरह की फसलें स्थान ज्यादा लेती है और लंबे समय तक खेत में बनी रहती है। दलहनी फसल से करीब 2 फीट की दूरी पर मसाले फसलें लगाई जा सकती है, जैसे हल्दी और अदरक। ये मसाला फसलें 8 से 10 माह में तैयार हो जाती है। इनकी बुआई का काम हाथ से करना उचित होता है। इसके बाद सीड ड्रिल द्वारा छोड़ी गई हर अगली कतार में ऊंचे बढ़ने वाले अनाज जैसे बाजरा और ज्वार या तिलहन फसल, सूरजमुखी फसल लगाना चाहिए। मिश्रित खेती से किसान कई गुना मुनाफे की अवधारणा को जीवंत कर सकता है। इससे किसान आर्थिक रूप से मजबूत भी हो सकेगा और खेत के हर हिस्से का समुचित उपयोग भी हो सकेगा।

0: स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें। रेडियो टांडिया भील सुनने वाले सभी साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे वर्षा।
1: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष। और इस वक्त सुन रहे हैं आप झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM।
0: जी हाँ साथियों, और अभी हम सुन रहे थे मिश्रित खेती के बारे में। आगे हम आपको और भी जानकारी देने के लिए हाजिर हैं और ले चलते हैं आपको कि कैसे आप पशुपालन करके अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं।
1: तो आइए दूसरा कंपोनेंट हम सुनते हैं और इसमें जानते हैं पशुपालन किस तरीके से हम कर सकते हैं, किस तरीके से गाय का रख रखाव और साथ साथ में मई माह का कैलेंडर पर भी विशेष तौर पर चर्चा करेंगे और इसमें जानेंगे किस तरीके से हम अपने जो हमारे गाय भैंस हैं उसका मई माह में, क्योंकि बहुत ज्यादा धूप पड़ती है, किस तरीके से उनका देख रेख कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं इस चर्चा को।
2: हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी देसी गाय पालन करके पशुपालन में बेहतर मुनाफा कमाया जाता है। देसी गाय पालन में गिर गाय हर पशुपालक की पहली पसंद है। अर्धशुष्क जलवायु में कम लागत पर अधिक गिर गाय से अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। उभरा हुआ सिर, अर्धचंद्राकार सींग, लंबे घुमावदार कान, पूर्ण विकसित थन इस गाय की मुख्य विशेषता है। इसका नाम गुजरात के गिर वन से लिया गया है जो कि इसका उद्गम स्थान है। गिर गाय मुख्य रूप से लाल रंग की होती है। लाल रंग लगभग 80% में पाया जाता है। गिर गाय राजस्थान में भी काफी लोकप्रिय हो रही है। इसकी क्या वजह है, आइए जानते हैं विशेषज्ञ की नज़र से। गिर गाय राजस्थान की जलवायु के लिए अनुकूलित, इसमें गाभिन होने की ज्यादा क्षमता होती है, प्रतिरोधक क्षमता बहुत बेहतर होती है। गिर गाय का दूध काफी पौष्टिक होता है। इस नस्ल में प्रजनन संबंधी समस्याएं नहीं आती। देसी गाय पालन से जहां दूध की उपलब्धता बनी रहती है, वहीं खेती के लिए जैविक खाद और जैविक कीटनाशक आसानी से बनाए जा सकते हैं, जिससे खेती में भी अच्छा लाभ लिया जा सकता है। आहार और आवास के साथ साथ पशुओं का बेहतर स्वास्थ्य इस व्यवसाय में सफलता की कुंजी है। समय समय पर पशु के स्वास्थ्य की जांच करते रहे।
0: साथियों, अभी आपने सुना इस रिपोर्ट को जिसमें हमें बताया गया कि पशुपालन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है और कैसे हम इनसे अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं। आगे आपको कार्यक्रम में हम सुनवाने वाले हैं अपने विषय विशेषज्ञ से और ज्यादा जानकारी इस विषय को लेकर, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम एक गीत के साथ मनोरंजन करते हैं।
1: बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ
0: और आपके आरजे वर्षा के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम खेती बाड़ी।

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी।

0: स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 एफएम आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: भारत के देसी दुधारू नस्लों में गिर गाय का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मूलतः गिर गायें गुजरात के गिर जंगलों तथा राजकोट के जिले के आसपास में इनकी संख्या सबसे अधिक पाई जाती है और गिर गायें अपने कई गुणों के कारण बहुत ही विशेष स्थान रखती है। जैसे अधिक गर्मी सहन कर सकते हैं, दूध उत्पादन क्षमता बहुत अच्छी है तथा पहली बार जो बछड़िया ग्यावन होने की उम्र है वो भी इसमें बहुत ही सामान्य है। साथ ही जो इनके जो लक्षण हैं गिर गाय के वो किसी अन्य नस्लों से बिल्कुल अलग हैं। आप दूर से पहचान सकते हैं कि ये गिर गाय हैं या नहीं है। इस गाय की एक बड़ी विशेषता ये है कि ये गायें चरने के बाद अगर आप दिन में थोड़ी चराई करा दें तो इनकी दूध उत्पादन क्षमता में बहुत ही आप देखते हैं बहुत ही वृद्धि पाई जाती है। ऐसी इस नस्ल का जो इसके लक्षण हैं जो इसकी उत्पादन क्षमता है वो भारत की दुधारू गायों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। साथ ही गिर गायों में जो दूध देने की क्षमता है वो देसी गायों में बहुत ही विशेष स्थान रखती है। गिर गाय के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन गायों का सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि देसी गायें हैं और भारत की जो जलवायु है खासकर राजस्थान की जलवायु है उसमें पूर्णतः ये इनके अनुकूल हैं। साथ ही ये गायें अपने उत्पादन क्षमता को जैसे गुजरात में जो उत्पादन क्षमता है वही हमारे यहाँ इसकी उत्पादन क्षमता है। साथ ही इनके जो ग्यावन होने की जो उम्र है या इनके मान लीजिए जो इनके ब्रीडिंग है वो बहुत ही लगातार है, उसमें कोई भी समस्या नहीं है और यहाँ की आब हवा और यहाँ के वातावरण के बिल्कुल अनुकूल है। राजस्थान में बहुत से किसान आज गिर गायें को रख रहे हैं जिससे इनका संरक्षण हो रहा है और साथ ही आने वाले समय में गिर गायों को और अधिक महत्व मिलेगा और अधिक बढ़ावा मिलेगा क्योंकि गिर गाय का जो दूध है वह बहुत ही स्वादिष्ट और सभी को भाने वाला है। और कैलोरी की बात करें, विटामिन की बात करें, प्रोटीन की बात करें, फैट की बात करें, इसका जो दूध है वो बहुत ही सुपाच्य तथा स्वाद वाला है। गिर गायों की आज के समय में जो किसान रख रहे हैं जिसका बड़ा कारण है कि इनमें कोई भी प्रजनन संबंधी समस्या नहीं है, बीमारी की समस्या नहीं है। साथ ही उत्पादन जो उत्पादन क्षमता है वो किसान के लिए बहुत ही उनके लिए लाभकारी है।
2: इस माह में अधिक गर्मी रहती है, साथ ही कुछ स्थानों पर आंधी तूफान के साथ वर्षा भी रहती है। पशुओं को धूप व लू से बचाने का उपाय करें। गर्मी में पशुओं को छायादार स्थान पर रखें व पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। पशुओं में लवणों की कमी नहीं होने पाए इस हेतु लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या पानी में मिलाकर दें। पशुओं के आहार में मौसम के अनुसार आवश्यक बदलाव करें। दुग्ध उत्पादन क्षमता बनी रहे इसके लिए उसे संतुलित आहार दें। चमोकन एवं पेट की कृमि से बचाव का उचित प्रबंध करें। खरीफ में हरा चारा लेने के लिए ज्वार एवं मक्का की बुआई करें। भेड़ पालक इस माह में भेड़ की ऊन कतरने का कार्य करें।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 एफएम। आपरो रेडियो आपरी बातें।

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने पशुपालन कैलेंडर और साथ साथ में जो हमारे विषय विशेषज्ञ थे उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम अपने पशुओं की देखरेख करना चाहिए, कौन सी नस्ल हो हमारे किसान पालना चाहिए और उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए इस कार्यक्रम में आगे हम सुनते हैं सफल किसान की कहानी। लेकिन सफल किसान की कहानी से सुनने से पहले एक छोटा सा विराम लेते हैं। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम, अपना रेडियो अपनी बात है।
1: आधुनिकता की दौड़ में ज्यादातर किसान रासायनिक खेती से क्षणिक लाभ लेकर नुकसान का सामना कर रहे हैं। रासायनिक खेती से सेहत व पर्यावरण पर दुर्गामी नकारात्मक असर भी देखने को मिल रहे हैं। यही वजह है कि किसान एक बार फिर जैविक खेती की तरफ मुड़ रहे हैं। जैविक खेती से प्रकृति से सीधा तालमेल बैठाना आसान होता है, इससे खेती में आ रही कमियां दूर होती है और फसल में अच्छा खासा इजाफा मिलता है। सीकर के किसान बाबूलाल जैविक खेती करके अपने खेत की तकदीर बदलने में दिन रात प्रयास में जुटे हुए हैं। बाबूलाल पहले परंपरागत खेती किया करते थे, जिसमें सामान्य तरीके से खाद और उर्वरक का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन उत्पादन में मिल रही कमी उन्हें जैविक खेती की तरफ ले आई। वो बताते हैं कि पिछले 4 साल से वो जैविक खेती कर रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद और जैविक कीटनाशक मिलता रहे, इसके लिए बाबूलाल ने 4 देसी गाय भी पाल रखी है। राजस्थान जैसे गर्म प्रदेश में कैसे सफल खेती कर रहे हैं और पानी की मुश्किलों को कैसे आसान बना रहे हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं।
2: मैं किसान हूं, पारंपरिक खेती करते हैं और धीरे धीरे क्या है वो जैविक खेती के बारे में सुना, ऐसे लोगों से कैसे करते हैं क्या करते हैं, उसके हिसाब से हम लोगों को विचार है कि अपन भी खेती करेंगे। तो मैंने ऐसे बजाज ट्रस्ट की तरफ से थोड़ा कौन उनसे मिला, उन्होंने मेरे को ऐसा कुछ बताया कि ऐसा करो, और तो इस हिसाब से मैंने धीरे धीरे जीवामृत घन जीवामृत 10 परनियर वगैरह बनाना काम चालू किया। अभी क्या मैं 4 साल से खेती कर रहा हूँ, उन्होंने मैंने 4 साल से कुछ भी नहीं डाला, खाली जीवामृत घन जीवामृत और ये सब डाल के बना रहे हैं, बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं और उनकी तरफ से हमारे को क्या प्रोत्साहन राशि भी मिल रही है। धीरे धीरे ड्रिप इरिग्रेशन के बारे में ड्रिप लगाया तो उसमें कुछ सहयोग मिला।
3: राजस्थान में पानी की कमी है,
2: राजस्थान में वैसे पानी की यहाँ सूखा है रहता है, तो पानी की जो क्या बूंद बूंद सिंचाई से पानी की बचत उसके हिसाब से, और फिर क्या वो बोला कि अपने देसी खेती करते हैं तो गाय चाहिए, तो हमने क्या वो गिर गाय खरीदी। अभी हमारे पास 3-4 गायें हैं, तो उनसे हम क्या देसी गाय से गोबर से गोमूत्र से उनको इकट्ठा करते हैं, उनसे जीवामृत घन जीवामृत 10 परनियारक वगैरह सब बनाते हैं और तुरंत फुरुत खाद जो अपने हुमस इसके लिए बनाते हैं, जड़ों के लिए बनाते हैं और इससे बढ़िया रिजल्ट है। जो भी खाते हैं अपन तो अपन को भी शुद्ध मिलता है, गायों के लिए चारा शुद्ध मिलता है, तो उनसे क्या एक नई सिस्टम से अपना काम हो रहा है,
3: नई
2: तकनीक और नई पद्धति से अपना ऐसा हो रहा है और इसमें रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आ रहा है।
1: बाबूलाल मानते हैं कि जैविक खेती से हमें मिलने वाली उपज शुद्ध और सेहतमंद होती है, जिससे मिलने वाला पशु आहार भी शुद्ध होता है, जो पशुओं की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। खुले खेत में खेती के साथ साथ बाबूलाल पॉली हाउस में भी खेती कर रहे हैं, जिसमें वो टमाटर और खीरे की फसलें लेते हैं। इसके अलावा उनके खेतों में नींबू वर्गीय पौधे, गोभी वर्गीय सब्जियां, तरबूज और टमाटर जैसी फसलें लगी हुई है। जैविक तरीके से तैयार की गई फसलों का उन्हें बाजार दाम भी अच्छा मिलता है। वो कहते हैं कि उनकी उपज के लिए उन्हें ग्राहक नहीं तलाशने होते, क्योंकि उपज की गुणवत्ता ग्राहकों को खुद उनके खेत तक ले आती है।
2: सब्जी लगाने का तो ऐसे अपन बढ़िया उसके भाव में ऊंची रेट में बिक जाती है, अपना माल लेने से बिल्कुल लंबे टाइम तक 2-3 दिन तक खराब नहीं होता है। उसी हिसाब से कि जैविक के रासायनिक वाला 2 दिन में सड़ जाते हैं सब्जी वगैरह, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है और अपने क्या तुरंत बिक जाते हैं। ऐसे माल भी गिराए भी अपने कहते यार आपकी चीज बहुत अच्छी है, हमको आपका माल ही चाहिए, उसी हिसाब से वो भी ले देते हैं। मंडी में अपने भाव तेज रहते हैं, 1-2 रुपया सबसे अलग बिकते हैं और क्वालिटी के हिसाब से भी सब टेस्ट वगैरह भी सब अच्छे होते हैं ना अपने। किसानों को सलाह ये देंगे कि आगे चल के अपन को जैविक खेती की तरफ चलो सब, और वैसे भी करना है, इतनी बीमारियां वगैरह फैल रही है तो उसके हिसाब से अपन को अपना स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है, तो जैविक खेती अपनाओ और उसमें जैविक खेती से स्वास्थ्य सुधरेगा, देश सुधरेगा, अपन आगे बढ़ेंगे, सब यही होगा।
1: बाबूलाल जैसे किसान जैविक खेती को अपनाकर अपने खेत ही नहीं बल्कि लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं।

0: साथियों, अभी आपने सुना सफल किसान की कहानी को कि किस तरह से उन्होंने खेती बाड़ी से अपनी आय को दोगुना किया है। आप भी इस तरह से कर सकते हैं।
1: और साथियों, एक चीज और बता देना चाहते हैं, क्योंकि हम कार्यक्रम जो लेकर आते हैं, कार्यक्रम खेती बाड़ी के माध्यम से, हम आपको बता देना चाहते हैं कि छोटी छोटी बातें जरूरी हैं और हमारे किसान साथियों के लिए आय को दोगुना करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। खासतौर पर उन किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनके पास थोड़ी जमीन है और वो भी पथरीली इलाका उनके पास है और पानी रुकता नहीं है। तो सबसे पहले उनको हम बताने देना चाहते हैं कि अब आने वाले बरसात के दिनों में हम किस तरीके से पानी को बचा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा झाबुआ जिले में समस्या है पानी को लेकर। तो किस तरीके से पानी को बचा सकते हैं, खेत का पानी खेत में कर सकते हैं, सरकार की स्कीम्स का, सरकार की योजना का फायदा लेकर हम अपने आय को बढ़ा सकते हैं और साथ साथ में ऐसी खेती को हम विशेष तौर पर ध्यान केंद्रित कराने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे किसान साथी ऐसी खेती करें, ऐसी जैविक पद्धति से खेती करें जिसमें कम पानी लगता हो, उत्पादन अच्छा होता है, लागत भी कम लगती है, उत्पादन अच्छा होता है। तो ऐसे किसान साथी जो हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं, तो अधिक जानकारी के लिए हमारे कृषि विस्तार अधिकारी के पास जाकर संपर्क कर सकते हैं, साथ साथ में केवीके भी है, वहां पर जाकर भी संपर्क कर सकते हैं। साथियों, अब हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम से जाने का। तो कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पर। नंबर है हमारा 94-25-41-36-03। इस नंबर पर कॉल करके आप हमें बता सकते हैं।
0: जी हाँ साथियों, तो आज का ये कार्यक्रम आप सभी को कैसा लगा दिए गए नंबर पर फोन करके हमें जरूर बताएं। अब इस कार्यक्रम से जाने के दीजिए हमें अनुमति, यानी कि आपकी आरजे वर्षा
1: और मनीष को दीजिए जाने की इजाजत।
0: फिर होगी आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।
1: और चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से गीत को।

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

0: दोस्तों, अगर आप भी आज के कलाकार प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, नए टैलेंट्स के इस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो हमें कॉन्टैक्ट करें। नंबर है 9656517317। यह है 9656517317। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्यारा गीत नैना जी, बहुत ही प्यारी गायकी। आगे बढ़ते हैं, आपसे पूछना चाहूंगा कि गाने का शौक आपको कब से हुआ, आप कब से गाना गाना शुरू किया आपने?
1: बचपन से ही गाती थी। मेरे डैड को गाने का शौक था, वो थोड़ा बहुत क्लासिकल भी सीख चुके हैं
0: जी।
1: सो वो मुझे बोलते थे कि गाना गाने के लिए थोड़ा रियाज करना चाहिए, लेकिन मेरा इंटरेस्ट ज्यादा डांस में था पहले, इसलिए इसमें क्या होता है कि छोटी थी तब मुझे सिखाया जाता है तो मुझे वो देख के गाना नहीं होता है ना, सो आई हैव टू मेमोराइज इट, इसलिए मैं दूर रहती थी। लेकिन जब आगे कॉलेज स्कूल आगे की पढ़ाई करने लगी तब वहां जब भी मौका मिलता था मैं गा लेती थी। अभी थोड़े वो फंक्शंस, फैमिली फंक्शंस वहां पे भी गाती थी, लेकिन वो करियोके ट्रेनिंग, वो ट्रैक्स पे गाना, वो स्टार मेकर पे ऐप पे गाते हुए मुझे ज्यादा कंफर्टेबल होने लगी मैं।
0: वेरी नाइस, बहुत सुंदर, फैंटास्टिक। दोस्तों, आपने सुना कि नैना जी बचपन से ही गा रही हैं, उनको शौक रहा, लेकिन उनको ज्यादा शौक डांस का था। फिर भी आज अपनी प्रतिभा की वजह से नैना जी हमारे साथ हैं, तो चलिए एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं नैना जी की ही आवाज में।

0: नैना जी, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। आप बहुत सारी कलाएं, आर्ट स्किल्स सीखना चाहेंगी या किसी एक स्किल में, एक आर्ट में एक्सपर्टाइज हासिल करना चाहेंगी, महारत हासिल करना चाहेंगी?
1: एक्चुअली मैं हर एक आर्ट को ट्राई करना चाहती हूँ। वर्सटाइल हूँ, वर्सटाइल इंटरेस्ट है, वेरिड इंटरेस्ट है। डांस, जुम्बा, ड्राइंग, इससे वेरिड स्किल्स मुझे जो मेरे जॉब के लिए भी मुझे हेल्प होती है। जैसे मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो हम लोग छोटे बच्चों के साथ डील करते हैं, तो हम लोगों को डांस भी सिखाना पड़ता है, सिंगिंग भी करनी पड़ती है, ड्राइंग भी करनी। सो वी कनेक्ट विद द चिल्ड्रन थ्रू अवर वेरिड इंटरेस्ट। सो वो अगर बच्चे कुछ सीख सके मुझसे तो मेरे लिए वही महारत है।
0: वाओ, वेरी नाइस। सीरियसली आपने बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। अगर आपको बहुत सारी कलाएं आएंगी तभी तो आप बच्चों को सिखा पाएंगे, तभी तो आप एक वर्सटाइल टीचर भी बन पाएंगे। रियली थैंक यू सो मच, अमेजिंग। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक और बहुत ही प्यारा सा गीत नैना जी की आवाज में।

0: नैना जी, आपको संगीत में, म्यूजिक में क्या पसंद है? व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग्स? फिल्मी, नॉन फिल्मी, गजल्स, भजन, शास्त्रीय संगीत या कुछ और?
1: फिल्मी गाने ही ज्यादा पसंद है, उसमें भी स्लो सेमी क्लासिकल टाइप, जो वेरिएशंस मैं कर सकती हूँ जैसे आशा जी के, वैसे वाले गाने वो ज्यादा पसंद है। लेकिन हर तरह के लैंग्वेजेस ट्राई करती हूँ, असमीज, बंगाली, तेलुगु, तमिल, जो समझ में नहीं आता फिर भी मुझे इंटरेस्ट है ज्यादा कुछ अलग करने का, अलग सीखने का।
0: ओके, वेरी नाइस। तो अगर जस्ट इन केस आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी ट्राई करते हैं, तो आपको अभी तक कौन सी लैंग्वेज सबसे प्यारी लगी कि आप उसमें सिंगिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, या वो लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है?
1: मराठी अच्छी लगती है, बंगाली भी।
0: दैट्स वेरी नाइस, बहुत क्यूट। कैन आई पॉसिबली रिक्वेस्ट यू, आप एक लाइन मराठी में गुनगुना के हमें सुनाएं?
1: यस।

बहुत सुंदर, बहुत क्यूट, वेरी नाइस। दोस्तों देखने वाली बात यह है, साउथ वेस्ट से मिलने की कोशिश कर रहा है। साउथ की सिंगर वेस्ट के मराठी लैंग्वेज में गुनगुना रहे हैं। हाउ ब्यूटिफुल इज दैट, बहुत सुंदर। तो चलिए दोस्तों एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं नैना जी की ही आवाज में।

0: बहुत बढ़िया नैना जी, चलिए थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रोक्स में चलते हैं। आपका सबसे पसंदीदा त्योहार फेस्टिवल कौन सा है और क्यों?
1: मुझे तो दसरा बहुत पसंद है। एक तो स्कूल की छुट्टियां होती है उस वक्त और इधर हर मंदिर में शारदा माता की प्रतिष्ठा होती है, पूजा होती है और 9 दिनों के बाद विसर्जन का वो प्रोसेशन होता है। मैंगलोर दसरा तो बहुत फेमस है।
0: करेक्ट।
1: और यहाँ पे मैंगलोर दसरा का एक खास ये है कि टाइगर डांस होता है इधर, वो पेंट सब लगा के टाइगर डांस बहुत फेमस है इधर। वो सब मुझे बहुत पसंद है।
0: बैंगलोर का भी दशहरा तो काफी फेमस है ना नैना जी, कि वहां पर
1: मैसूर में,
0: सॉरी वो मैसूर का है। ओके ओके ओके,
1: मैसूर,
0: जहां पर एलिफेंट्स के बहुत एलिफेंट्स के प्रोसेशंस निकलते हैं। ऑलराइट, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत खूब। तो चलिए दोस्तों, एक और प्यारा सा गीत हो जाए नैना जी की आवाज में।

0: और नैना जी आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा चेंज और लाते हैं। आपका सबसे पसंदीदा खाना क्या है? आई मीन टू से डिश, कोई ईटिंग डिश क्या है और क्यों?
1: हर तरह के राइस आइटम्स बहुत पसंद है क्योंकि हम लोग ज्यादातर राइस ही खाते हैं, उसमें फ्राइड राइस, घी राइस, बिरयानी, कर्ड राइस, वो सब पसंद है। और उसके साथ अगर क्रैब घी रोस्ट हो तो और भी बहुत मजा आता है।
0: वाओ, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। बिकॉज ये आप जा रहती हैं मैंगलोर, वो एक कोस्टल एरिया है, जाहिर सी बात है वहां की डेलिकेसीज ही आपको पसंद होंगी। और हमें भी सुनकर बहुत बहुत इंटरेस्ट आ रहा है कि वो कैसी टेस्ट करती होंगी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैं जानबूझ कर ये सवाल इसलिए पूछता हूं कि हमारे टैलेंट्स जो हैं, जो वो पूरी इंडिया से बल्कि पूरे वर्ल्ड से आते हैं, वो अपने बारे में जब बताते हैं तो हमें डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट इंडिविजुअल्स, उनके टेस्ट्स, उनके मैनरिज्म, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में मालूम पड़ता है और हम देखते हैं कितनी जबरदस्त डाइवर्सिटी है अक्रॉस, एंड वी आर स्टिल द सेम। बहुत खूब,
1: बिल्कुल।
0: तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत नैना जी की ही आवाज में।

0: नैना जी, ऐसी कौन सी जगह है जहां आप बार बार ट्रैवल करके जाना चाहेंगे और क्यों?
1: मुझे तो गोवा जाना बहुत पसंद है। पहले तो उधर के बीचेस, वो टेम्पल्स, वो सब देखती थी, लेकिन अब मेन क्या है कि हमारे कुलदेवता का मंदिर है
0: जी,
1: वहां जांबोली में, जो इतना सुकून मिलता है, उतना पीसफुल है, सच ए डिवाइन फीलिंग, हमेशा उधर बार बार जाने का मन करता है।
0: कहां पर है ये मंदिर?
1: गोवा में जांबोली, दामोदर टेम्पल।
0: जांबोली, दामोदर टेम्पल। ओके, सो दोस्तों, आपने सुना नैना जी गोवा में जांबोली, जहां उनके देवता का, दामोदर जी का टेम्पल है, वहां बार बार जाना चाहती हैं क्योंकि वो बहुत बहुत पीसफुल प्लेस है। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, अगर हम कभी भी गोवा जाएं तो हमें याद रह सकता है कि जांबोली में एक ऐसा मंदिर है जिसको हम विजिट करें और उस पीस को हम भी एक्सपीरियंस करें जो नैना जी करती हैं। तो चलिए एक और गीत हो जाए नैना जी की ही आवाज में।

0: बहुत सुंदर। अब जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं नैना जी, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उससे हमको आपके बारे में और थोड़ा जानने का मौका मिलेगा म्यूजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा कौन सा गीत है, सॉन्ग है, जो आपको लगता है कि आपकी पर्सनालिटी को पूरी तरह से सूट करता हो, डिस्क्राइब करता हो, आपके ऊपर पूरा फिट होता हो?
1: हंसते हंसते कट जाए रस्ते, वही है मेरे लिए।
0: क्या बात,
1: खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, कुछ भी मिले उससे कुछ सीख के आगे बढ़ती हूँ। All experiences have taught me something in life and made me stronger. So, ऐसे ही रहूंगी।
0: वेरी क्रिस्प, वेरी एप्रोप्रिएट, बहुत ही परफेक्ट आंसर नैना जी। हमारे सुनने वालों को महसूस हुआ होगा कि कितना जिंदा दिल इंसान हैं आप, आगे बढ़ते हैं, अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हैं, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कौन सा गीत है जो आपकी पर्सनालिटी को बताता है। अमेजिंग। तो चलिए दोस्तों, एक और गीत हो जाए नैना जी की ही आवाज में।

0: नैना जी, आगे बढ़ते हुए अगेन आपको थोड़ा बेहतर जानने के लिए आपसे पूछना चाहूंगा कि आप कुछ कलेक्शन का शौक रखते हैं? हर एक कोई कुछ ना कुछ कलेक्ट करता है, कुछ कपड़े, क्रॉकरीज, की रिंग्स, एनीथिंग एनीथिंग. सो डू यू कलेक्ट समथिंग? कुछ कलेक्ट करते हैं आप?
1: आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बहुत शौक है. इयररिंग्स, बैंगल्स, नेकलेसेस, जो भी एक्सेसरीज साड़ी को मैच करे, ड्रेसेस, वो बहुत पसंद है. दैट्स अ मटेरियलिस्टिक. अदर देन दैट, जहां भी जाती हूँ, जो भी यादें, कलेक्ट सेल्फीज, फोटोज, वो सब रहते हैं मेरे पास बचपन से. जो भी मेरे बेटे के या कोई भी विजिट किए हुए प्लेसेस के, वो सब पिक्स मैं रखती हूँ अपने पास. वो यादें हैं मेरी.
0: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली फाइन. बहुत बहुत प्यारी बात कि नैना जी को आर्टिफिशियल ज्वेलरीज का, उसका कलेक्ट करने का बहुत शौक है. अमेजिंग. तो चलिए दोस्तों, एक और प्यारा सा गीत नैना जी की ही आवाज में.

0: और नैना जी, आप अपने किसी सबसे अच्छे दोस्त के बारे में हमें बताइए ना कि वो आपका सबसे अच्छा दोस्त क्यों है।
1: सबसे अच्छा दोस्त तो बोलूंगी अब मेरा बेटा ही है। हमेशा मेरा साथ देता है, किसी भी वक्त कुछ भी चाहे कुछ भी बोलूं मैं, वो हमेशा मेरे लिए रहता है। इसलिए इस एज में मेरे लिए वो ही मेरा सबसे बड़ा दोस्त है।
0: वेरी नाइस, वेरी क्यूट। तो कैन आई पॉसिबली रिक्वेस्ट यू, आपसे मैं गुजारिश कर सकता हूं कि उनका नाम हमें बताएं।
1: श्रेयस बाड़िया।
0: श्रेष, तो चलिए दोस्तों, अगर नैना जी की इजाजत हो तो अगला गीत हम श्रेष को ही डेडिकेट करें। सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: नैना जी, आगे बढ़ते हुए अब मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि हम अपने प्रोग्राम के उस जगह पे आ गए हैं जहां आप प्लीज हमारे सुनने वालों के लिए कुछ कहिए, कुछ मैसेज दीजिए, उनको कुछ संदेश दीजिए।
1: यही बोलना चाहूंगी कि म्यूजिक हैज द पावर टू हील, इंस्पायर, ब्रिंग पीपल टुगेदर। बहुत अलग अलग जगहों से एक साथ हम इकट्ठा होते हैं, एक साथ मिल बांट के सुनते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव सच वंडरफुल ऑडियंस। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड काइंड सपोर्ट।
0: थैंक यू सो मच नैना जी, थैंक यू सो मच। ये हमारा सौभाग्य है, ये इट्स अ प्लेजर कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपसे हमने बातें की, आपके गीत हमने सुने। अमेजिंग, थैंक यू सो मच नैना जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।
1: थैंक यू सो मच।
2: बेहद शानदार गायकी, बेहद शानदार टैलेंट, एक और हसीन संगीत और गीत से भरी हुई शाम के लिए कल फिर हाजिर हो जाऊंगा एक नए टैलेंट के साथ। सुनना ना भूलिएगा।

नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के कलाकार के इस प्यारे से प्रोग्राम में, जहां कुछ ख्वाब आवाज बनकर सजते हैं, कुछ जज्बात गीतों में ढल जाते हैं, और जब दिल गाता है तो हर सुनने वाला अपना सा लगने लगता है। आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही कलाकार जिनकी आवाज में सच्चाई है और सुरों में जादू। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करें।

ये लीजिए दोस्तों, एक और बहुत ही प्यारा मासूम सा सौंधा सौंधा, जहां से मिट्टी की खुशबू उठती है, ऐसा प्रोग्राम आज के कलाकार का लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं। और आज जो टैलेंट हमारे साथ हैं, जो सिंगर हमारे साथ हैं, उनका स्वागत करते हुए आपके सामने उनको इंट्रोड्यूस करता हूं। वो है राजीव जी। बाकी जैसा मैं हमेशा करता हूं, कलाकार, गायक, संगीतकार, सिंगर, अपने बारे में खुद आपसे

0: बहुत खूबसूरत। राजीव जी, मुझे ये बताइए, जिस वक्त आप छोटे बच्चे थे, स्कूल जाते थे, उस वक्त किसी को तो आपने देखा होगा, कोई रोल मॉडल आपने बनाया होगा, आप उस वक्त क्या बनना चाहते थे कि मैं बड़ा होके ये बनूंगा? क्या इच्छाएं थी आपकी, क्या सपने थे?
1: सर, सच एग्जैक्टली बहुत कुछ अच्छा याद नहीं है उस समय का, बट यस डेफिनेटली मेरे मदर एंड फादर बोथ एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे। माय फादर वाज अ प्रिंसिपल देयर इन वन स्कूल एंड मेरी मदर भी टीचर थी। हम लोग कुछ भाई बहन हैं। तो जब मैं छोटा था तो मैं अपने फादर, मेरे फादर बहुत अच्छे सिंगर थे, इज नो मोर नाउ, एंड मैंने अपने फादर को गाते हुए सुना। ही वॉज अ वेरी गुड वायलिनिस्ट ऑल्सो, मैंने उनको वायलिन बजाते हुए सुना। तो मुझे उस समय लगता था, मैं बहुत छोटा था, कि मैं भी अपने पापा जैसा गाऊंगा। एंड बाकी उसके अलावा एज सच उस समय कोई ऐसा कोई बहुत अर्ली एज में कुछ ऐसी प्लानिंग नहीं थी। तो मैं कहूंगा रोल मॉडल मेरे फादर ही थे, जो मेरे सामने थे, जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ।
0: बहुत बढ़िया, दैट्स रियली ट्रू। ऑफ कोर्स ज्यादातर ऐसा ही होता है दोस्तों, हम लोग अपने परिवार में अपने पिताजी से या अपनी माताजी से प्रभावित होकर कुछ तय करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और उसमें कुछ भी गलत भी नहीं है। आफ्टर ऑल वो ही हमारे रोल मॉडल होते हैं, सबसे पहले तो उंगली पकड़ के उन्होंने ही तो हमें चलाया था। बहुत सुंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हुए राजीव जी की ही प्यारी सी आवाज में एक और गीत का आनंद लीजिए, फिर हम वापस आते हैं राजीव जी के पास।

0: राजीव भाई, अब गानों की बात करते हैं, संगीत की, गीत की, म्यूजिक की। कौन सा गाना गाने में आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है? मुझे पता है आप छूटते ही कहेंगे मुझे सारे गाने पसंद है, मुझे सारे गाने गाने में मजा आता है, लेकिन मेरे भाई फिर भी एक गाना तो आपको अंदर से कहीं दिल में बहुत तहे दिल से पसंद होगा, जिसको आप बार बार गुनगुनाना चाहते हैं, कौन सा गीत है वो?
1: जी सर, एक्चुअली जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत अर्ली एज से अपने फादर को गाते हुए सुना, एंड ही वाज अ वेरी गुड सिंगर ऑफ मुकेश। वो मुकेश जी के बहुत गाने गाया करते थे, तो उन्हीं के मुंह से मैंने सुना हुआ था, सुहानी चांदनी रातें मुझे सोने नहीं देती
0: जी,
1: हमारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती।
2: तो मैं मुकेश जी के गानों का बड़ा कायल हूँ
1: और अभी भी मैं मुकेश साहब को बहुत ज्यादा गाता हूँ।
0: Okay.
1: वैसे तो सभी सिंगर्स के गाने गाता हूँ मैं, किशोरदा के, रफी जी के, अभी आशा भोसले जी का देहावसान हुआ तो उनके गाने बहुत मैंने अभी पिछले 4-5 दिनों में गाए। सो म्यूजिक इज इट्स अ बिग पैशन फॉर मी। तो वही मैंने बताया, मुकेश जी मुझे बहुत पसंद है, तो उनका वो गाना मुझे बहुत ही ज्यादा दिल के करीब है।
0: ऑलराइट, सो क्या हमारे लिए बस एक लाइन जरा सा गुनगुना देंगे?

0: करती।
1: बहुत खूब, क्या बात है, ब्यूटीफुल। तो दोस्तों चलिए ना आगे बढ़ते हुए एक प्यारा से गीत का आनंद उठाएं।

0: बहुत सुंदर। राजीव जी, कभी स्टूडियो में जाकर रिकॉर्डिंग करने का अवसर मिला, कोई मौका मिला, कभी हुई ऐसी रिकॉर्डिंग आपने की?
1: नहीं सर, एज सच मेरा अपना रिकॉर्डिंग का तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं।
0: ओके।
1: एक बार स्टूडियो में मैं गया था अपने फादर ही के साथ, उनकी एक रिकॉर्डिंग थी लॉन्ग बैक, अराउंड 30-35 इयर्स बैक
0: जी,
1: वो मुझे याद है। बट हाँ, मेरा अपना कोई ऐसा लाइव स्टूडियो रिकॉर्डिंग अभी तक नहीं हुआ है।
0: ऑलराइट। क्योंकि ये सवाल और ये मोटिवेशन या फिर इस तरीके का इंस्टिगेशन मैं हर कलाकार के साथ जरूर करता हूँ, क्योंकि जिस तरीके की आपकी गायकी है उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाना आपका कर्तव्य है। हम आपके और प्यारे प्यारे गानों के इंतजार में हैं, आप हमें अपने गानों से दूर नहीं रख सकते साहब, तो इसलिए जरूर जाइए, किसी स्टूडियो में जाइए, स्टूडियो में एक बार जाकर रिकॉर्ड करने की कोशिश कीजिए।
1: या डेफिनेटली आई ट्राई। मुझे लाइव म्यूजिक में अभी सिंगिंग का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है
0: जी,
1: बट डेफिनेटली आई ट्राई। मुझे बहुत ज्यादा सिंगिंग जो पसंद है, तो एक वो आयाम है जो छूटा हुआ है
0: जी,
1: उसे मैं पूरा करूंगा।
0: That's the point. कई बार होता है कि कोई आपको रिक्वेस्ट कर दे, पुश कर दे, तो एक नई राह मिल जाती है।
1: या डेफिनेटली, वही मैं बोला, आज समीर जी ने मुझे ये चीज पूछी और बहुत समय से मेरे दिमाग में भी है।
0: ब्यूटीफुल,
1: तो मैं बहुत जल्दी उस चीज को पूरा करने की कोशिश करूंगा।
0: डबल मौका हो गया साहब, चलिए।
1: यस।
0: दोस्तों, हम इंतजार करेंगे, बहुत जल्द हमें राजीव जी के बहुत ही प्यारे प्यारे गीत स्टूडियो में रिकॉर्ड किए हुए सुनाई देंगे। तब तक आइए ना इस गीत का आनंद उठाते हैं।

0: बहुत खूब, बहुत सुंदर। राजीव भाई मुझे ये बताइए, इतने सारे गीत हैं मुकेश के ही हैं, आपने कहा आप मुकेश के मुरीद हैं, कोई भी गाना जो आप गाने के लिए तय करते हैं कि ऑल राइट इस गाने को मुझे गाना है, उसको चूज कैसे करते हैं आप? उसकी लिरिक्स की वजह से, उसकी मेलोडीज, उसका म्यूजिक, या फिर सिंगर, या फिर सिचुएशन, रोमांटिक, दुख भरा, मतलब हाउ, कैसे चूज करते हो आप सॉन्ग?
1: जी सर, एक्चुअली जैसे कि मैं मुकेश साहब का बहुत बड़ा मुरीद हूँ
0: जी,
1: और आई थिंक उनके गाने गाने के लिए मुझे ज्यादा शायद जाके ये चेक भी नहीं करना पड़ता कि उनके उनके सॉन्ग्स कैसे गाते हैं,
0: okay.
1: उनके अंतराज कैसे गाए जाते हैं, क्योंकि मैंने बहुत बचपन से करीब करीब सभी नहीं तो अराउंड 60-70% सॉन्ग्स उनके सुने होंगे, जो शायद मैं स्टार्ट करते ही उसको उसकी लय पकड़ लेता हूँ, उसके स्वरों को समझ जाता हूँ। और उसके अलावा सर, फ्रॉम द एज ऑफ 17-18 मैंने आई हैव स्टार्टेड लिसनिंग जगजीत जी को।
0: ओके,
1: मेरे फादर ने मुझे 17-18 साल की उम्र में एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर ला के दिया था, जो कि उनके फ्रेंड ने उनको गिफ्ट किया था, और उसमें एक कैसेट उन्होंने मुझे दिया था, एंड दैट कैसेट वाज अनफॉरगेटेबल्स। एंड दैट वाज द ईयर यू कैन से 18 साल की उम्र से मैंने जब जगजीत साहब को सुनना चालू किया, तो मैं फिर उनका एक कहना चाहिए मुरीद हो गया। ही इज माई बिलोवेड इन सिंगिंग। मुकेश जी के बाद यदि मैं सबसे ज्यादा किसी को गाता हूँ, सबसे ज्यादा किसी को सुनता हूँ, पसंद करता हूँ, वो हमारे जगजीत जी हैं। तो जैसा आपने कहा कि एक्चुअली मैं जो सॉन्ग सेलेक्ट करता हूँ मुकेश जी, जगजीत जी या बाकी हमारे और जो सिंगर्स हैं, तो रोमांटिक एंड सैड सॉन्ग्स डेफिनेटली आई लाइक टू सिंग। फास्ट सॉन्ग्स में गा लेता हूँ, बट नॉर्मली फास्ट सॉन्ग्स मेरी फर्स्ट चॉइस के नहीं होते हैं। मैं ये जो प्रसुकून वाले जो गाने हैं, गजल्स होती हैं जगजीत जी की, खान साहब की, मेहंदी अहसन खान साहब की, इनकी गजल्स गाता हूँ, और मैंने बहुत रिकॉर्डिंग्स की हुई हैं। आई हैव अराउंड 4,500 सॉन्ग्स रिकॉर्डेड,
0: ओके,
1: इंक्लूडिंग ऑल द सिंगर्स। या एक्चुअली आई एम बेसिकली स्टार मेकर, सो मेरी जो रिकॉर्डिंग्स हैं, जो मेरे कवर्स हैं, वो स्टार मेकर में ही हैं
0: जी,
1: और मैंने करीब करीब सभी सिंगर्स को ऑलमोस्ट गाया हुआ है, बट डेफिनेटली उसमें सबसे ज्यादा गाने जगजीत जी के और मुकेश जी के हैं।
0: जी, आई गेट यू पॉइंट, आई परफेक्टली अंडरस्टैंड। ये कुछ ऐसे रोल मॉडल्स हैं जिनसे हम लोग दूर रह ही नहीं सकते। बहुत खूब, चलिए दोस्तों फिर आइए प्यार से एक और बहुत ही प्यारा सा गीत का आनंद उठाते हैं राजीव जी की ही प्यारी सी आवाज में।

0: बहुत खूब, अमेजिंगली ब्यूटीफुल। राजीव जी, अभी अभी हम लोग ने बात करी थी कि स्टूडियो रिकॉर्डिंग, चलिए शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होती है और अब आप स्टूडियो रिकॉर्डिंग भी करेंगे, लेकिन बहुत बहुत सारे मौके ऐसे आए होंगे, आई एम 200% श्योर, जब बिना माइक के, बिना म्यूजिक के आपसे रिक्वेस्ट की गई होगी, आपसे गुजारिश की गई होगी, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, भीड़ ने आपको घेर लिया होगा कि हमें एक गाना सुनाइए, ये सुनाइए, वो सुनाइए, उस चीज का एक्सपीरियंस बताइए, बिना माइक, बिना म्यूजिक, क्या एक्सपीरियंस होता है वो?
1: बहुत बहुत एक्सपीरियंस है सर। आप ये मान के चले कि पिछले 6-7 सालों की बात करें, उसके पहले तो शायद बहुत बार ऐसा होता था कि यार कुछ सुना दो
0: जी,
1: यार मुकेश का वो गाना सुना दो, तो फिर क्योंकि वो दिमाग में बसा हुआ है और इतने सालों से गाता आ रहा हूं तो शायद म्यूजिक की जरूरत नहीं पड़ती और कोशिश रहती है कि शायद उस गाने को हूबहू हम निभा पाए। सो ऐसे बहुत से मौके मिले सर और कोशिश की उसको पूरा करने की।
0: ऑलराइट, तो कैसा महसूस होता है उस वक्त? भीड़ चारों तरफ होती है, कुछ डर लगता है, कुछ नर्वसनेस होती है, कैसा फील होता है?
1: नहीं सर, नर्वसनेस ऐसा सच नहीं होती, क्योंकि मैं मोस्टली जब गाने गाता हूं तो शायद मेरी आंखें बंद हो जाती हैं और मेरा जो चेहरा है वो थोड़ा ऊपर साइड चला जाता है।
0: ओके,
1: तो फिर और ऐसा नहीं, बीच बीच में हम यदि भीड़ को देखते भी हैं और उनसे इंटरेक्ट भी करते हैं, उनकी आई कॉन्टेक्ट भी करते हैं, तो हम चूंकि खोए हुए होते हैं गाने में तो ऐसी कोई नर्वसनेस एज सच आती नहीं है।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, आई परफेक्टली अंडरस्टैंड। अपने संगीत में खो जाना, यही तो तपस्या है, यही तो मेडिटेशन है और यही तो मोहब्बत है। आइए दोस्तों, संगीत के इस मोहब्बत को हम भी स्वीकार करें और एक प्यारा सा गीत सुने राजीव जी की आवाज में।

0: राजीव भाई, आगे बढ़ते हुए मुझे ये बताइए, कब किसने आपको ये कहा कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, आपको कोशिश करनी चाहिए, सीखनी चाहिए? किसने मोटिवेट किया आपको? कौन थे वो? कौन है वो?
1: जी एक्चुअली मेरी वाइफ एक्चुअली जब हमारी शादी हुई, मैं जगजीत सिंह का बहुत बड़ा मसाला फैन हुआ करता था
0: जी
1: उसी समय। और जब मेरी मैरिज फिक्स हुई, जब मुझे पता चला कि मेरी वाइफ शी इज ऑल्सो हार्डकोर फैन ऑफ जगजीत चित्रा जी,
0: क्या बात
1: तो
0: है।
1: वो तो सोने पे सुहागा हो गया। एंड शी इज द वन जो कि शी इज अ बिग क्रिटिक ऑफ माई सिंगिंग, जो कि एक्सपेक्ट करती है कि इफ यू आर सिंगिंग तो आप कोशिश करें कि उसको कहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, किस पिच पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, और आप कोशिश करें कि उसको बेटर से बेटर करते जाएं। तो शी इज माई वाइफ रत्ना, जिन्होंने कि मुझे बहुत अच्छा गाने के बाद भी शायद कभी बोला होगा कि नहीं इसको एक बार और रिकॉर्ड करो, ये ऐसा नहीं है, थोड़ा ऐसा है। तो उनको भी बहुत ज्यादा संगीत का शौक है, गाने सुनने का, एंड काफी नॉलेज रखते हैं वो। फिर मेरे फादर के सामने जब मैं उनके गाने गाया करता था, उनके अपने स्वरचित जो सॉन्ग्स थे, जो अपना म्यूजिक वगैरह वो सब देख के हारमोनियम पे जब वो सुनाया करते थे, तो जब मैं उनके गाने गाता था तो वो भी बोलते थे कि नहीं एक काम करो, इसको ऐसे नहीं ऐसे गाना है। तो ऐसे मैंने संगीत की कोई शिक्षा तो नहीं ली, सुन सुन के सीखा हूं, और थोड़ा बहुत जो करेक्शंस है वो मेरे फादर ने और मेरी वाइफ ने किया।
0: ओके, ऑलराइट ऑलराइट, आई गॉट योर पॉइंट। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, हमें बहुत ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ज्यादातर कोई ना कोई
1: जी
0: एक ऐसा एंकर, कोई ना कोई एक ऐसा मोटिवेशनल फैक्टर हमारे अगल बगल ही मौजूद होता है। बस वो हमको इशारा करता है और हम चल पड़ते हैं
1: जी
0: इस प्यारे से सफर पर। आइए इस सफर का लुत्फ उठाइए, एक प्यारा सा गीत और सुनिए, जो हम डेडिकेट कर रहे हैं राजीव जी की धर्मपत्नी को, जिन्होंने इनको मोटिवेट किया।

0: बहुत खूब, बहुत बढ़िया। चलिए, संगीत तो है ही हमारे भी रगों में, आपके भी रगों में, थोड़ा सा आपको और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। आपकी डेफिनेशन के हिसाब से, आपके समझ के हिसाब से, आपकी जिंदगी के अनुभव के हिसाब से, सफलता पाने के लिए, चलिए एक बार को गायकी में ही बात कर लें, गायकी में सफलता पाने के लिए क्या चीज आपको लगता है सबसे ज्यादा जरूरी है जो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए?
1: हाँ सर, एक्चुअली यदि हमको गाने का शौक है, हमारा पैशन है, यदि गाना सिंगिंग हमारी हॉबी है, तो फिर वो ऐसा होता है कि हम कुछ भी नहीं गा सकते। हमको हमारी, सबसे पहले हमारी आवाज कैसी है, हमारी आवाज कैसे गानों को सूट करती है, उन गानों की एक फहरिश्त बना के उनको कोशिश करना चाहिए कि हम पहले किस प्रकार के गाने हम पसंद करते हैं। यदि हमको सॉन्ग्स पसंद है, यदि हमारी आवाज उसको सूट करती है, तो डेफिनेटली विल गो टू सिंग अ फास्ट सॉन्ग्स। जहां तक जैसे मेरी बात है, मेरी जहां तक मैं अपनी आवाज को समझता था कि एक सुकून, एक ठहराव वाला वाली गायकी मुझे बहुत पसंद है, जैसा कि मैंने आपको बताया मुकेश जी का और जगजीत जी का
0: जी।
1: तो मेरा यह मानना है

0: लाइकिंग होती है, किस प्रकार के गाने हम गा सकते हैं, फिर हमको उसको चूज करना चाहिए। और लिरिक्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, शब्दों का उच्चारण सिंगिंग में बहुत जरूरी है, और सबसे बड़ी बात उन शब्दों को जो संगीत में पिरोया गया है उस संगीत की समझ हमको जरूरी है, कहाँ से हमको स्टार्ट करना है, कहाँ हमको अपने सुर को बदलना है, कहाँ हमें लो सुर की जरूरत है, कहाँ हमें हाई नोट्स की जरूरत है, गाने की कैसी अदायगी है, वो सब चीजों को ध्यान में रख के यदि हम अपने गाने को गाएं तो शायद उससे अच्छा कुछ ना होगा। क्योंकि हम यदि गा रहे होते हैं तो ये बात जरूरी है कि हमको जो सुन रहे होते हैं उनको हमारी गायकी का एक आनंद आना बहुत जरूरी है
1: जी,
0: तभी हमारे हमारे पैशन का, हमारी गायकी का एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है जिसको बोलते हैं।
1: करेक्ट, वेरी वेरी करेक्ट सर, बिल्कुल सही फरमाया सर आपने। तो दोस्तों इन सारी चीजों का ख्याल रखिए, हर चीज मैं मानता हूं संगीत हुई या कोई भी कला है वो एक पूजा होती है, एक डेडिकेशन होता है,

फन पहले नहीं, पहले तो बहुत प्यार से उसकी तपस्या। चलिए एक प्यारे से गीत को सुने जो राजीव जी ने हम लोगों के लिए तैयार किया।